0: MBC Radio, your music companion.
1: सुनो और गौर से सुनो. अरे पहले तालियां तो बजाओ. आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात.

क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग रोना चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो?

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम मदीना के साथ है संध्या। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सैन्य हमसामी जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। मॉरिशस में 16वां गोप्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल 11 सितंबर से अब 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। विदेश में पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब पाकिस्तानी आर्मी सरकारी संपत्तियों, रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर भी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लग्जरी सेलिंग क्लबों से लेकर असैधानिक कब्जे वाली जमीनों तक पाकिस्तानी सेना देश के अहम संसाधनों पर अपने अधिकार को लगातार मजबूत कर रही है। और अंत में मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की तरफ से पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। साथ ही मस्कारेन समय पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। दोपहर बाद के समय भी ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर बादल घिरे रहेंगे। रात्रि के समय भी बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल बातों पर हल्की वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर सुबह के समय। सूर्योदय 6:09 पर और सूर्यास्त शाम के 6:03 पर।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti.

0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आगे आ दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play. NBC Play. NBC Play.
2: Radio Mauritius.
1: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
3: न रुकना है न थकना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। जिंदगी है प्यारे, न रुकना है न थकना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। जिंदगी एक सफर है प्यारे, यहाँ हर दिन कुछ नया पाना है। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार, शुभ प्रभात। भोर की इस विला में हम आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। सुबह के 6:05 हो रहे हैं मॉरिशस में, और आज है शनिवार का दिन, शनिवार 12 सितंबर साल 2026। आज की सुबह और आज का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। यस, एक नए दिन की शुरुआत, नए दिन का आगाज कीजिए हमारे साथ, एमबीसी रेडियो के साथ। और जो बीत चुका वो एक सपना था, उसे भूल जाइए, जो है वो आपका वर्तमान है और आपका आने वाला भविष्य है, है कि नहीं? Be happy, keep smiling and enjoy life, just chill। ये शनिवार अच्छी तरह से बीते आप सभी लोगों के लिए, जहाँ जहाँ भी रहें खुश रहे, सलामत रहे, और अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आए। अच्छे अच्छे विचार से जो होता है हमारा मन शुद्ध और पवित्र होता है। और आजकल हम गणेश चतुर्थी के त्यौहार की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप तो जानते हैं कि आगामी मंगलवार को मॉरिशस में धूमधाम से मनाएंगे गणेश चतुर्थी, यानी कि गणेश का जन्मोत्सव, गणपति बाप्पा मोरिया। बस पूजा पाठ करते रहिए और गणेश जी का नाम लेते रहिए, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, कल्याणकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोई मॉरिशस की लहरों पर इस प्रातकालीन सभा को, गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम है वैदिक नाद।
4: आइए सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।

0: देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक नाद कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अति प्रसन्नता की बात है कि एक बार फिर आज हमारे बीच में आचार्य श्री रविशंकर जी महाराज पधारे हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ आचार्य जी, ऋग्वेद में एक मंत्र है जो इस प्रकार है,

0: आदि। हाँ, कृपया हमें आचार्य जी इस मंत्र पर थोड़ा हमारे लिए समझाने की कृपा करें।
1: नमस्ते जी सभी मॉरिशस वासियों को। वेद का ये मंत्र है 10वें मंडल के 117वें सूक्त का, और ये छठा मंत्र है, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। और भगवान इस मंत्र में कह रहे हैं कि जो अप्रचेताः है, अर्थात जो बुद्धि से थोड़ा सा कमज़ोर है, और बुद्धि से कमज़ोर होने की पहचान क्या है, उसकी पहचान है कि वो बस थोड़ी दूर

तक देखता है। एक व्यक्ति है वो ऐसे कर्म करता है जो जन्म जन्मांतरों तक उसके लिए साथ देने वाले हों, जो आगे तक की सोचता है, जो भविष्य की सोचता है, जो दूर दृष्टा है। और एक व्यक्ति के कर्म कैसे होते हैं, बहुत थोड़े से हित के लिए वो कर्म कर रहा होता है, थोड़े से के लिए कर रहा होता है। तो वो कैसा है, वो अप्रचेता है। तो कह रहे हैं जो अप्रचेतस है, जिसके अंदर बुद्धि कम है, थोड़ी दूर का देखता है, उसके अंदर दूर दृष्टि कम है, और जब उसको अन्न प्राप्त होता है, उसको धन प्राप्त होता है, उसको संपत्ति प्राप्त होती है, तो कह रहे हैं अरे उसको तो ये अन्न प्राप्त होना व्यर्थ ही है, उसको तो ऐश्वर्य का प्राप्त होना व्यर्थ ही है। क्यों व्यर्थ है भाई, उसका पेड़ तो पल ही रहा है, वो तो मौज उड़ा ही रहा है, वो तो आनंद भोग ही रहा है, तो फिर उसका अन्न ऐश्वर्य धन प्राप्त करना व्यर्थ क्यों है? इसलिए व्यर्थ है। तो ईश्वर कह रहे हैं सत्यम ब्रवीमि, ईश्वर कह रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूं। क्या वध इत्सत तस्य, उस मनुष्य का, तो ये जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य क्या करता है, उसका विनाश करता है। अरे ये क्या बात हुई, ऐश्वर्य उसने प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, अन्न प्राप्त किया, और वही धन ऐश्वर्य उसका वध कर रहा है, उसका विनाश कर रहा है, उसको अधोगति की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा। तो उसका उत्तर अगली पंक्ति में दिया है, क्यों ये ऐश्वर्य और ये अन्न उसको नीचे लेकर के जाता है, इसलिए लेकर के जाता है क्योंकि नार्य मणम पुष्यति नो सखायम, वो जो ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है, उस ऐश्वर्य का वो केवलाघो, वो तो अकेला ही भोग कर रहा है। उसने जो ऐश्वर्य प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, अन्न प्राप्त किया, उसको लग रहा है कि इस पर तो पूरे पर मेरा ही अधिकार है, मैं ही इसका उपभोग करूंगा, इस पर अन्य का क्या अधिकार, कोई दूसरा क्यों इसको भोगे, किसी दूसरे का इसमें क्या हिस्सा है, इस पर तो पूरा की पूरा मेरा ही अधिकार है। व्यक्ति यही सोचता है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने डॉक्टरी की है, मैंने ये बिजनेस सफल किया है, मैंने ये जॉब प्राप्त की है, तो इस पर पूरा की पूरा बस इससे जो लाभ मिलेगा उस पर मेरा ही अधिकार है। लेकिन वेद क्या कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि बांट करके खाओ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जो उसके मित्र हैं, जो उसके सखा हैं, जो उसके परिजन हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके परिवार के हैं, जो उसके निकट हैं, ये जो ऐश्वर्य धन संपत्ति जो कुछ भी ABCD कुछ प्राप्त किया उसने, उसको वो खुद ही भोगना चाहता है, खुद ही उपभोग करना चाहता है, अपने तक ही उसको सीमित रखना चाहता है। ना तो वो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को दे रहा है, और ना ही कह रहे हैं ना अर्यमणम पुष्यति, ना ही ये राष्ट्र के लिए दे रहा है। भाई राष्ट्र कैसे चलेगा, राष्ट्र चलेगा हम जो टैक्स देते हैं, हम जो कमाई कर रहे हैं उसमें जो कुछ एक हिस्सा है, वो हिस्सा किसका है, वो हिस्सा राष्ट्र का है। राष्ट्र की उन्नति कैसी होगी, राष्ट्र की उन्नति तब होगी जब मैं अपनी कमाई से कुछ हिस्सा देश मॉरिशस को भी दूंगा। जैसे भारत में है, टैक्स देते हैं लोग, और वो टैक्स किस में जाता है, भारत सरकार को जाता है, तो वो टैक्स क्या करता है, वो लौट करके हमारे पास ही आता है। तो वैसे ही जब लोग अपने कमाई का एक हिस्सा किसको देंगे, राष्ट्र को देंगे, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को देंगे, वो एक हिस्सा समाज को देंगे, समाज के लोगों को देंगे, विद्वानों को देंगे, जब वो अपनी कमाई का हिस्सा जब वो इन लोगों को देंगे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं तब विकास होगा, तब उन्नति होगी, तब जीवन में सुख होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमाई का भाग, पूरा भाग अपने पास ही रखता है, किसी को नहीं देता है, इष्ट मित्रों को इत्यादि किन्हीं को नहीं देता है, और ना ही राष्ट्र के लिए वो देता है, और ना ही वो विद्वानों को अर्पित करता है, बस खुद ही खाता है, खुद ही मौज उड़ाता है, खुद ही पहनता है, दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसा जो व्यक्ति है जो अकेला उपभोग कर रहा है, तो कह रहे हैं केवलाघः, केवल अघः, जो अकेला खा रहा है वो क्या है, अघ। अरे उसको क्या लग रहा है कि मैं मौज उड़ा रहा हूँ, वो तो पाप को खा रहा है, वो तो पाप की वृद्धि कर रहा है,
वो तो पाप को पुष्ट कर रहा है। क्यों पुष्ट कर रहा है? क्योंकि मैंने जो तरक्की प्राप्त की है, मैंने जो उन्नति प्राप्त की है, मैंने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है, उस प्राप्ति में कितने सारे लोगों

अभाग है, उन कितने सारे लोगों का योगदान है, उतने सारे लोग, माता पिता का योगदान है, भाई बहन का योगदान है, पड़ोसियों का योगदान है, शिक्षकों का योगदान है, सरकार का योगदान है, विद्वानों का योगदान है, सारे इकोसिस्टम का, पशु पक्षियों का, इन सब का योगदान से ही तो मेरा जीवन चल रहा है। तो इन सब के योगदान से जब मेरा जीवन चल रहा है तो मैं उनको उनका हिस्सा ना दे करके खुद उपभोग

0: तो फिर कह रहे हैं केवलाघ केवलाघो भवति केवलादि। तो ये जो केवल अकेला खाने वाला जो है वो क्या करता है, वो पाप को ही खाता है। तो इसलिए इस वेद मंत्र में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः, ऐसे जो अप्रचेतस हैं, निर्बुद्धि हैं, जो केवल इसी समय की सोच रहे हैं, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस यही जीवन का सार है, किसने आगे का जीवन देखा। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, भाई ऋण ही लेना पड़े तो भी क्या है, मौज उड़ाओ, किसने अगला जन्म देखा। तो जो अगले जन्म की चिंता नहीं करता, जो अगले जन्म जन्मांतरों के होने वाले सुख दुख की चिंता नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त हो जाए, कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, वो उसके लिए कैसे है, वो उसके लिए व्यर्थ ही है। खा तो रहा है, पी तो रहा है, मौज तोड़ा रहा है, फिर व्यर्थ कैसे है। व्यर्थ इसलिए है क्योंकि वो जो अन्न है, वो जो संपत्ति है, वो जो ऐश्वर्य है, वो जो वैभव है, वो उसकी वृद्धि करने वाला नहीं हो रहा, वो उसके जीवन में उन्नति करने वाला अल्टीमेट जो उन्नति है, सामने से देखेंगे तो लगेगा ये तो बढ़ रहा है, विनाश कैसे हो रहा है, अवनति कैसे हो रही है, व्यर्थता कैसे हो रही है। तो व्यर्थता वेद जो है, वेद परोक्ष बात करता है। अगर सामने की ही बात कर रहा होता, मनुष्य जो संसार में है वो किसकी बात करते हैं, वो 5 साल की सोचते हैं, 10 साल की सोच रहे होते हैं, 15 साल 20 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग का, और कोई ज़्यादा होगा तो वृद्धावस्था की प्लानिंग करेगा। लेकिन वेद केवल, वेद का संदेश केवल इस जन्म के लिए नहीं है, वेद जो आदेश कर रहा है, वेद की जो शिक्षाएं हैं, वेद की जो परंपराएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो हमको केवल इसी जन्म तक के लिए नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतरों तक हमारे कल्याण की बात को सोच करके कर रही होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा, और ईश्वर बड़े आत्मविश्वास के साथ में, क्योंकि वो न्यायकारी हैं, क्योंकि वो कर्मों का फल देने वाले हैं, इसलिए वो पूरी घोषणा के साथ कह रहे हैं सत्यम ब्रवीमि, तू निश्चय जान, हे मनुष्य तू अपने जीवन में ये निश्चय कर ले, सत्य सत्य ये निश्चय कर ले, क्योंकि मेरे नियम अटल हैं, सत्यम ब्रवीमि, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि ये जो अन्न है, ये जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य तुझे उन्नति की ओर नहीं लेकर के जाएगा। तू जो कर रहा है वो क्या है, वो तेरा जो इकट्ठा हो रहा है, वो तेरा कर्म, वो क्या करेगा, वो तेरे को पाप की ओर लेकर के जाएगा, क्योंकि तूने एकत्रित तो किया है, लेकिन वो किसके लिए एकत्रित किया है, वो तूने अपने लिए एकत्रित किया है, अब तुझे थोड़ा सा बांटना है और बांट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये संदेश है वेद का, इसको हमको पालन करना चाहिए। इत्योम शम ओ
1: श्रोताओ, हम दर्शन आचार्य श्री रवि शंकर जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं उनके पावन विचारों के लिए। आशा है आपने लाभ उठाया होगा। ओम शांतिश शांतिश शांति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।

साथियों याद रखना जो झुक सकता है, साथियों याद रखना जो झुक सकता है वो दुनिया को झुका भी सकता है। सुबह के 6:18 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं बीसी रेडियो मॉरिशस 719 kHz पर। और याद रहे और 2 मिनट में यानी कि सुबह के 6:20 पर गणेश चतुर्थी के संदर्भ में आप एक विशेष कार्यक्रम सुनेंगे नितिन के स्वर में, और यह वार्ता लिखा जाएगा ठीक साढ़े छः बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, नुथावाइनुलावेनिया, स्पोर्ट्स आदि आदि। और उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी 7:05 पर इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस सुबह के 6:30 बजे है।
1: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया। दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार मालदीव की किसी भी आधिकारिक पहल पर करीबी नजर रखेगी। मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। सिन्हा सामी ने कहा कि इससे देश रीजनल एविएशन हब और बिजनेस सेंटर बन सकता है। मॉरिशस में 16वां गुप्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल की प्रतिनिधि शामिल हो रही है। विदेश में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते दखल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी जमीन और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सेना के हस्तक्षेप के आरोप सामने आए हैं। अरब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। कैबिनेट ने इस बात का भी जायजा लिया कि प्रधानमंत्री को नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नैडक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कैनाबिस पॉलिसी रिफॉर्म पर गठित तकनीकी कार्य समूह की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट की सबसे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कमीशन जांच करेगी। इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट के सभी सदस्यों के बीच विचार के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट ने शिवसागर रामगुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर शिक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इन कार्यक्रमों का मकसद विद्यार्थियों को उनके विचारों, नेतृत्व और देश निर्माण में उनके योगदान के बारे में बेहतर जानकारी देना, देशभक्ति, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कला और भाषण प्रतियोगिताएं, विरासत कोनों की स्थापना, संगीत कार्यक्रम, आजादी के संघर्ष और देश निर्माण पर चर्चा तथा युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को सर शिवसागर राम गुलाम के कार्यकाल में लागू की गई मुफ्त शिक्षा के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा। पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सिन्हा सामी, जो 2001 से 2004 तक पुरानी एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुकी है, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। उनके मुताबिक मॉरिशस हवाई यातायात के लिए एक रीजनल हब बन सकता है। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि देश व्यापार और बिजनेस के लिए एक बड़ा केंद्र बन सकता है। बाजार में भिंडी यानी लालू की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि सर्दियों के इस

0: मौसम में इसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। उत्पादकों के अनुसार पौधों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के कारण भी इसकी खेती मुश्किल हो गई है। कुछ किसानों ने भिंडी की पैदावार कम कर दी है, जबकि कुछ ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके चलते बाजार में सप्लाई कम हुई है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसकी जानकारी स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालु संगुन ने दी है, उनको सुनते हैं।
1: Et surtout quand il fait frais dernier deux trois semaines là, plein là-bas ça aussi même, on va trouver du tout.
2: हाल के सप्ताहों में बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी, ऐसे में फूल दिखे ही नहीं। हो सकता है कि इसी कारण उत्पादन में कमी आई है। हमारे विचार से भिंडी काफी पहले बोई गई थी, अभी जो निकल रही है मंडी में है वे बहुत पहले ही रोप दिए गए थे। 15-20 वर्षों से एक तरह की बीमारी देखी जा रही है, हरे रंग का एक छोटा सा कीड़ा है जो भिंडी के बीच वाले हिस्से में बैठ जाता है, इसे काटता है, रस पी लेता है और प्रभावित करता है, सब क्लोरोफिल खा जाता है। भिंडी में जबरदस्त दवाइयां या कीटनाशक नहीं डाल सकते हैं।
0: मॉरिशस में 16वां गुप्यू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल की प्रतिनिधि शामिल हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यह आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। गुप्यू मॉरिशस के प्रधान चंद्र प्रकाश विनय डसोई से इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में सुनते हैं।
3: एक उद्देश्य बड़ा सीधा बा, हमने हर बार दो दो साल में अंतर्राष्ट्रीय मिलन कर लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मिलन बोला जा, जहाँ पर हमने देखी ला जा कि दो बरिस में का हो और नया जो चुनौती आवा था हमने के सामने ओकर खातिर का करे के चाहिए, कौन नया चुनौती बार ओकर खातिर का करे के चाहिए, सब विचार करे के और जिससे हमने के प्यायो डायस्पोरा जो है आगे बढ़ी और समृद्ध बनी और आगे बढ़ी। और एक में हमने के 16 गो देश से अभी डेलीगेट लोग आल हो जा, कई नए नए देश से हमने के नाता जुड़ल बा, वो लोग के भी डेलीगेट आल हो जा मॉरिशस।
0: और गुप्यू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर अनुपम जैन को सुनते हैं कि क्यों बिजनेस पर बल दिया जाना चाहिए।
4: गोपियो का पर्पस पीआईओ को स्ट्रॉन्ग करना है वर्ल्ड वाइड, और वो तभी हो सकता है जब बिजनेस कम्युनिटी एक साथ अलग अलग देशों से जो एक साथ आए गोपियो के। और जब देखिए किसी भी संस्था का जो मेन बेस है वो है कि हम उस संस्था में आदान प्रदान कर सकें, ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, अपने सोशो कल्चर का, यूथ एक्सचेंजेस कर सकें, तभी वो कोई भी संस्था आगे बढ़ सकती है। और जो GIBC का उद्देश्य है गोपियो इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का, वो यही है कि अलग अलग देशों से जो लोग हमारे बिजनेस ओनर्स आए हुए हैं उनको मॉरिशस, अफ्रीका, इंडिया, ये कनेक्ट कर सके हम लोग। और जो ये सेशन होने जा रहे हैं उसमें चार पैनल्स हैं, अलग अलग चार सेशन में हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का पार्ट रखा है, टूरिज्म का पार्ट रखा है, उसके अलावा ब्लू ओशन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ फाइनेंस है, AI है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ हम लोगों ने हेल्थ, वेलनेस और योगा, आयुष, ये भी सेगमेंट रखा है, विच इज़ मेडिकल टूरिज्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: वैसे ये सम्मेलन सिर्फ अतीत को याद करने के लिए नहीं, नज़र है भविष्य पर। युवाओं को जोड़ना, व्यापार और पेशेवर अवसरों को बढ़ाना, नेटवर्किंग को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति एवं भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में शामिल है। आलियन गोल्ड सिंगापुर के CEO डॉक्टर कमलानंद हमें बैंकिंग की आवश्यकता पर बता रहे हैं।
5: एक्चुअली मैं बैंकिंग साइड से हूँ, मैं डिजिटल एसेट साइड से हूँ। आज के डेट में डिजिटल एसेट का बहुत ज़्यादा बूम है साउथ ईस्ट एशिया में। मैं वो चाहता हूँ वो सारे साइड में हो, बिकॉज ऑफ कि अभी पैरेलल बैंकिंग का टाइम चल रहा है, जिसके अंदर में बहुत सारे गवर्नमेंट, जैसे अभी हमने DMCC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और हम और भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। यहाँ भी मैं बैंकिंग के लिए ही आया हूँ, जिसके अंदर में अगर जो परमिशन मिलती है तो मैं बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग के को प्रमोट कर रहा हूँ, जिसके कारण से ये जो बैंकिंग प्रॉब्लम है, जो फंड जो है कहीं कहीं पे काफ़ी टाइम से पहुँचते हैं, अभी बहुत सारा सेंक्शन लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही फ़ंड ट्रांसफ़र, और उसके कारण से बिजनेसमैन को हो रहे लॉसेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र टाइमिंग एंड ऑल। सो वी आर ट्राइंग टू

0: is shot.
1: वैसे सम्मेलन के बारे में हमें मलेशिया के लिए मॉरिशस के उच्चायुक्त रबिन गंगू जी अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं।
2: हमें देखा जाए कैसे कौन कौन चीज है पे मॉरिशस में लोग सची को मिले से हैवी करे यहाँ से और यहाँ से कैंसर बिजनेस करा रही यहाँ से कैंसर लास्ट फेंक जाए हमने खुद अटेंड अपनी कैमरा की जो मॉरिशस करे वो गेट हुए टू अफ्रीका सेकेंड जब तैयारी करेंगे बिजनेस करेंगे सोमवार यूथ प्रोग्राम हमी के जवान मन कैसे करने जाए जवान के सब के चले रहे आपके यूथ के सब यूथ प्रोग्राम कल्चर ही एक्सचेंज कर हम सब कर बजा धीरे गए पाँच सौ सात खाली मालेजी विशेषा हम ले जा लोगों के और दूसरा देश भी आगमन जा जैसे श्रीलंका बा म्यांमार बा सिंगापुर बा सिदाफ्री बा चेन्नई से भी बा टोटल हो जाए से क्या लगो मतलब पैसा वही रही।
1: वैसे रविवार 13 सितंबर को ये वैश्विक सम्मेलन समाप्त हो रहा है गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 जहां विरासत जो रही है समुदाय एकजुट हो रहा है और भारतीय डायस्पोरा अपने भविष्य की नई कहानी लिख रहा है। पोल्ट्री में विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के फिश होल्स में फिर से ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रथा पर पहले रोक लगा दी गई थी क्योंकि फिश होल्स का इस्तेमाल मछलियों को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक समुद्र में रहने वाले इन जहाज़ों को बड़ी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होती है, इसलिए डीजल को अस्थायी तौर पर फिश होल्स में रखा जा सकता है और फिशिंग एरिया में पहुँचने के बाद इसे जहाज़ की ईंधन टंकियों में डाल दिया जाएगा। इसके बाद फिश होल्स को हाई प्रेशर यानी तेज दबाव वाले पानी से और खास सफाई सामग्री से अच्छी तरह साफ किया जाएगा, जिसके बाद ही वहां मछलियां रखी जाएंगी। हालांकि इस व्यवस्था में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हमारी विरासत को बहुत देर होने से पहले बचाना यही सरकार का मकसद है। सरकार नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसे मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा। कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्री महेंद्र गोंदिया का कहना है कि विरासत की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा ताकि नुकसान पूरी तरह होने से पहले ही कदम उठाया जा सके। खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, समय के साथ हो रही खराबी और तोड़फोड़ से ऐतिहासिक धरोहरों को होने वाले नुकसान को रोकने पर ध्यान दिया जाएगा। इस बीच तीन ऐतिहासिक जगहों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत और संरक्षण का काम किया जाएगा। पाम्पलमसेस बोटानिकल गार्डन, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और मेबर्ग म्यूजियम में इस काम में फ्रांस भी मदद कर रहा है। इसके लिए 10 लाख यूरो की आर्थिक सहायता दी जा रही है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों का स्टॉक आजकल देश में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्यूटिकल विभाग के अनुसार निजी सेक्टर में 900 से 1000 दवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये संख्या लगभग 50 है। हालांकि इनमें से कई समस्याओं के इलाज के लिए दूसरे विकल्प मौजूद है। इन दवाओं की कमी के क्या कारण है और मरीजों के लिए क्या समाधान उपलब्ध है, विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: रोज रोज की दवाइयां ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। निजी फार्मेसीज में कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी मांग ज्यादा है लेकिन जो मिल ही नहीं रही। ऐसी स्थिति जो अब फार्मासिस्ट के लिए आम सी हो गई है। त्वचा, मधुमेह या रक्तचाप की दवाई की कमी है। दवाई जैसे ही मिलती हैं खत्म हो जाती हैं। लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। साल की शुरुआत से ये समस्या हो रही है और स्थिति सुधर ही नहीं रही। मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र में 90 से 100 दवाइयाँ उपलब्ध नहीं और कारण है विदेशी सप्लाईज में कठिनाई। सप्लायरों और उत्पादकों के पास दवाई की पैदावार के लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यूक्रेन युद्ध आदि के कारण सप्लाई चेन प्रभावित है और यूक्रेन

0: स्पेन, चीन जैसे देश ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं, इन्हें बनाने में ही देरी हो रही है।
1: Il y a la guerre en Ukraine qui peut persister et peut-être personne pas réaliser qu'Ukraine, la Chine, l'Inde, c'est un gros producteur de matières premières. Nous trouvons-nous dans une période que ça va être produit là n'est pas produit à temps.
0: इसका संबंध सार्वजनिक क्षेत्र से भी है, जहां करीब 50 दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हैं सप्लाई प्रणाली में बाधाओं के कारण। मंत्रालय आश्वस्त करता है ब्रांड्स की कमी का ये अर्थ नहीं कि इलाज नहीं हो पाएगा, इनकी जगह पर अन्य दवाइयां भी उपलब्ध हैं।
1: Sa confiance que vous gagnez avec un produit là, vous pensez c'est ça qui peut soigner.
0: जब किसी दवाई से कोई ठीक होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि यही ब्रांड सही है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि दवाई का मॉलिक्यूल जरूरी है न कि ब्रांड। डॉक्टर को भी मरीजों को आश्वासन देना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट हैं, ब्रांड बदल भी जाए तो भी दवाई में वही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं।
1: इन एन सब्स्टिट्यूट et nous bise capable de donner confiance à sa patient là qui malgré pendant combien de mois te pas peut te prendre ça là te stabiliser le tlala ce nom différent mais il contenait même produit.
0: अधिकारी मरीजों से मांग कर रहे हैं कि दवाई की कमी के कारण अपना इलाज न रोकें, इसके बदले डॉक्टर की सलाह लेकर सब्स्टिट्यूट यानी अन्य विकल्पों के साथ इलाज जारी रखें।
2: विवरण याचना मिश्रा का रहा। इंडोनेशिया में अनाक क्रकाटोआ ज्वालामुखी 4 सितंबर से लगातार फट रहा है और बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी की राख हवा में फैल रही है। इसका असर पहले ही इस इलाके के कुछ एयरपोर्ट्स पर पड़ा है और उन्हें बंद करना पड़ा है और अब मॉरिशस पर भी इसका असर पड़ सकता है। ओशियानियोग्राफर वासन कुपिमुथु के मुताबिक इस ज्वालामुखी के फटने का असर हमारे इलाके में भी महसूस किया जा सकता है। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है और ये गैस जब हवा में फैलती है तो एयर क्वालिटी और मौसम की स्थिति पर असर पड़ सकता है। बुधवार तक ज्वालामुखी से निकला राख का बादल मॉरिशस के करीब 1800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई है लेकिन हमारे जलाशयों को भरने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। CWA के महानिदेशक श्याम तानू के अनुसार महोबा कुआ अभी भी 39% भरा है। उनका कहना है कि करीब 40% होने पर भंडारण का संचालन अच्छी तरीके से किया जा सकेगा, जबकि 20% से कम होने पर स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। उनको सुनते हैं।
3: इन दिनों मारोवाकुआ और लानिकोलिया में पानी का स्तर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि हम दोबारा अपने फैसले देख सकें। जब तक पानी का सतह इस तरह बरकरार रहेगा हम सप्लाई के वक्त पर दोबारा काम करेंगे। मारोवाकुआ 39% भरा है इसलिए वहां से जल को पंप नहीं कर सकते। जब वो 20% तक पहुंचता है तो ये कीचड़ वाला पानी होता है। नवंबर दिसंबर तक मोगोवाकुआ में सिर्फ 20% पानी का संचालन करना पड़ेगा।
2: गणेश चतुर्थी से पहले बेलेयर रिवियेरा के पुष्पालोचनिया मंदिर में 150 बच्चों और युवाओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाई। मुश्य सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन और आर्ट्स इंस्पायर्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ना है, साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मिट्टी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी है।
4: मिट्टी का एक गोला, सृजन में तल्लीन नन्हे हाथ और कल्पनाओं की उड़ान धीरे धीरे एक आकृति आकार लेती है और सामने आता है भगवान गणेश का सौम्य स्वरूप। पुष्पलोचन्य मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में 150 बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाने की विभिन्न विधियां सीखी। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी कल्पना के अनुसार अपनी मूर्ति को एक विशेष रूप और भाव प्रदान किया।
5: भैया आपने क्या बनाया है?
6: मैंने
5: गणपति जी की मूर्ति बनाया। मैं

0: की पूजा करना चाहती हूँ। गणपति पप्पा मोरिया।
1: हम यहाँ पे माटी से मूर्ति बना रहे हैं गणेश जी के, जो नदियों में पोल्यूशन नहीं करता और मछलियों को नहीं मारता है और अच्छे से नदी में घुल जाता है।
2: तो आपने क्या बनाया, हमें बताइए अपने डिजाइन के बारे में।
1: यहाँ पे हमने बाल गणेश बनाए, इनके हाथ पैर और मोदक हमें बनाना सिखाया गया है। हमारे लिए हमारे गणेश जी एक दोस्त है और वो हमारे सारे दुख खत्म कर देते हैं। चतुर्थी के दिन हम इसको समंदर में या फिर नदियों में इसका विसर्जन करा देंगे।
3: मूर्ति बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। जब मन लगा कर करते हैं तो बहुत अच्छा और आसान दिखता है। मैंने एक गणेश मूर्ति बनाई है और उसके साथ मैंने मोदक और लड्डू उसके बाजू बीच लगाए, क्योंकि गणेश भगवान को माना जाता है कि उसे बहुत मिठाइयाँ बहुत पसंद है।
4: किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। वे बुद्धि, विवेक और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी का चयन करना पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ये प्राकृतिक सामग्री विसर्जन के समय सरलता से जल में विलीन हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।
5: सब टेक्निक बता रहे हैं कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं और उसके उसके साथ कैसे काम करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं था, बच्चे लोग अब समझ गए कैसे करने के लिए। और हम बदला रहे हैं जो आर्ट्स इंस्पायर का जो टीम है यहाँ पर।
6: हमारा जो लक्ष्य है फेडरेशन का, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो हमारे मंदिर की ओर आए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है फिर से उन लोगों का रुचि फिर से भरे।
4: कार्यशाला के दौरान माता पिता भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। कहीं वे उनके कार्य को निहार रहे थे तो कहीं मूर्ति को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन कर रही थी।
7: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि हमारी संस्कृति क्या है।
8: आज बच्चों ने बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। इससे देख कर लगता है कि बच्चों में एक कल जो उनके अंदर जो एक कला है उनको उभारने का एक अच्छा अवसर दिया गया है बच्चों को। बच्चों का जो ध्यान आजकल जो भटक रहा है, आज अच्छे काम में लगाया जा रहा है उनका ध्यान, जिससे उनकी कला और भी निखर कर सामने आएगी। इसके
4: मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन तक इन बच्चों और युवाओं ने इस परंपरा को केवल जाना ही नहीं बल्कि अपने हाथों से गढ़कर उसे आत्मसात भी किया।
9: विदेश में पाकिस्तान में सेना का प्रभाव केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है बल्कि अब पाकिस्तानी आर्मी सरकारी संपत्तियों, रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लग्जरी सेलिंग क्लबों से लेकर असैधानिक कब्जे वाली जमीनों तक पाकिस्तानी सेना देश के अहम संसाधनों पर अपने अधिकार को लगातार मजबूत कर रही है। दरअसल हाल ही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2022 के उस फैसले को चुपचाप पलट दिया गया जिसमें पाकिस्तान नेवी के 300 एकड़ के आलीशान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बने लग्जरी नेवल सेलिंग क्लब को अवैध घोषित किया गया था। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। साथ ही मस्कारीन के दक्षिण में पाए जा रहे एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। दोपहर बाद के समय भी ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय भी बादल घिरे रहेंगे खासकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलो

0: किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर सुबह के समय। सूर्योदय आज 6:09 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:03 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और मौसिन का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: बुझावन लेन अपदागुतिया सैम्पिया में बुझावन लेन अपदागुतिया सैम्पिया में 81 साल के टिवानियो जोर के श्री श्रद्धानन बुझावन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सुदेश बुझावन के घर बुझावन लेन अपदागुतिया सैम्पिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लोअर दागुतिया सैम्पिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड कांजियाब में 82 साल की एक 2 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आनंदी बाई दरमिया पैदाइशी नाम बिकिया और जो आनंदी बाई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विराज दरमिया के घर रॉयल रोड कांजियाब से उठाकर दफनाने के लिए कांजियाब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। ट्रियो रोड 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र नाथ भजन जो राजन मासो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री रितेश कुमार भजन के घर ट्रियो रोड त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। डॉक्टर मनीलाल रोड लाल माटी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बानीदेव सीतल जो शोफर फ्यूएल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंद्रानी सीतल के घर डॉक्टर मनीलाल रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी लाल माटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:58 और 14 सेकंड हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
1: सुनने वाले को विकास और आमदनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। आज से इंग्लिश प्रीमियर लीग का चौथा सप्ताह आरंभ हो रहा है शाम 6 बजे से। सारा ध्यान यदि कल के मैनचेस्टर डर्बी पर है तो आर्सेनल और लिवरपूल भी अपनी अपनी धार तेज कर रहे हैं। और इस बीच कल वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लीग चैंपियनशिप में रेक्साम को 6-0 से पछाड़ कर लीग चैंपियनशिप का पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। सो पहला मैच कल खेला गया। नतीजों की ओर बढ़ते हैं। वेस्ट हैम यूनाइटेड 6-0। आज बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। और स्कॉटिश चैंपियनशिप में मोर्टन की हार हुई, मोर्टन 1 लिविंगस्टोन 4। जो बाकी जो मैच खेले गए, सबसे पहले स्पेन के लालीगा में सेविलिया ने वेलेंशिया को 1-0 से परास्त किया। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी एक मैच, यूनियन बर्लिन 1 शाल्के 04 3। इटली के सीरिया में फ्योरेंटिना ने एवेजा कर वेनेजिया को 4-2 से परास्त किया। तो फ्रांस के लीग 1 में रेन 1

ओलंपिक दे मार्सेई 0, मार्सेई की हार, रेन की जीत। ऐसे में चौथे सप्ताह के बाद रेन अभी लीग टेबल के पहले स्थान पर है। रेन के पास हैं 10 अंक। दूसरे स्थान पर मोनाको 9 अंक। मोनाको आज अपना लेट मैच खेलने वाला है, जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि पेरिस सेंट जर्मेन, डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन, 3 सप्ताहों के बाद अभी वो केवल 2 अंक लिए लीग टेबल के 13वें स्थान पर है, और ओलंपिक दे मार्सेई की कल हार हुई तो अभी वो 11वें स्थान पर है केवल 3 अंकों के साथ। सो इतना सब कुछ कल के खेले गए मैचों को लेकर। आज से इंग्लिश प्रीमियर लीग का चौथा सप्ताह आरंभ। शाम 6 बजे लगभग सभी मैच खेले जाएंगे, लेकिन रात के समय 2 अन्य मैच रखे गए हैं। सबसे पहले शाम 6 बजे एस्टन विला का मुकाबला नॉटिंगहम फॉरेस्ट से, बोर्नमुथ खेलेगी उसी समय ब्रेंटफोर्ड के विरुद्ध, चेल्सी के द ब्लूज खेल रहे हैं आज अपने स्टैमफोर्ड ब्रिज में हल सिटी के विरुद्ध। उल्लेखनीय बात ये है इस मैच को लेकर कि चेल्सी के खिलाड़ी होआओ पेड्रो को मिला, उसने जीत लिया प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ, तो हल सिटी का मैनेजर बना है प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द मंथ। आज कौन कितने पानी में है देखा जाएगा चेल्सी और हल सिटी के बीच शाम 6 बजे से। और क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला सिल्हर्स्ट पार्क में इपस्विच टाउन से, तो लिवरपूल के लाल आज अपने एनफील्ड में होंगे फुलहम के विरुद्ध। लिवरपूल फुलहम आज शाम 6 बजे। फिर आज रात 8:30 बजे टोटेनहम हॉटस्पर एक हॉट मुकाबले में एवर्टन का सामना करेंगे। टोटेनहम एवर्टन आज रात 8:30 बजे, और रात 11 बजे भी आज एक लेट मैच खेला जाएगा जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल एवे जाएगा सन्डरलैंड के मैदान पे। कल रविवार को 2 अन्य मैच, शाम 5 बजे कोवेंट्री सिटी वर्सेस ब्राइटन, तो रात 7:30 बजे, कल रात 7:30 बजे 7:30 PM ओल्ड ट्राफोर्ड में द मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, इस सीजन का दूसरा क्लासिक मुकाबला और ये एक महा डर्बी है। कल इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेस्टहैम की जीत हुई, वो लीग टेबल के पहले स्थान पर। आज और कल कई मैच खेले जाएंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। स्पेन की ला लीगा, इटली के सीरी आ, जर्मनी के बुंडेसलीगा और फ्रांस के लीग ए में भी आज और कल बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। तो टेनिस में, टेनिस की बात करें तो अलेक्जेंडर ज़ेरेव इस सीजन, इस साल अपने 3rd ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गया है। US ओपन के सेमीफाइनल में कल रात अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने कारेन काशानोव को 6-3, 7-6 और 7-6 से परास्त किया, और ऐसे में जर्मनी का अलेक्जेंडर ज़ेरेव इस ये टूर्नामेंट जीतने का प्रबल दावेदार बन गया है। आपको याद होगा कि इस सीजन जून में उसने फ्रेंच ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, लेकिन उसी समय एक महीने बाद विंबलडन फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने उसे हराया था। अब उसका ये 3rd फाइनल है, केवल 29 साल का है, और उसका मुकाबला बेन शेल्टन या फिर फ्रांचेस चाफो से होगा, और ये मैच आज सुबह खेला जा रहा था। एक नज़र आज के इस मैच को लेकर। सो अभी अभी खबर ये है कि बेन शेल्टन की जीत हुई। शेल्टन ने 4-6, 6-3, 6-3 और आखिरी सेट में 7-5 से फ्रांसेस चियाफोई को हरा दिया। ऐसे में US ओपन का फाइनल खेला जाएगा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यूएसए के बेन शेल्टन के बीच। ये फाइनल कल खेला जाएगा, जबकि लड़कियों का फाइनल, वुमेन सिंगल फाइनल, आज खेला जाएगा एलेना रायबाकिना और अरीना सबालेंका के बीच। ये वुमेन सिंगल फाइनल आज के लिए निर्धारित है। और यदि फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बात करें तो कल स्पैनिश ग्रैंड प्री रेस रखी गई है, और लेटेस्ट रिजल्ट में कल की जो पहली प्रैक्टिस थी उसमें किमी एंटोनेली की जीत हुई, लेक्लेयर दूसरे स्थान पर। आज 3rd प्रैक्टिस रखी जाएगी, फिर आज रात क्वालिफाइंग के लिए पोल पोजीशन के लिए भी रेस लगने वाली है। उल्लेखनीय है कि जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली पहले स्थान पर हैं 267 अंकों के साथ, जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर 66 अंक पीछे, और लेविस हैमिल्टन अभी 3rd स्थान पर हैं 191 अंकों के साथ। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। बता दें कि स्थानीय तौर पर आयलैंड एक्स्ट्रावेगेंजा क्रिकेट

टूर्नामेंट का फाइनल सीजन का फाइनल कल रविवार के लिए निर्धारित है। कल दिन के 10 बजे एसएसओ नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में माहपू में ये महाफाइनल खेला जाएगा। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में विनोबा भवन शाखा नंबर 4 रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे सियाकोंस्टांस सैंपिया के विनोबा भवन में यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नाडेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स द्वारा यज्ञ का आयोजन कर रहा है। सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपॉक वाक्वा के माराथी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेमोत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6:00 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3:00 बजे सैमोत्या सुल्फेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौराबो के सनातन और कौराबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4:00 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 4:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है।
2: Eight under the Mauritian Kilords. This is Radio Mauritius.

Nous travaillons la vignette au Harkat Ministry of Labour and Industrial Relations. Saat mein MBC ke milal julal sahyog se pesh karal jadba. Sector Manufacturing, New Knox Contracting Limited, June Saint-Vincent de Paul, Pai meha. Kujetha Tick Welder, JNC Level 3 kar le ba, 3 baris ke le experience ba. Application khatin call kar ya, 5446-9506 par, arse peche ke akhri tarikh 11 September 2026. Gem Innovation Limited, June La Brasserie Kyopip meha, kujetha Aluminium Fabric Cater, जिनका एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा, कारपेंटर जिनका एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा, ड्राइवर जिनका एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा और मैनुअल कार के ड्राइविंग लाइसेंस भी बा. Application khatin phone kariya 52 55 65 96 par ya email bhi kariya pancv ke saath gemini innovation limited at gmail.com par yani GEMINNOVATIONLTD याद रखिए @gmail.com. अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026. सेक्टर ब्यूटी पार्लर एस के सी एफ हेयर प्रोडक्ट लिमिटेड जोन कॉलोनी स्ट्रीट मेबर्ग में है खोजतवंजा बॉबर जिनका डिप्लोमा इन बॉबर. एप्लीकेशन का दिन फोन करिए

96-04 पर या अपन सीवी विदा करिए ऑन vidur-sharma@live.com. अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 13 सितंबर 2026. सेक्टर क्लीनिंग सर्विसेज ब्रिलियंट क्लीनिंग सर्विस लिमिटेड जोन करपू लेन रोजबेल में हक खोजत होवंजा क्लीनर जिसे पेयली पहाड़ लिबा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए सेकंड कात का हंसिस खत्म है 1506 पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026. सेक्टर रिटेल वुलवर्फ मॉरिशस लिमिटेड जोन द क्यूबिकल लॉट नंबर 1 रॉयल रोड फिनिक्स में है खोजत वंजा शॉप असिस्टेंट एट कास्कावेल आउटलेट JSC ले पहाड़ लिबा एप्लीकेशन खातिन अपन ईमेल विदा करिए HR@mauritius@woolworth.co.za पर और अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026. सेक्टर एग्रीकल्चर वेजी क्रिस्टल कंपनी लिमिटेड जन मंडप लेन मोताबा में है खोजत हवंजा फील्ड क्रॉप वर्क ग्रेड 2 जिकर एक बरी स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए सेकंड सेकंड कत 4066 पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026. सेक्टर होलसेल उनानिम लिमिटेड जो न प्लॉट 7 इंडस्ट्रियल जोन कोमाउदेल में है खोजत हवंजा सेल्स एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जिनका 12 महीना के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन अपन ईमेल विदा करिए अपन सीवी के साथ on accounts2@unanyme.mu पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026. सेक्टर होल सेल टेनफा कंपनी लिमिटेड जोन बुगेनविल रॉयल रोड के अपिप में है खोजत हवंजा ड्राइवर फॉर हैवी व्हीकल ग्रेड 1 जिकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा प्लस वैलिड गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहना रहे के एप्लीकेशन खातिर अपन ईमेल अपन सीवी विदा करिए admin@tenfa.mu पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026. सेक्टर मैकेनिक गैराज योगेश लिमिटेड जोन यूनियन रोड पिछे काफरे में है खोजत हवंजा ऑटोमोबाइल पेंटर जिनकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 28 25 546 पर यानी कि 28 2 55 46 या 57 80 75 08 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026. सेक्टर रेस्टोरेशन फूड विजन लिमिटेड जोन चेक इन हॉल SSR इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लेजांस में है खोजत हवंजा वेटर जे HSC या BSc कर लेबा एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी मेल द्वारा विदा करिए headoffice@foodvision.mu पर या कॉल करिए 637-9898 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026. सेक्टर मोबाइल रिपेयर्स एयंस फोन टेक लिमिटेड जोन सोंगोली मेबक में है खोजत हवंजा मोबाइल फोन टेक्नीशियन ग्रेड 2 JSC ले पहाड़ लेबा 6 महीना के एक्सपीरियंस बा और साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बा इन मोबाइल रिपेयर एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57 02 70 24 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 20 सितंबर 2026. सेक्टर लॉजिस्टिक्स SLD स्टोन लिमिटेड जोन बुदन स्ट्रीट अपर वेल में है खोजत हवंजा ड्राइवर ग्रेड 1 और के पास चाहना एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल 10 टन की ड्राइविंग लाइसेंस रहे के और 3 साल के एक्सपीरियंस भी एप्लीकेशन खातिर अप्लाई करिए ऑन मॉरिशस जॉब्स अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2026. सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मेटालाइट कंपनी लिमिटेड जोन लॉट 11 रोजबेल बिजनेस पार्क ग्रोबियो न्यू ग्रोव में है खोजत हवंजा हेल्पर वेल्डर टिग एंड मिग दोनों के लिए आपके चाहना NC लेवल 3 और दूबर स्केल एक्सपीरियंस टर्नर खातिन चाहला NC लेवल 3 दूबर स्किल एक्सपीरियंस ड्रॉट्समैन खातिन चाहला डिप्लोमा दूबर स्किल एक्सपीरियंस स्टोर कीपर HSC या SC अगर आप पढ़ ले हो लेकिन दूबर स्किल एक्सपीरियंस स्टोर मैनेजर खातिन चाहला डिप्लोमा प्लस 5 बर स्किल एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 58 02 30 48 पर या 57 50 94 63 पर अर्जी भेजी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026. सेक्टर लॉन्ड्री सर्विसेज ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड जनरल रोड कासी पोर्ट लुइस में है खोजत हवंजा प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक सुपरवाइजर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट गुड्स व्हीकल ड्राइवर या हेल्पर वैलिड गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहला और 1 बरिस के एक्सपीरियंस भी साथ में चाहला ऑपरेटर चिकन 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन अपन ईमेल विदा करिए सीवी के साथ humancapital@dcs.mu पर या कॉल करिए 207-2000 पर या कभी भी आप लोग सक बजा जाए ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड रॉयल रोड कासी पोर्ट लुइस. सेक्टर बेकरी नाइस एंड टेस्टी पेस्ट्रीज लिमिटेड जोन सावन रोड नोवेल फ्रांस में है खोजत हवंजा हेल्पर या पैकर एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 58

0948-02-3048 या 5750-94-63 पर अर्जबेजे की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026। सेक्टर इंश्योरेंस फेनिक्स इंश्योरेंस मॉरिशस लिमिटेड जनरल रोड को मॉडल में है खोजत होवंजा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जे एस सी ले पहले बा आपकी काशो खातिर अपन सीवी विदा करिए ऑन cr@phoenixins.mu या कॉल करिए 233-7044 पर या कभी भी आप लोग फिनिक्स इंश्योरेंस बचा जाए और

सी टेक्नीशियन जेकर डिप्लोमा बा इन्फॉर्मेसी और एक बरी स्किल एक्सपीरियंस बा वेलनेस एंड ब्यूटी एडवाइजर जे एचएससी ले पढ़ ले बा और एक्सपीरियंस बा इन सेल्स एंड कॉस्मेटिक फार्मेसी अटेंडेंट जे एचएससी ले पढ़ ले बा एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी बा। एप्लीकेशन का तेरा बन सीवी विदा करिया hr@medactive.mu पर या तो फिर सकबजा आप वेबसाइट पर जाए medactive.mu पर और वहाँ पर सकबा अपन एप्लीकेशन करे अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026। सेक्टर रिटेल ऑन द रॉक एजुकेशन लिमिटेड जो 6 आल्ड्रिन स्ट्रीट रोजब्रीन में है खोजा तवंजा केयर गिवर फीमेल अर्ली चाइल्डहुड कोर्स के साथ अगर आप लोग सकबा अप्लाई करें तो सकबा कॉल करे सेकंड सिथ सेकंड स्वीट का तवंजा इवेंट वहाँ पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2026। हेल्थ एक्टिव IBL लिमिटेड जोन कैंस रिजे स्ट्रीट ले सालिन पोर्ट लुइस में हो जाता वेयर हाउस असिस्टेंट तोहरा चाला एस सी या कोनो भी इक्वी वालों तोहर पार आज क्वालिफिकेशन बा डिलीवरी राइडर जे एस सी ले पढ़ ले बा या कोनी भी इक्वी वालों क्वालिफिकेशन बा साथ में वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस चाला रहे के डिलीवरी असिस्टेंट या हेल्पर तोहरा चाला एस सी या कोई भी इक्वी वालों क्वालिफिकेशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चला चाहे के प्राइवेट कार या फोकलिफ्ट या कोई भी तोहर पास ड्राइविंग लाइसेंस बा। मर्चेंडाइजर तोहरा चाहना एक्सपीरियंस इन रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग साथ में कस्टमर फोकस चाहना रहे कि प्रोएक्टिव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर और तोहर पास चाहला मोटरसाइकिल के एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रहे कि एप्लीकेशन खातिर ईमेल विदा करिया hr@healthactive.mu पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026। सेक्टर अस्पताल स्पेशल एजुकेशन नीड्स अथॉरिटी जोन साइबर टावर 2B फ्लोर इवेंट में है तो दसन अथॉरिटी जोन बा उ कंसल्टेंट खोजता स्पीच थेरापिस्ट की और एकर खातिन एगो असेसमेंट सकेला होई एडमिशन वैवेंसित खातिन और जोन असेसमेंट एक्सरसाइज बा ई ओपन रही 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक एंड एक स्पेशल एजुकेशन नीड्स रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स में सकेला होई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सुबह के 9 बजे से ढंग के 2:30 बजे तक और ई जो ड्यूरेशन है ई 3 दिन पर रही पर वर्क और ई है एस सी एन आर डी सीज जोन नंबर 1 प्लान दी पपाई राइजिंग रोड प्लान दी पपाई नंबर है DCC श्वसन कैंस सेकंड 3 जोन 2 और गजादुर फ्लाक SNRDC रॉयल रोड फ्लाक 420-0668 मेगो SENRDC कॉलोनल मेगो बोबासें 467-290 पर मुका के SENRDC बोआशेरी रोड मुका नंबर है 434-0820 जोन 3 खातिन फैने SENRDC रॉयल रोड फैने मेबर्ग नंबर है 634-4470 रिवे दे जांगी SENRDC La Baraque Street Rivière des Anguilles number 626-8859 zone 4 khatin ha Alibriand Moka SENRDC Alibriand Castel 696-3260 or John selected consultant reloke ego monthly allowance deval jai 66000 ke or plus refund of traveling by car or aap log ke ego period par rakhal jai prata terms par जन कौची दालो एंतरेसे बा अपन हिसाब से सकबा जा जाके एप्लीकेशन करे और लोग तोहरा चाहला एगो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करे के और तोहर करिकुलम विटाए अपन सभी कॉपीज ऑफ क्वालिफिकेशन एगो लेटर के साथ तोहरा चाहला विदा करे के बाय लेटेस्ट 23 सितंबर 2026 और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2026। तो चले देखी राजा वैकेंसीज इन द पब्लिक सेक्टर यहाँ पर जोन पब्लिक सर्विस कमीशन बा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता कम्युनिटी फिजिशियन और एक खातिन आप लोग सक बजा जाए https://psc.gov.mu.org/ पर अर्जी बेची की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026। प्राइवेट हाउस होल्ड में वैकेंसी रखल बा हाउस होल्ड एम्प्लॉय खातिन बदवाजू और मेबर्ग खातिन एप्लीकेशन खातिन सक बजा कॉल करे मेबर्ग EIC 6N का वैकेंस जिस पर या 630-0401 पर। हाँ वैकेंसी बा हाउस मेड खातिन लोअर वेल पर आप सक बजा कॉल करें गुडलैंड के EIC 282-5917 या 282-5918 पर और हाउस मेड के वैकेंसी रिविया जुखा पर और एजन खातिन सक बजा एप्लीकेशन करें कॉल करिए रिविया जुखा पर के EIC 412-6925 पर। और ई रहल नू थवाई नू लावेनिया जोन तोहर कार्य मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गए।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: सुबह के 7:20 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं एम चोरेज मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़ पर। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बेशक साथ देने का वादा करते हैं, तो बस याद दिला देते हैं कि हमारा और आपका साथ रहेगा अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। और अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक ज़रूरी विज्ञप्ति। क्लेमेंसिया के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 12 सितंबर को सुबह के 8:30 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी इस असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक ज़रूरी विज्ञप्ति।
0: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर। दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, सुबह का नजराना प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आपके अपने रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। और बेशक यहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात जो है दिन के 9 बजे तक है और हम आपका साथ देंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ ज़रूर देंगे। मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना और जय प्रताप सिंह के साथ सुबह के 7:22 हो रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग मीठी मीठी नींद से जाग चुके हैं और हमारा साथ दे रही है। चलिए, अच्छी बात है, सुबह की शुरुआत जो है आप हमारे संग कर रही है। और सुबह जब हम नींद से जागते हैं तो अपने आप से कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज जो भी होना है अच्छा होगा। और जब हम पॉजिटिव विचारों के साथ शुरू करते हैं तो सब कुछ अच्छा बीतता है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। और आज है शनिवार, शनिवार 12 सितंबर साल 2026। ये सुबह, ये पूरा दिन अच्छी तरह से बीते अच्छे लोगों के साथ, और जो भी काम करे उस काम में आपको सफलता मिले। और बेशक आजकल तो पूजा पाठ का समय बंधा हुआ है, घर घर में, हर मंदिर में गणेश जी का, गणपति बापा जी का हम नाम ले रहे, भजन कीर्तन झाकड़ी का आयोजन भी किया गया है। और इस मंगलवार को हम मनाएंगे महापर्व गणेश चतुर्थी का त्यौहार। सो एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सबों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं कि आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सो यह मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना शुरू हो चुका है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ।
3: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहाँ विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। त्याग पूर्वक उसका भोग करें, परंतु किसी का धन न लें।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। जहाँ इस मंगलवार 15 सितंबर को हम मनाएंगे मॉरिशस में बहुत धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें भगवान गणेश जी का हम जन्मोत्सव मनाते हैं। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः भारत में और दुनिया भर में भी जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश जी को माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से बनाया और उन्हें द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव वहाँ आए और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो शिव और गणेश के बीच संघर्ष हुआ। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सर काट डाला। पार्वती माँ अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सर लगाकर पुनर्जीवित किया। इसके बाद उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हिंदू धर्म में हम श्री गणेश जी का नाम लेते हैं और गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान, विवेक और शुभता के देवता माने जाते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं क्योंकि वो विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जीवन में हमारी जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो गणेश ही दूर करते हैं। और गणेश चतुर्थी जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो प्रार्थना में कहते हैं कि जीवन की बाधाओं को दूर करें, परिवार में सुख शांति हो, पढ़ाई और कार्य में सफलता मिले, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो, घर में समृद्धि और शुभता हो। और यह त्यौहार सामान्यतः भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है। लोग अपने घरों या सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की मूर्ति का स्थापन करते हैं। सो आजकल हम देखते हैं कि मॉरिशस में एक दो सप्ताह से लोगों ने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है और खूब पूजा पाठ होगी। उसके बाद गणेश विसर्जन होगा। पूजा के दौरान गणेश जी को दुर्वा, घास, फूल, फल और मोदक, लड्डू आदि अर्पित किए जाते हैं प्रसाद के रूप में। और कई स्थानों पर कई दिनों तक पूजा, आरती, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अंत में विसर्जन किया जाता है। मूर्ति को जल में विसर्जित करते समय भक्त गणेश जी से अगले वर्ष फिर उसे आने की प्रार्थना करते हैं। और गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं? गणेश प्रतिमा की स्थापना और फिर विसर्जन का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। यह हमें जीवन की नश्वरता और प्रकृति में लौटने का संदेश देता है। मिट्टी से बनी प्रतिमा अंततः जल में मिलकर प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। इसका भाव है कि हम ईश्वर को श्रद्धा से अपने घर बुलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर यह जो है त्यौहार हम मनाते हैं। मॉरिशस में और महाराष्ट्र में भी धूमधाम से मनाते हैं। सो गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव की श्रद्धापूर्ण स्मृति है और हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोगों ने गणेश जी की मूर्ति बनाई है और स्थापना किए घर में। अभी रोज़ पूजा पाठ ये सब हो रहा है, अच्छी बात है। भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और झाकरी ये सब हो रही है और मंगलवार को श्रद्धापूर्वक हम उनका विसर्जन भी करेंगे। सो जितने भी भक्त गणेश समय में सुन रहे हैं, गणेश जी का व्रत आपने रखा है, बहुत बहुत भाव से, बहुत प्रेम से आप यह व्रत धारण करें। आपका व्रत सफल हो, पूजा सफल हो। जितने गणेश भक्त में सुन रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है एक गणेश भजन।

तक पहुंचता है जो केवल सोचता रहता है वो वही का वही रह जाता है। और सुबह के 7:40 हो रहे हैं, दिस इज अ मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नजराना। जी हाँ, और अब हो जाए का प्यारा सा गाना, लंबू जी और बोलो टिंगू जी, हंसी मजाक और हास्य से भरपूर गाना है ये, फ्रॉम द मूवी कोली। चलिए एक साथ सुनिए गाना, शबीर कुमार शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

देवी और सजनों, प्रिय श्रोताओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवाज की दुनिया के दोस्तों, इसी गीत के साथ ही सुबह का नजाना पार्ट वन यहीं पर समाप्त होता है। 7:45 बजे आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम हमें लेकर जाएगा सुबह के 8 बजे के बहुत छोटी समाचारों की, और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना पार्ट टू सुबह की 8:05 पर। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

ज्ञान सरोवर हिंदी संगठन अर्थात हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा प्रस्तुत इस शनिवार कार्यक्रम में आप सभी प्रिय श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी भाषा एवं साहित्य पर बात करने के साथ साथ हम समसामयिक विषयों पर भी चर्चा करते आ रहे हैं। वर्षों से हिंदी संगठन मॉरिशस में हिंदी दिवस का आयोजन करता आ रहा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी तिथि को 1949 में हिंदी भाषा को संविधान सभा ने भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। हर वर्ष हिंदी भाषा के महत्व

0: महत्व पर जोर देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में गत सप्ताह हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा एक प्रथम कार्यक्रम प्रसारित हुआ। आज हम इसी कड़ी का दूसरा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज हिंदी दिवस पर चर्चा करने के लिए हमने श्री राज नारायण गति जी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। गति जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्ते, सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन।
0: हाँ, मैं बता दूं कि राज नारायण गति जी मई 2002 से सितंबर 2004 तक 2 साल से ऊपर और मई 2010 से मई 2018 तक 8 वर्ष इस पद पर आसीन रहे। पिछले सप्ताह 5 सितंबर को आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में पॉम्प्लेमूस आर्य जिला परिषद ने पॉम्प्लेमूस आर्य मंदिर में हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा पर एक चिंतन दिवस विमर्श का आयोजन किया था। पॉम्प्लेमूस आर्य जिला परिषद के प्रधान के नाते राज नारायण जी इस आयोजन पर प्रकाश डालिए।
1: देखिए, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक समाज हो, समय समय पर विचार विनिमय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमको कहाँ जाना है। इसी प्रकार से आर्य सभा मॉरिशस दशकों से या शताब्दी से कहें तो हिंदी के प्रचार प्रसार में का संलग्न है, कार्यरत है। तो इसीलिए जो गतिविधियाँ होती है आर्य सभा के अंतर्गत, उन सब पर विचार करने के लिए पॉम्प्लेमूस आर्य जिला परिषद ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि उस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, किस प्रकार से इस देश में आर्य समाज द्वारा, तब तो जब 1903 में जब आर्य समाज का प्रवेश हुआ तो आर्य सभा पंजीकृत संस्था नहीं थी, अनेक नामों से, वो समय नहीं लेना चाहूँगा वो सब जिक्र करते हुए, दूसरे नामों से वो जानते थे। तो तब से जो बोलते थे, पहले तो बोल चाल, ये पढ़ाई की बात हो, लिखने की बात हो, बाद में वो जब मिले 1903 में प्रथम आर्य समाज के गठन के लिए, आर्य समाज की स्थापना के, तब से हिंदी वो बोलते थे हिंदी में। इसके बाद तब हिंदी की पढ़ाई आरंभ हुई। जो आर्य समाज उस समय का था, पहले उनकी जो पाठशालाएँ थी उनका नाम था मठिया, और मठिया जो है बाद में चलकर उसका नाम हुआ है बैठका। उसके अंतर्गत शाम को जो बच्चे थे, कन्याएं थी, वो आते थे पढ़ने, उनका नाम था कन्या पाठशाला, और रात में वयस्क लोग, पुरुष लोग आते थे पढ़ने, तब वहाँ पर भी हिंदी की पढ़ाई होती थी। इस देश में जब शिक्षा का अभाव था, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी, आर्य समाज ने प्रारंभ किया हिंदी के माध्यम से कि इस प्रकार की पाठशालाएँ जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई हो। तो हिंदी की पढ़ाई वहाँ से आरंभ होकर चलते चलते फिर जो है, जो प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती थी प्राथमिक स्तर पर, हमारी बैठका कहें या पाठशाला कहें या आर्य मंदिर कहें, वो पढ़ाई होने लगी। इसके बाद में हमारे जो विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय, जो आर्यन वैदिक स्कूल है, एक तो वाकुआ में, एक लावांचुआ में, और फिर इसके बाद माध्यमिक स्तर पर हमारे आज 3 महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, DAV मोसेलमा, DAV पोर्टवे और DAV रोसबेल, वहाँ पर भी हिंदी की पढ़ाई होती है। और देश भर में इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई होने लगी। और उसके बाद वो बीज जो रोपा गया समाज द्वारा, आर्य सभा द्वारा, तो आज चल करके तृतीय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है। तो शनिवार के कार्यक्रम में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई, फिर जो वर्तमान गतिविधियां हैं उस पर चर्चा हुई। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं आज, क्योंकि उस समय की बात, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो हम लोगों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है आज हम कहाँ खड़े हैं और भविष्य में हमको क्या करना होगा, इस पर चिंतन किया गया। अनेक विद्वान विदुषी जो है हमारी संस्था से आए थे, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि उस अवसर पर विदेश एक विदुषी जो बल्गारिया में, भारतीय तो है, भारतीय मूल की है, हाँ। परंतु वो बल्गारिया में इन दिनों कार्यरत हैं, डॉक्टर मोना कौशिक जी, हाँ। विश्वविद्यालय में वो आए थे और उनका भी सहयोग रहा, उनका वक्तव्य रहा, तो हमारे लिए हम कह सकते हैं एक सफल आयोजन हुआ और बहुत सुंदर और स्तर का कार्यक्रम हुआ।
0: ठीक है, आपने विस्तार पूर्वक जो है हमें इस पर प्रकाश डाला आपने। तो गति जी, क्या वर्तमान में जो हिंदी की स्थिति है, क्या मतलब आप संतुष्ट है, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें सुधार लाने के लिए, अगर सुधार की ज़रूरत हो तो?
1: नहीं, अगर यदि भाषा की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो हर एक क्षेत्र में, मैं केवल शिक्षा या भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन आदमी संतुष्ट हो जाता है अपने आप से, अपने कार्यों से, उसी दिन उसका अंत होता है। हम लोगों को भी देखना होगा कि आगे कहाँ जाना है और आज हम कहाँ खड़े हैं। वर्तमान परिस्थिति की बात यदि हम लोग करें, तो जिस तरह से मैं अभी भी बोल रहा था, आर्य समाज ने जब हिंदी का प्रचार प्रारंभ किया, तो हम लोग उस समय हिंदी नहीं जानते थे, नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे भाषा। हिंदी को भाषा बोलते थे और बहुत इज्जत आदर के साथ बोलते थे कि हिंदी को हमारी मातृभाषा है, और साथ में जो भी कोई आपको मिल जाएगा हिंदी बोलते हुए कहीं पर, आप समझ जाइए वो आर्य समाज। ये लोग बोलते थे देखो वो आर्य समाज है, क्यों? क्योंकि वो हमारी पहचान थी। तो भाषा, यदि हिंदी हम लोगों ने प्रारंभ, इसका कार्य आरम्भ किया, तो ये एक नहीं कि हम लोगों को जीविका चाहिए, भाषा का प्रचार चाहिए, नहीं, पहली बात तो ये थी, इसके साथ हमारी पहचान, इससे हमारी पहचान बनती है। दूसरी बात, इससे हमारा जो संस्कार, जो हमारे मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, इससे हमको मिलते हैं। और तीसरी बात जो है, इसके आगे शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि जो बातें, जो मूल्य, जो विचार आपको हिंदी क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में, हिंदी जो हर प्रकार से आप पढ़ेंगे, तो जो बातें यहाँ पर हैं शायद अन्य आपको नहीं प्राप्त। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, हमारे देश में हर वक्त 10 वर्ष में जनगणना होती है। वैसे सभी को पता हो कि इस समय हमारे 6000 भाषाएं थी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस जो यूनेस्को वहां पर है, उनके अनुसार 6000 भाषाएं हैं। परंतु ऐसा भय है कि आने वाले 25-30 वर्षों में लगभग 4000 भाषाएं लुप्त होने वाली हैं। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। दूसरी बात, पिछले 50 वर्षों में भारत में जहाँ पर इतनी भाषाएं हैं, जहाँ इतनी विभिन्नता है, वहाँ पर 250 भाषाएं लुप्त हो गई हैं पिछले 50 वर्षों में।
0: गंभीर
1: समस्या। मॉरिशस की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पर जब आते हैं, हमारे यहाँ हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो एक सर्वेक्षण जब हुआ था, हम लोग लेते हैं एक कुछ आंकड़े हमारे सामने, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, ये किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी समाज का नहीं है,
0: नहीं,
1: ये आधिकारिक है। 1972 में जो लोग बोलने वाले थे, पढ़ने वाले थे हिंदी या भोजपुरी, 262,191 ये 1972 की बात है। आज 10 वर्ष बाद 1983 में, 1983 में कितने लोग हो गए? 50% घट गए, मतलब 262,000 से हम लोग आ गए 111,134 सोचिए आधा हो इसमें हम लोग घट गए 10 वर्ष बाद। और 1990 में आप सोचिए, इस बार तो 50% की बात ही नहीं है, इस बार आ गए हम लोग 12,000 पर, 12,848 ये 1990 की बात है। आज हम 2026 में हैं, फिर 10,000 2000 में, 90 के बाद सन 2000 में कितने लोग बोलने वाले थे जब गणना हुई, सर्वेक्षण हुआ? 7,250, ये सन 2000 की बात मैं बोल रहा हूँ, 25-26 वर्ष पूर्व। और इसके 10 वर्ष बाद और 2011 में फिर से जब गणना हुई, सर्वेक्षण हुआ, 8,690। हम लोग बात कर रहे हैं 2011, आज हम हैं 2026, लगभग 15 वर्ष बाद अगर आप फिर से सर्वेक्षण करेंगे, गणना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। हालांकि जो मैं बोल रहा था, पूर्व में इतनी सुविधाएं नहीं थी, गरीबी थी, हमारे गुरुजी क्यों नहीं बोलना नहीं जानते थे, क्यों बोलते थे, क्यों को क्यों, परंतु कम पढ़े लिखे होते हुए भी समर्पण भाव था, और वो पूरा जो है एक अपनी तपस्या समझ करके हिंदी का प्रचार करते थे। आज
2: संसाधन की कमी नहीं है, आज विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय की कमी नहीं है, आज विद्वानों विदुषियों की कमी नहीं है, और स्थिति ये है तो आज सभी संस्थाओं को, सभी अधिकारियों को, सभी जो शिक्षक हैं,

0: सभी जो अध्यापक या प्राचार्य या जो भी लोग हैं या पंडित पुरोहित हैं, ये सब आगे थे, हमेशा हैं प्रचार प्रसार में। इन सबको मिल बैठ करके, संस्था की बात छोड़ दें, सबको साथ मिल करके चिंतन करना होगा, विचार करना होगा स्थिति की गंभीरता पर कि हम लोगों को क्या, करना चाहिए, कौन सी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। मिल करके जब तक सामूहिक रूप से हम लोग बैठ करके नई बात करेंगे तो हम लोगों को कोई इसके लिए परिणाम नहीं निकलेगा और कोई सफलता नहीं मिलेगी।
1: हाँ, राजनारायण जी, आर्य सभा ने इस दिशा में एक पहल की है, वो उसके 3 सेकेंडरी कॉलेजेस हैं, मतलब माध्यमिक, और वहाँ पर अब ये नियम बना दिया गया है कि जो हिंदू परिवार से जो बच्चे आ रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से ग्रेड 7 से ग्रेड 9 तक
0: जी
1: उनको हिंदी करनी ही करनी है। जो लोग मान लीजिए प्राइमरी में नहीं कर पाए तो उन लोगों को एक फाउंडेशन कोर्स भी दिया जाएगा
0: जी, जी।
1: तो ये आर्य सभा की तरफ से एक पहल है। आप क्या सोचते हैं कि एक मतलब ये तो एक सराहनीय कार्य है?
0: नहीं, और नहीं, बहुत सराहनीय है। हाँ, ये एक पहल है, पहला कदम है, परंतु यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हम लोग केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहें, हम लोगों को देखें कि विद्यालय से बाहर भी दुनिया है, वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्या कर सकते हैं, इस पर हमको चिंतन करना होगा। आर्य सभा के पास तो और भी, जैसे हम लोग महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट हैं और हर एक मंदिर में हर जगह पर पूर्व प्राथमिक से लेकर के हम लोग आगे तक कार्य करते हैं, तो इन सब पर बैठ करके हमको देखना होगा समस्या कहाँ पर है, क्यों, कहाँ पर जड़ है। क्योंकि जब तक समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे, देखिए प्रचार तो बहुत हो रहा है MBC के स्तर पर, तो आप देखिए कितना कार्य होता है भाषा के प्रचार के लिए। महिला डॉक्टर उस समय जब आए थे तो उन्होंने भी बल दिया था कि हमको सरकारी विद्यालयों में भारतीय भाषाओं का प्रवेश होना चाहिए, प्रचार, लेकिन वो तो बीत गई वो बात। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्या करना होगा, मैं समझता हूँ यदि हम लोग भविष्य को देखना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को और सभी संस्थाओं को मिल करके, और तो आज तो सुविधा इतनी भी है कि हम लोग केवल जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाएं, मिल करके चिंतन करें, आत्ममंथन करें और इस प्रकार से जो निष्कर्ष निकलेगा उसका कार्यान्वयन करें।
1: ठीक है, हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। राजनारायण जी, आपने बहुत अच्छे विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए किस तरह हम हिंदी का उत्थान हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ सूचना के रूप में मैं बता दूं कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन 10 अक्टूबर को एक हिंदी सम्मान दिवस आयोजित कर रहा है ओक्टाविए में, जहाँ पर हम लोग हिंदी में जो SC और HSC के बच्चे हैं जो प्रथम स्थान पर आए हैं उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे, तो इसमें आप सभी आमंत्रित है। तो राजनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए।
0: धन्यवाद, हमारे आप लोगों को भी, आपने
1: हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए। तो अगले शनिवार को इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

बातचीत की जायजा लेलन दोनों देश की सरकार समझौता के अंतिम रूप देवे की दिशा में आगे बढ़त हवन एक संगे शगस द्वीप समूह के लेके मालदीव के गो नागरिक संगठन की ओर से करलगल कथित क्षेत्रीय दावा के भी जायजा लेवलगल मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र के बखत मालदीव के कोनों भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी से नजर रखता और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा खातिर जरूरत पड़े पर उचित कदम उठावे के निर्णय भी ले ले बाते। गैल हफ्ता से ही ये बात सामने आल बातें कि मॉरिशस अपन एयर स्पेस खोले के तैयारी करता एक खातिन सबसे आगे एगो एविएशन काउंसिल के गठन करल जाए। नेशनल एविएशन काउंसिल आवत दिन में कायम होय। प्रधानमंत्री गैल हफ्ता 3 सितंबर के कर घोषणा कर ले रहलन। सनाम सामी जून 2001 से 2004 ले पुराना एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहलन। उबोलन कि ई नवा संस्था देश खातिन कई गो नवा मौका लेके सामने आए। उनके मुताबिक मॉरिशस हवाई यातायात खातिन एगो रीजनल हब बनी सकेला। कर संगे सबले जरूरी बात ई है कि देश व्यापार और बिजनेस खातिन भी एक बड़का केंद्र बनी सकेला। मॉरिशस में 16वां गोप्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 आयोजित कर जाता। सम्मेलन में दुनिया के कई गो देश से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल होल हवन। एक उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय समुदाय को एक को मंच पर लावे के बातें आपसी सहयोग बढ़ावे के और प्रवासी भारतीय लोग से जुड़ल जरूरी मुद्दा पर चर्चा करे के बातें। ये आयोजन भारतीय मूल के लोग के बीच संबंध के मजबूत करे के दिशा में एक जरूरी पहल भी बाटे। बाजार में भिंडी यानी लालू के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी होल बाते जबकि सर्दी के मौसम में एकर सप्लाई भी कमती होता। उत्पादक लोग के मुताबिक पौधा के प्रभावित करे होला बीमारी खातिन भी एकर खेती मुश्किल हो गल बाते। कईगो किसान भिंडी के पैदावार कम कर दिले हवन जबकि कईगो उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देवल कर बाते। ये खातिन बाजार में सप्लाई कमती होल बाते और वो कर दाम भी बढ़ गल बाते। ये जानकारी स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालू संगुन दिले हवन। विदेश में पाकिस्तान में सेना के प्रभाव खाली देश के सुरक्षा ले सीमित नए बातें बखेर अब पाकिस्तानी आवमी सरकारी संपत्ति रियल एस्टेट और कानूनी व्यवस्था पर पूरा रूप से हावी हो गल बातें। लग्जरी सेलिंग क्लब से लेके असैधानिक कब्जा होला जमीन ले पाकिस्तानी सेना देश के जरूरी संसाधन पर अपन अधिकार की लगातार मजबूत करता। तई रह भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान का थी। धन्यवाद। डॉक्टर मनीलाल रोड लालमाटी में खट्टर बरिस की 71 के श्री बानीदेव सीतल जिनका लोग शोफर फ्यूएल नाम से जाने रंजा गुजर गल होन गरमाती आज दिन के एक बजे उनकर पत्नी श्रीमती इंद्रानी सीतल के घर डॉक्टर मनीलाल रोड लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी रोड लालमाटी के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। Trio Road, 66 बरिस की 76 के श्री राजेंद्रनाथ भजन जिनका लोग राजन मासो नाम से जाना रंजा गुजर गल होन गरमाती आज दिन के बारह बज के आधा उनकर बेटा श्री रितेश कुमार भजन के घरे त्रियो रोड त्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खाते नेता मिनिस्ट्री की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। रॉय रोड कौन जाबी 82 बरिस की 92 के श्रीमती आनंदी बाई दम्या पैदाशी नाम बिकिया जिनका लोग आनंदी बाई नाम से चंद्र रंजा गुजर गल होन करमाती आज दिन के बारह बज के आधा उनकर बेटा श्री विराज दम्या के घरे रॉय रोड कौन जाब से उठा के दफनावे खातिन कौन जाब के शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: जिसको कहना है कहने दो, जिसको कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मॉरिशस। जी हाँ, ये है एमबीसी रेडियो मॉरिशस चैनल AM2। हमारा प्रसारण चल रेडियो पर और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी आप हमें देख सकते हैं, टिकटॉक पेज पर और रेडियो मॉरिशस और रेडियो पर आप हमें सुन रहे हैं। थैंक यू जी हमें देखने और सुनने के लिए। सो सुबह का नजाना मस्त मॉर्निंग शो पार्ट टू। कुछ डेडिकेशन गीत है हमारे पास, आपको नाम जोड़ना है। यस, फिल्म सागर, हीना, बादल, धर्मात्मा, राम बलराम, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, आशिकी, सरगम, युद्ध और 19-20 फिल्मों के गाने। अगर किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, किसी की मंगनी या सालगिरह, या आप किसी को हाई हेलो कहना चाहते हैं या आपसे बातें करना चाहते हैं, तो फ़ोन कीजिए 4028085 या फिर SMS कीजिए टिकटॉक पेज पर और अपनों के नाम गीत जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी सागर, यूं ही गाते रहो। यस, सीमा शीत आपके नाम, शैलेंद्र, जय, रशीदा, जानू, सुभावती ही, रानी, कैलाश, कुमी, हर्षाना, श्याम, ब्यूटी, मिमी, शैलेंद्र जी, नमस्ते शैलेंद्र जी, विनोद बॉय, वीरानंद को, बीना पादू और अलीशा तमाम, बीना पादू, सभा पादू परिवार, रोजबेल, सुरेश, असलम दरबारी, वेश, स्नीपर, कैम फ्रांसिस, माला, यही गीत जाएगा नास के नाम भी, और साथ में पूनम, सारा, इंदिरा जगारी, मलिका, माला, वेरी गुड मॉर्निंग माला, गणपति बापा मौर्या, लखन अश्मित, यह गीत आपके नाम और सब अश्मित परिवार के अब मेबर्ग से है, रोबर्टो कार्लोस, यह गीत आपके नाम भी, यस, नमस्ते अश्मित बेटा, किंग रॉक, ग्वानेल, सुदेवी वाकवा से है, वेरी गुड मॉर्निंग, आपके नाम भी जाता है गीत, फिर सन है, राम श्रेष्ठ, एमिलियन, लाहीबॉब, मनुबाई, टुकर, विक्रम सूरजबा, विक्रम सूरजबाली, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू, फिर अनजानो लुवायों भी, ज्योति लोबिन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यही की जाएगा साइलेंट की ओर से, उनकी पत्नी रानी, बेटी परी, मामा है रीता, मौसी रेणुका,

और सब भैरव और सितारु परिवार के नाम। नताशा, ये गीत आपके नाम भी जाएगा और यही गाना हम चला रहे हैं। जितने भी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पे ऑन AM2, विक्रम सुरजवाली जी, हाँ यह गीत आपके नाम भी, आप गाँव बार रहते हैं, सिवा गाना आपकी प्यारी सी पत्नी हेमा के नाम, मिस्टर पप्पू, यह गीत आपके नाम भी, ज्योति लोबिन, यह गीत आपके नाम भी हम चला

रेडियो के जरिए सुन रही है. सो नेक्स्ट गाना फॉर यू इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी सागर. और आपके SMS ऑन द टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस फोन कर सकते हैं कार्ड जवाब विद जवाब विद सैक पर.

मनुष्य के जीवन को बचाते हैं। और जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान ही ने संसार को बनाया है, उसकी रचना की है और हम सभी भगवान के बच्चे हैं कि नहीं। सो उसी का आशीर्वाद है हम पर, तो हम जिंदगी, अभी हमारा जीवन सांसें चल रही है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। सो उस परमपिता परमेश्वर, उस खुदा, उस जीवनदाता को नत नत उनको हमारा नमन है और उन्हें प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, अगर सुख देना है तो बस इतना देना जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना है तो बस इतना दुख दीजिए जिससे आस्था हम ना खोएं। ठीक है, सो अगला गीत अग्निपथ फिल्म का गाना है देवा श्री गणेशा। जैसे कि आप जानते हैं, इस मंगलवार को हम गणेश चतुर्थी त्यौहार मना रहे हैं। सो बहुत से लोगों ने व्रत धारण किया है, घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। सो सभी गणेश भक्तों के नाम, और यहाँ पर कुछ SMS की ओर हम बढ़ेंगे। और बेशक बहुत से लोग हैं साधना मेरे ख्याल से, और यह गीत जाएगा उनके पति देवानंद, बेटे नीतीश, कुशाल, करण, बेटे अनुषा, मनशा, दामाद, बहु कविना, संहिता, नाती, नातिन, जिया, तेजल, गौरव, कृष्ण, सब जीवन और गोपाल परिवार मेरे ख्याल से, और यूनियन पार्क लाहौजा और दुबई के सब जीवन परिवार के नाम अगला गीत। यस, यही गाना जाएगा मौदाबे के हनीतलाल जी और सब हितू परिवार के नाम। यही गीत हम चलाएंगे सब लौटन परिवार के नाम। जय गणेशा, श्री गणेशा। जी हाँ, और यही गाना हम चलाएंगे सुनीता जी के नाम, फिर प्रिंसेस मोहानी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। यस स्वीटी जी, नमस्ते। गीत आपके नाम, आपके बेटे आरव के नाम, चंद्रानी पत, हेलो। फिर ज्योति लोबिन, इट्स ओके डियर। वीमा, सूरज, सजादा, अरियान, आरियाना गास, पामेला पेमाल, कविता हिरुआ, नलिनी, किंग तुमान, मिलनपुन मगर। जी हाँ, आप लोगों के नाम भी अगला गीत जाएगा। गणेश राजपंत और प्रिंसेस मोहनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शशि तुलसी जी, सादर प्रणाम। गणपति बापा मोरिया, जय गणेशा। और हेलो रईश, हाउ आर यू। प्रिंसेस मोहनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और जितने भी लोग इस समय रेडियो मॉरिशस सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमें टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और बस हो जाए एक गणेश भजन। और कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। गणेश जी को वरदान मिला है कि कोई भी पूजा हो, कोई भी मंत्र हो, कुछ भी हो, सबसे प्रथम गणेश जी का नाम लिया जाता है। उसका नाम लेने से सब कार्य सफल होता है। तो चलिए यही भजन हम चलाएंगे सब गणेश के भक्तों के नाम, और साथ में यही गीत, यही गाना जाएगा सुनीता जी के नाम।

लोगों का काम है कहना, कहने दो, तुम बस प्यार से जियो और मस्त रहो। अगला गाना 1920 फिल्म का गाना है मी तो मेरे मन के। यस, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में यह गीत जाएगा मैरिज के नाम। शनाया, रियाज, दया, लीना रामबर्न, श्रुति, अनिशा, श्रुति सदनाक से है, रंगा पेन नादा, यह गीत आपके नाम भी। रामुजू देवन, नमस्ते। यस श्रुति, एज यू से लाइफ इज शॉर्ट सो नो वरीज नो हसल। गणपति बापा मोरिया, रंगा पेन नादा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश जी आपको हमेशा प्रसन्न रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हेलो दीपा, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। कमला कैथर कोको से है, सो आपके नाम भी अगला गीत। मिसेस देवी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, नमस्कार, सुस्वागतम। और ये गाना जाएगा त्रियोले के, ललिता कुशल जी के नाम, उनके सभी बच्चों और परिवार वालों के नाम। चाची प्रभावती है, चाची प्रभावती फ्रॉम नोवेल फ्रांस, उनके बेटे बहू, बेटी, दामाद और सब लोल परिवार के नाम। भाई राफिक मोहित तायक से है, सलाम अलैकुम दोस्त, ये गीत आपके नाम, आपके परिवार के लिए। और अब्दुल करीम भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी। और भाई आबू है बाकवा से, हेलो भाई आबू, ये गीत आपकी बेगम, आपके बच्चों के नाम।

रोजिदा हाईलैंड से है, इब्राहिम पोट्री से, और आफिज है लावेनिया सैंपिया से, हमारा साथ दे रही है। हेलो वरुणा, वेरी गुड मॉर्निंग। लीन्स, नमस्ते लीन्स, आप है मोरियल कनाडा से। ऑलराइट, सो नेक्स्ट गाना फॉर यू। और वरुणा जी भी बहुत प्यार से मैं सुन रही है, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। विकास रामलेखा, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त, और वो इस लाइव को फॉलो कर रही है टिकटॉक पेज पर भी। चलिए एक साथ सुन दीजिए प्यार सा गाना फ्रॉम द मूवी 1920।

जिंदगी में बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, आगे सोचिए, क्योंकि विचारों पर किसी का जोर नहीं चलता। यस, और बेशक

एक सुबह के 8:35 हो रहे इस समय मॉरिशस में, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट गाना फ्रॉम द वे भूल भुलैया, यस मेरी ढोलना, सुर निगम के स्वर में, गीत सुरागनी घोंबा, ये गीत आपके नाम लिंस ने गीत मांगा उनके नफ्यू योहान पर गास के लिए। आप रहते हैं एनएस लोगों शोभा पॉम्पले मुझसे और वेदना फ्रॉम कैटरबोन लेडी जागुआ, यस दिनेश ठाकुर, फिर एंजल नोवेल फ्रांस, नोवेल फ्रांस के सभी परिवार, नोवेल फ्रांस सशी तुलसी की ओर से नोवेल फ्रांस उनके सभी परिवार वालों के लिए, इंदिरा जी यह गीत आपके नाम और राजेश उगर और सब उगर परिवार के लिए, शोभा जी पॉम्पले मुझसे है हमारा साथ दे रही है, थैंक यू। और यही गीत जाएगा फ्रांसिस का के नाम लेडी जागो, जो इस समय मीठे मीठे दिन से जागी है। लिंस भी मोगयाल से बहुत प्यार से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, बट बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ऑलराइट, सुनीता सिल्वा, यस आप फ्रांस से है। अगला गाना याशील एंड सब याशील परिवार वालों के लिए, और बेशक जो लोग बीमार है, अस्पताल में है, क्लिनिक में है, या अभी आपने सर्जरी किया है, सो घर पर लौटे हैं, सो दवा के साथ साथ दुआ की ज़रूरत भी होती है। सो हम दुआ करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, आप लोग जल्द ठीक हो जाए। और जो लोग अकेले हैं, तन्हा है, अनाथ आश्रम में रहते हैं, यह गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना सोनू निगम के स्वर में, मेरे ढोलना।

बात करी है पर सच है, यहाँ पर कहने के तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं पर सच्चाई में यहाँ पर कोई किसी का नहीं, सब यहाँ पर पराई है। सोचने वाली बात है। सुबह 11:40 और अगला गाना राम बलराम फिल्म से लिया गया, शोभा जी वाकवा से है अगला गाना जो है, यह इस फिल्म राम बलराम का गाना जाएगा आपकी दो बेटियाँ शबीना अनुष्का के लिए। ऑलराइट, फिर इम्तियाज़ किंग या गीत आपके नाम कृष्ण दुखित राम ये गाना जाएगा आपके लिए, फिर आपकी पत्नी प्रतिमा, आपकी बेटी रिया और श्रिया के लिए, गिरीश भाई यू आर मोस्ट वेलकम, दया जी भी हमारे साथ है और यहाँ पर अभी हम एक दोस्त से मिल लेते हैं। ओके, लाइन कट गई, आई एम सो सॉरी बट यू हैव टू वेट, क्योंकि एक तरफ हम यहाँ SMS भी देख रहे हैं, टिकटॉक की ओर जा रहे हैं और फोन लाइन भी हम जा रहे हैं, सो थोड़ा समय तो लगता है। मैं सोचता हूँ आज के लोगों में धैर्य की कमी है, यू पीपल डोंट वॉन्ट टू बी पेशेंट, तुरंत चाहते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, यस, सो आपको धैर्य धारण करना है, बारी बारी से हम आपके फ़ोन कॉल्स और SMS भी, फ़ोन कॉल्स रहे SMS भी पढ़ रहे हैं। या अंतिश बाको अगला गीत आपके नाम भी जाएगा, आशा जानू कौतेज से है यह गीत आपके नाम, हमा कुमारी शुभम दीदी आरती जीजाजी और सब जानू परिवार के लिए, सुनन चितन के लिए स्कारिये से है यह गीत आपके नाम और आपके पूरे परिवार वालों के लिए, ललिता चरण यह गीत आपके नाम भी जाता है, संजय हरिचरण पीतों से पत्नी संध्या बेटी हुविष्का सब हरिचरण परिवार के लिए, कुणाल हिरीलाल यह गीत आपके नाम भी जाएगा पूरे परिवार के लिए, अरविंद विशेषर यह गीत आपके नाम आपकी पत्नी और बच्चों के लिए, हमारे दोस्त देवेन नदीवाला वैंकूवर कनाडा से, हेलो दोस्त काफ़ी दिनों के बाद आप हमसे संपर्क करें, क्या बात है, हमने सोचा आप हमसे नाराज़ है क्या, सो टू माय बेस्ट फ्रेंड देवन नदीवाला वैंकूवर कनाडा, यस, अगला गीत आपके नाम और आपको अभी से कहते हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देवन नदीवाला आशना अनुषा, और यही गीत जाएगा अंजू ननकू की ओर से, यह गीत जाएगा उनकी माताजी, उनके पति और सब ननकू परिवार के लिए, और यही प्यारा सा गाना टेकन फ्रॉम द मूवी राम बलराम, यह गीत जाएगा इन सब लोगों के नाम, फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज़ के बीए फ्रेंच, एमए फ्रेंच, PhD इन फ्रेंच में एनरोल स्टूडेंट्स और वहाँ के सभी प्रोफेसर लेक्चरर के लिए, विदाउट फॉरगेटिंग एक्स टीचर्स ऑफ MGI कॉलेज, मिसेस बंदन, मिसेस जमन, मिसेस ओकल, मिसेस जमादो और द होल टीम, सतबे SSS कॉलेज जो कि दक्षिण में पाया जाता है, सो वहाँ के सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम, अगला गीत लड़की पसंद की, ओए होए कैसी लड़की पसंद की है आपने, ज़रा हमें भी बताइएगा।

ये बात तो सच है कि आज कल की दुनिया में, आज के आधुनिक युग में, एक अच्छा लड़का मिलना शादी के लिए या अच्छी लड़की मिलना शादी के लिए बहुत मुश्किल है। पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, वन इन ए मिलियन, है ना। और कहते हैं कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है, खुश रहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों से आपको खुशी मिलती है ना, है कि नहीं। सब कुछ पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट गाना, जी हाँ, अगला गाना जो है हमने इसे लिया है फ्रॉम द मूवी आशिकी, दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे। ये गीत आकाश चेतन के नाम, ललिता चरण, उनकी प्यारी सी बिटिया है स्वीति, शर्मिला मोहर और मिकायला कपन, केत, प्रतिमा, रोशनी, बानू, तीना दीना, आपाया, विरापन, सजू और रोसाई भाई के नाम ये गाना जाएगा। इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, ईश्वरदत्त मोहल और इंद्रानी सिवदारी, जो इसका लिए है सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन कर रही है, सो उनके नाम अगला गीत जाएगा। और यही गाना हम चलाएंगे इशक अली के नाम, बिमला जी के नाम, लालदेव प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए, यस, सो आपके नाम भी। और लव कुश त्रिपाठी मोहतबा से है और हमारा साथ दे रही है, सो चलिए हम उनके नाम भी प्रस्तुत करते हैं। द नेक्स्ट गाना फिल्म आशिकी का गीत है दिल का आलम। अब दिल का क्या आलम है, चलिए एक साथ सुनते हैं।

फिल्म आशिकी गीत के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे युद्ध की एक फिल्म के गीत के साथ। वो गाना मैंने कर जाएगा दिन के 9 बजे। 9 बजे का संक्षिप्त समाचार, उसके बाद पीक टाइम मैगजीन आज की चर्चा। सुबह के 6 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फ़ोन कॉल, एसएमएस के लिए शुक्रिया, और हमें टिकटॉक पर देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारा और आपका साथ आपको अच्छा लगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे और एम्प्री रेडियो मनोरंजन पर अद्भुत सनसनी खबरों के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्रामों का ऐसा भी होता है। सो कल तक हमें इजाज़त दीजिए, और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शुभ दिन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। और संक्षिप्त समाचार लेकर के पहुंच गई है हमारी सहयोगी तीना बुदना। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार तीना।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। पिछले हफ्ते से ही ये बात सामने आ चुकी है कि मॉरिशस अपना एयर स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले एक एविएशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेशनल एविएशन काउंसिल आने वाले दिनों में बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। सनाम सामी, जो 2001 से 2004 तक पुराने एयर एक्सेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये नई संस्था देश के लिए कई नए मौके लेकर आएगी। मॉरिशस में 16वां गोप्यू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। ये आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बाजार में भिंडी यानी लालू की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि सर्दियों में के इस मौसम में इसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। उत्पादकों के अनुसार पौधों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के कारण भी इसकी खेती मुश्किल हो गई है और कुछ किसानों ने भिंडी की पैदावार कम कर दी है, जबकि कुछ ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके चलते बाजार में सप्लाई कम हुई है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और आज की चर्चा कार्यक्रम में कर्क रोग और कीमियोथेरेपी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होने जा रही है। हमारे सहयोगी अभी उदय के मेहमान होंगे डॉक्टर वासु कमलेश साधु और फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार। तो आज की चर्चा कार्यक्रम 9 बजे के इन समाचारों के बाद दिन के 10 बजे तक रेडियो मॉरिशस पर। विदेश में शुक्रवार को रूस के उत्तरी किंजल्स क्षेत्र में एक मिनी बस कार और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार मिनी बस किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी, तभी उसकी ट्रक से टक्कर हो गई। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
4: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India. Namaste to the adventurous millennials and brave moms. Et à tous ceux qui aiment manger de délicieux plats indiens sans avoir à les préparer. Avec les plats Haldiram's, la marque renommée de l'Inde, manger indien is as easy as egg dhoti. Vous voulez un aloo paratha ou un tandoori garlic chili naan? No more kitchen battles. It's ready in a flash. Un bon curry, un dal makhni ou un paneer tikka masala? Haldiram's is in your fridge and ready to eat. Alors quand vous êtes hungry, no worries avec Haldiram's. Haldiram's, the authentic taste of India in no time.

मॉरिशस में अधिकांश लोगों की मृत्यु का मुख्य कारण कैंसर यानी कि कर्क रोग है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक उनकी जो निवारण है, उनकी जो ट्रीटमेंट है यानी कि जो इलाज है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है। खासकर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर कैंसर बीमारी के निवारण को लेकर के जीतोड़ मेहनत कर रही है। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में। नमस्कार और आदाब। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त आज की चर्चा कार्यक्रम में एक ऐसे विषय हम लेकर के आए हैं जो अपने आप में खासकर मॉरिशियसीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है और अर्थपूर्ण है, और ये आम लोगों से जुड़े हुए हैं यानी कि कैंसर बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोग इसी से पीड़ित हैं, खासकर मॉरिशस में अलग अलग प्रकार के कर्क रोग है। और इससे जूझने के लिए किस तरह का इलाज किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां ली जाती हैं, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु और साथ ही साथ फार्मासिस्ट श्री

0: नितिन कुमार, आप दोनों का आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर वासु।
1: नमस्ते अभी।
0: नमस्ते नितिन कुमार।
2: नमस्ते अभी।
0: सो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैंसर बीमारी से जुड़ी जो बातें महत्वपूर्ण बातें, खासकर कर्क रोग की जो इलाज है। जब एक पेशेंट यानी कि एक मरीज जब अस्पताल में जाते हैं तो वे लोग डॉक्टर से मिलने के बाद फार्मासी की तरफ जाते हैं, और फार्मासी की तरफ जब जाते हैं वहाँ पर उनको दवाइयाँ मिलती हैं। तो आज एक ही प्लेटफॉर्म में फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों का मिलन यहाँ पर रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यहाँ पर मिलने और बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले जब हम कैंसर का इलाज शब्द सुनते हैं तो हमें ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत एक बात सामने आती है वो है कीमोथेरेपी। लेकिन फिर भी हमें तामोक्सिफेन, प्लाक्ली, टैक्सेल, मोफिन जैसे नाम और बड़े बड़े भयंकर नाम सुनाई देते हैं, और अचानक सब कुछ बहुत उलझन भरा सा होने लगता है। क्या ये सभी कीमोथेरेपी दवाइयां हैं? क्या ये सभी एक तरह से काम करती हैं? और अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो दो मरीजों को बिल्कुल अलग अलग दवाइयां क्यों दी जाती हैं? सबसे पहले मैं एक ही सवाल पूछूंगा और जवाब अलग अलग एस्पेक्ट मैं मतलब उम्मीद रखूंगा आप लोगों से। सो पहला जो प्रश्न है आप पर शुरू करता हूँ डॉक्टर जी।
1: ओके, पहली बार जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोर्फिन जो है वो कीमोथेरेपी नहीं है।
0: okay.
1: वो दर्द की दवाई है। तो हमारे पास एक WHO पेन स्केल है जिसके अनुसार हम दर्द की दवाई देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, फिर उसको बढ़ाते हैं अगर पेशेंट को टॉलरेंस नहीं मिलती है। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में दो पेशेंट के इलाज में वो अलग हो सकते हैं क्योंकि वो आता है कैंसर के बायोलॉजी के ऊपर। एक कैंसर का अलग अलग बायोलॉजी होता है।
0: okay.
1: इसीलिए एक दो पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रकारित होते हैं उन लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह की ब्रेस्ट कैंसर है, उसके हिसाब से कीमोथेरेपी या ओवरथेरेपीज देती है।
0: और आपके एज ए फार्मासिस्ट नितिन कुमार, आपके अनुसार ये जो कीमोथेरेपी दवाइयां हैं वो क्या हैं, और ब्रेस्ट कैंसर की जो दो मरीज हैं बिल्कुल अलग अलग दवाइयां क्यों दी जाती हैं?
2: बिल्कुल, मैं डॉक्टर कमलेश की बातों से सहमत हूँ। दो मरीज के लिए एक जैसे कैंसर के लिए एक जैसी दवाई नहीं हो सकती। ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि कैंसर कौन से स्टेज पर है, किस टाइप का कैंसर है और किस ऑर्गन में कैंसर है। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ड्रग्स या मेडिसिन्स दवाइयों को चुनते हैं। तो एकदम से जी लोगों में कुछ भ्रांति है, जैसे कि एक तरह का कैंसर एक तरह की दवाई से और सबके ऊपर, सब मरीजों के ऊपर एक तरह से काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं मॉर्फिन की, मॉर्फिन एक पेन की एक दवाई है, क्योंकि सबसे पहले हमें कैंसर को समझना होगा। कैंसर के मरीजों को स्टेज टू और स्टेज थ्री के दौरान काफ़ी पेन महसूस होता है, क्योंकि कैंसर जब टाइम टू टाइम ग्रो होता है तो वो दूसरे नर्व्स को सप्रेस करता है, यहाँ तक कि कुछ ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है।
0: अच्छा।
2: और इस दौरान कैंसर पेशेंट्स को बहुत सारा पेन मिल सकता है। उसके लिए वी हैव सम पेन किलर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पैरासीटामोल, देन वी इंक्रीज सम इंटेंसिटी, वी गो टू other, let's say, diclofenac, and then we go to tramadol, and if we need, we go up to morphine and fentanyl as well.
0: तो यहाँ पर बहुत सारी दवाइयों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त, खासकर उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन नहीं कहूँगा, एडवाइस दिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। मॉरिशस में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे अधिकांश जगह है जहाँ पर लोग कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं, और ये जो कार्यक्रम है उन लोगों को एक आइडिया मिलेगा, खासकर कैंसर पेशेंट के साथ साथ उनके परिवार को भी पता चलेगा कि यहाँ पर कीमोथेरेपी और साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं किस

तरह से कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और ऐसी दवाइयाँ लेने से उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब डॉक्टर जी, वास्तव में ये कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? सब लोग कहते हैं, मैं मतलब जो कैंसर बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं हम लोग फ्रेंच में उसको शिमियो करने जा रहे हैं, कीमो करने जा रहे हैं, ये है

0: लेकिन हमारी शरीर में जो अच्छा सेल्स हैं वो भी उससे पीड़ित होता है, क्योंकि उसका मेन जो फंक्शन है वो है सेल्स को ख़त्म करना।
1: हाँ, मतलब जब वो कीमोथेरेपी के दौरान वो जो सेल्स को चुन करके नहीं मारते हैं, सभी सेल्स को मार देते हैं।
0: नहीं, जैसे हमने स्टडीज़ किया है लाइक बिफोर, तो उस हिसाब से वो दवाई लाइक मेनली वो कर्क सेल्स को मारती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो होता है, जैसे कहते हैं कोलाटरल डैमेज, जैसे एक युद्ध होता है कोलाटरल डैमेज, तो जो अच्छा सेल है, हेल्दी सेल है, वो भी उससे पीड़ित होता है।
1: और श्री नितिन कुमार, आपके हिसाब से?
2: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बातों से। सबसे पहले हमें कैंसर के इलाज को समझना होगा। कैंसर का इलाज केवल कीमोथेरेपी नहीं है। काफ़ी लोगों में भ्रांति है कि कैंसर का इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर कैन बी ट्रीटेड विद ए सर्जरी,
1: अच्छा।
2: इट कैन बी ट्रीटेड विद ए रेडियोग्राफी, इट कैन बी ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी, जैसे है जिसको हम कीमोथेरेपी अभी बात कर रहे थे। इट कैन बी ट्रीटेड विद हॉर्मोन थेरेपी एंड सो कीमोथेरेपी उन थेरेपीज़ में से एक है जिस जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्जरी में हम डायरेक्ट एक सेल्स को रिमूव कर देते हैं बॉडी से, जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको टारगेट करके रिमूव कर देते हैं। कीमोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। कीमोथेरेपी में हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हम ब्लड के थ्रू सिस्टम में पहुंचाकर हम कैंसर सेल्स को धीरे धीरे टारगेट करते हैं। तो इससे कैंसर सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सेल्स डिवाइड होना कम हो जाते हैं और वो एकदम से ख़त्म भी हो सकते हैं।
1: इसका मतलब यह है कि कीमोथेरेपी मूल रूप से कैंसर सेल पर हमला करती है।
2: बिल्कुल।
1: अब जब हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं डॉक्टर वासु, उसके साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? क्या इसी वजह से हम मतलब बाल का झड़ना, जी मिचलाना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, ये सब बातें सुनने को मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं?
0: जैसे नितिन ने कहा कि वो कीमोथेरेपी वो ब्लड के थ्रू जाता है, तो जैसे मैंने पहली बार ही कहा उसका मेन टारगेट है मारना। तो हमारे शरीर में जब वो सर्कुलेट होता है तो कहाँ कहाँ पर इफ़ेक्ट करता है वो तो रैंडम है, तो उस हिसाब से शायद कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट मिलता है, शायद कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलता है, ये भी होता है। और लोगों का साइड इफ़ेक्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल से वारी
1: मतलब उनके
0: होता है,
1: शरीर पर डिपेंड करता
0: जैसे कि
1: है।
0: वो रिएक्ट करता है,
1: अच्छा।
0: इसीलिए वो साइड इफ़ेक्ट होता है।
1: और श्री नितिन कुमार, आपका आपके
2: जी
1: अनुसार?
2: मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बात से। जब हम कैंसर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल हम करते हैं, एक केमिकल को अपने शरीर में सिस्टम के थ्रू ब्लड के थ्रू हम पहुंचाते हैं, तो देन ये जो केमिकल है बॉडी में घूमता रहता है ब्लड सर्कुलेशन में, तो इसका काम होता है कैंसर सेल्स को मारना, ढूंढ कर मारना। तो कैंसर सेल्स होती हैं जो फास्ट ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो शरीर में कहीं और जगह भी ऐसे सेल्स मौजूद रहते हैं जो कैंसर सेल्स नहीं हैं, जैसे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स, जैसे कि हमारे बोन मैरो, जैसे कि हमारी गट लाइनिंग। तो कैंसर कीमोथेरेपी में जो कीमो ड्रग्स होते हैं गलती से उन सेल्स को भी टारगेट कर देते हैं, जैसे डॉक्टर ने अभी मेंशन किया था कोलेट्रल डैमेज, ये बिल्कुल इसी तरह है। सो वो सेल्स जब डैमेज होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे बालों का झड़ना। आपने कई बार सुना होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट में लोगों के बाल झड़ने शुरू हो
1: झड़ने
2: जाते
1: शुरू
2: हैं,
1: होते
2: कमज़ोरी का महसूस होना। इसमें काफ़ी सेल्स जो अच्छे सेल्स भी हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मरीज की होती है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है।
1: तो जब कोई कहता है कि उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसे खुद से ये अंदाज़ा नहीं लग मतलब वो महसूस नहीं करते हैं कि उसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं।
2: जी बिल्कुल। हर किसी के साथ सेम साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन, मरीज़ टू मरीज, ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं भी आते हैं, ये टोटली

0: डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, कि पेशेंट की एज क्या है, किस स्टेज का कैंसर है, किस ऑर्गन में कैंसर है, पेशेंट की स्वास्थ्य बिना कैंसर के कैसा है, उसमें खून की कमी है कि नहीं है, उसमें उनकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है। तो हर पेशेंट में ये अलग रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सेम साइड इफ़ेक्ट्स मिले दवाइयों के साथ।
1: अच्छा डॉक्टर जी, कितने बार एक पेशेंट को एक हफ्ते में या फिर एक दो हफ्ते में उनको, मतलब कितने बार उन लोगों को कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उसको जाना पड़ता है?
2: एक्चुअली ये उन लोगों के, जैसे मैंने कहा कि कर्क के बायोलॉजी पर
1: निर्भर है
2: तो उस हिसाब से वो एक ट्रीटमेंट रेजिमेन ने, जैसे पूरी दुनिया में गाइडलाइन है, NCCN गाइडलाइन, उस हिसाब से डॉक्टरों वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम के एक हफ्ते में एक बार होता है, कुछ होता है कि ऐसे भी होता है कि कोई पेशेंट जो है वो कुछ बार तो वो दो बार भी करते हैं और समटाइम्स मोर।
1: अच्छा,
2: लेकिन जो भी ये होता है, जैसे हमने अब हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट्स हुआ, अगर ये सब हुआ तो वो केमो भी पोस्टपोन हो सकता है। जैसे कि केमो के स्टार्ट से पहले हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, ताकि उसके शरीर केमो को हैंडल कर सकते हैं। अगर केमो को हैंडल नहीं किया जा सकता तो पेशेंट को ये जो आज का सेशन है उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो होता है पेशेंट के लिए के मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही वीक होता है। मैंने कई बार कई पेशेंट को देखा कि वो लोग, मुझे फिर से आना पड़ेगा, फिर से ये सब करना पड़ेगा, उन लोगों के लिए काफ़ी भारी होता है। तो
1: और सुनितिन जी, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी दवाइयाँ कौन सी होती हैं?
0: जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा, जैसे ट्रास्टिजुमाब है, पाक्लिटक्सल है, एक्चिनोमाइसिन डी है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स होती है। सो इसमें डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर है और हम क्या एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं कैंसर में।
1: एक मरीज के लिए ये नाम सुनने से काफ़ी डरावने भी लग सकते हैं ना?
0: जी बिल्कुल, कुछ भ्रांतियों की वजह से ये नाम कुछ डरावने भी लग सकते हैं,
1: क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे भी जब मतलब जो लिस्ट आपने दी है उसको पढ़ने में, उसका उच्चारण करने में भी मतलब प्रॉब्लम होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: और ये सब आप दोनों के दिमाग में है ऑलरेडी।
0: जी ये तो होना चाहिए, धीरे धीरे आ जाता है।
1: तो आप लोग उसके एक पर्टिकुलर जो दवाई है उनकी फंक्शन, उनकी मात्रा, उनके कितने मिलीग्राम, ये सब मतलब बहुत ही बारीकी के साथ मतलब आपको जानना चाहिए, और देना प्रेस्क्रिप्शन देते वक्त भी इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ना?
0: जी बिल्कुल, एज ए फार्मासिस्ट मैं कह सकता हूँ कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, इसी चीज़ के हमने सीखा है अभी तक कि कौन सी दवाई और कितने स्ट्रेंथ में और किस पेशेंट को ये जानी चाहिए और किस तरीके से और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दिस इज़ वॉट हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के पहले। ये एक फार्मासिस्ट का काम होता है, कैंसर फार्मासिस्ट, कीमो फार्मासिस्ट। तो हम इलाज के पहले ही ये चीज़ें एक टीम में, एक डॉक्टर के साथ, एक नर्स के साथ हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कौन सी ड्रग हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी ड्रग हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दवाइयों के इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं जो हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक यही काम है एक फार्मासिस्ट का डॉक्टर के साथ इन कीमोथेरेपी।
1: और डॉक्टर जी, आपके अनुसार जो अभी नितिन ने कहा है, आप लोग भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते होंगे?
2: हाँ, हम भी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, और हमारी टीम में मेनली जो एक मेन ओंकोलॉजिस्ट है वो ये सब कैलकुलेट करता है। हम लाइक टीम वर्क करते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और हमारे पास नर्सिंग भी है ट्रेन कीमो देने के लिए, क्योंकि

0: पेशेंट जो है वो हम सिर्फ जो रेगुलर वेन कैनुला से नहीं दे सकते, कुछ पेशेंट में हम या पीए पोताका जो कहते हैं पीएसी या पिकलाइन जो है उसका केयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये सब एक टीम वर्क है.
1: जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कैंसर बीमारी से जुड़ी जो ट्रीटमेंट है और साथ ही साथ कीमोथेरेपी और उनकी दवाइयाँ किस तरह से लेनी चाहिए, इस पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु और फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार के साथ. अब बात थोड़ी सी दिलचस्प होती जा रही है. अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोग आपने कहा प्लेक्सी
2: पाक्लीटैक्सल
1: और ऐसे जो दो टाइप की जो कीमोथेरेपी के बारे में बात कर रही हैं, तो टामोक्सिफेन और एनास्ट्रोजोल और साथ ही साथ ट्रास्टुजुमाब जैसी जो दवाइयां हैं, वो इसके बारे में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि दवाइयां का नाम क्या है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि दवाइयां का काम क्या करने की कोशिश कर रही है.
2: जी बिल्कुल, जैसे शो की शुरुआत में हमने कहा था कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के इलाज हैं, जैसे कि सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है. सो जैसे आपने अभी एक नाम दवाई का लिया, टामोक्सिफेन. टामोक्सिफेन एक हार्मोन थेरेपी ड्रग है जो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में इस्तेमाल होती है. एंड आई थिंक डॉक्टर कमलेश इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे.
1: हाँ डॉक्टर जी,
0: तो टामोक्सिफेन जो है वो तो हार्मोनल जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन, उसके रिसेप्टर को वो मॉड्यूलेट करता है. तो अगर हम उसको टारगेट करें तो ब्रेस्ट कैंसर में उसने प्रूव किया है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है. लेकिन जैसे मैंने कहा, बायोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है. तो जो हार्मोनल एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक हार्मोनल थेरापी जिसका नाम है टामोक्सिफेन.
1: जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया जा रहे हैं, शायद मेरे लिए नया है, लेकिन जो लोग कैंसर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर पीड़ित हैं या फिर उनके परिवार उनकी दवाइयाँ खरीदते हैं या उनको लेकर के कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उनको लेकर के अस्पताल या फिर क्लिनिक जाते हैं, वे इन सभी दवाइयों से परिचित हैं. जी हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे इस आज की चर्चा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लेंगे एक ब्रेक.

0: आज की चर्चा।
1: जी हम बिल्कुल आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं और बाद में इसका प्रसारण भी किया जाएगा एमबीसी टेलीविजन के तीसरे चैनल पर। और हमारा जो विषय है वो मॉरिशसीय संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है, किस तरह की कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट की जाती है, कौन कौन सी दवाइयाँ ली जाती हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो मेन गेस्ट के रूप में आए हुए हैं डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु और साथ फार्मासिस्ट श्री नितिन कुमार, फिर से आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। अब श्री नितिन, आप हमें ये बताइए कि ये तामोक्सिफेन होता क्या है, ये काफ़ी तकनीकी लगता है, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसे घर पर देख रहे जितने सारे लोग आसान भाषा में उसको आसानी तरीके से समझ सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, जैसे हमने शो की शुरुआत में जिक्र किया था कि कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग तकनीकी का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था शो में कि हम सर्जरी के थ्रू हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, कीमोथेरेपी के थ्रू हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, ऐसे ही हम एक हार्मोन थेरेपी के थ्रू भी कैंसर का इलाज कर सकते हैं। उस हार्मोन थेरेपी में एक ड्रग का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है टैमोक्सिफेन। और उस टैमोक्सिफेन एक हार्मोन को टारगेट करता है जो हार्मोन ज़रूरी होता है सिग्नलिंग के लिए इन ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम इस सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं तो हम कैंसर सेल की ग्रोथ को भी ब्लॉक

0: कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कमलेश इसके ऊपर कुछ प्रकाश
1: डालें। जी जी बिल्कुल,
2: जैसे नितिन जी ने कहा कि वो सिग्नल को ब्लॉक करता है, तो वो हमारे जो कैंसर सर हैं कि अगर बायोलॉजी को डायग्नोज किया जाता है कि उसके पास वो होमोनर रिसेप्टर पॉजिटिव है, तब हम ये ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: कुछ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के ऊपर तो वो होमोनर रिसेप्टर वो निगेटिव होता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं होता, लेकिन जो पॉजिटिव है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बायोलॉजी के ऊपर है, और वो उसके रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है। लेकिन साथ साथ जैसे हमने कहा कि वो थेरापीज जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो टामोक्सिफेन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
1: और नितिन जी, क्या ब्रेस्ट कैंसर हर मरीज को टामोक्सिफेन दी जाती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जो हर महिला को टामोक्सिफेन देना ज़रूरी है?
0: जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि शो की शुरुआत में हमने कहा कि ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है अलग अलग मरीज के ऊपर, कैंसर का क्या स्टेज है, कैंसर मरीज की क्या एज है, उनके हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि सभी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को एक ही दवाई काम करेगी और समान तरीके से काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर सो मेनी कीमोथेरेपी ड्रग्स विच कैन बी गिवन।
1: तो इसका मतलब है दो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन उनकी बिल्कुल अलग अलग दवाइयाँ मिल सकती हैं।
0: जी बिल्कुल, इलाज उनका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है।
1: अब भयंकर भयंकर नाम यहाँ पर मुझे दिया गया है, एनास्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और एक्जिमिस्टेन, ये ऐसे ऐसे नाम भी सुनते हैं, ये कहाँ फिट बैठते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये भी कीमोथेरेपी में इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। कीमोथेरेपी में भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, ये निर्भर करता है कि हम कैंसर की किस स्टेज में हैं, पेशेंट की क्या कंडीशन है, मरीज की क्या हालात है, और किस ऑर्गन में, किस टिश्यू में ये कैंसर पनप रहा है, तो उसी हिसाब से हम अपनी दवाई का चुनाव करते हैं, उसी हिसाब से कैंसर की क्या, पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसी हिसाब से हम दवाई को चुनते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम दवाई का चुनाव करते हैं।
1: डॉक्टर जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी सारी दवाइयां क्यों हैं, लेकिन एक मरीज के नज़रिए से ये अभी भी बहुत ही उलझन भरा हुआ सा लगता है। डॉक्टर सिर्फ एक कैंसर की दवाई चुनकर हर किसी को क्यों नहीं दे सकते हैं?
2: क्योंकि जैसे हमने शो में कहा, नितिन जी ने भी कहा कि हर कैंसर के कहाँ पर हुआ है और जो हुआ है वो किस तरह की बायोलॉजी का है, तो वो हम बायोलॉजी से के रिजल्ट से ही पता चल सकता है कि वो कैसी है, फिर उस हिसाब से वो हम डिसाइड करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है। इसीलिए हर कैंसर के लिए एक ही ट्रीटमेंट नहीं होता, और हम आज सिर्फ केमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। एक कैंसर के ऊपर, शायद एक कैंसर के ऊपर कीमोथेरेपी भी निर्भर नहीं होता, हमें रेडियोथेरेपी करना पड़ता है, हमें इम्यूनोथेरेपी भी करना पड़ता है, और स्टेजिंग भी देखना पड़ता है, जैसे कि हम डायरेक्टली सर्जरी भी कर सकते हैं, ये सब प्रश्न होता है। तो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो ये एक टीम वर्क होता है, उसका एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जो हम बैठ कर बात करते हैं कि पेशेंट के ये हुआ है, ऐसे ऐसे हैं, तो ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, क्या हम गाइडलाइंस को अडियर कर रहे हैं, तो ये सब ये इंटरनल वर्क है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अपनी ट्रीटमेंट को एक दूसरे इंसान के ट्रीटमेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपको जो हुआ है और वो दूसरे इंसान को जो हुआ है और कैसी डिग्री, कौन सी स्टेज, ऐसा ऐसा कौन सी बायोलॉजी, वो सब अलग होते हैं।
1: डॉक्टर जी, ऐसे भी पेशेंट होते हैं जहाँ पर कैंसर बीमारी से तो जूझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वे अन्य बीमारियों से भी वे इसी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो वहाँ पर स्थिति कैसी होती है?
2: जो पेशेंट हैं जिसके पास डायबिटीज हाइपरटेंशन है, उनके सिचुएशन ज़्यादा जैसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दूसरी बीमारियां हैं जो वो कीमोथेरेपी और दूसरे थेरापीज़ को वीकन करता है।
1: अच्छा।

0: तो उस पेशेंट को हर तरफ से स्टेबलाइज करना पड़ता है और ज़्यादा देर से मो मॉनिटरिंग डिमांड होती है उस पेशेंट में.
1: जी, इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें दवाई का चुनाव करना चाहिए और पेशेंट की मॉनिटरिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है,
2: अच्छा.
1: क्योंकि कीमोथेरेपी को बीच में रोकना पड़ सकता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा
2: ज्यादा
1: हो
2: हो
1: जाते
2: जाएंगे.
1: हैं, पेशेंट जो मरीज़ जो है ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा ही असर दिखा रहे हैं, तो हम कीमोथेरेपी को रोक भी सकते हैं, रोकना पड़ सकता है।
2: अच्छा, तो नितिन, क्या आप हमें ये बता सकते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है, टारगेटेड थेरापी और हार्मोन थेरापी, तो एक साथ दिया जा सकता है ये?
1: जी, ज़रूरी नहीं है कि दोनों थेरेपी को हम एक साथ इस्तेमाल करें, हम एक के बाद एक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम टारगेटेड, डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से तरह का है और कौन से ऑर्गन में है और किस स्टेज पर है, उस हिसाब से हम दोनों में से किसी एक को पहले चुनेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इस केस में।
2: डॉक्टर जी, एक गलतफहमी यहाँ पर दूर मैं करना चाहूँगा. लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई नई दवाई सामने आ गई है दुकान में और मंडी में, और जो ज़्यादा असरदार हैं, जो ज़्यादा तेज़ हैं, तो आपको लगता है कि ये बेहतर होगी? क्या ये सच है?
0: दुकान में नहीं, फार्मेसी में.
2: हाँ, वही है, फार्मेसी में. सॉरी सॉरी, मैं अपने बात को फिर से कहता हूँ. दुकान, आई वांट टू से मार्केट में. मार्केट
0: हाँ,
2: में
0: मुझे पता
2: एक
0: है.
2: मार्केट में एक नई दवाई सामने आई है जो ज़्यादा असरदार है, तेज़ है. क्या ये सच है इस तरह से?
0: देखिए, स्वास्थ्य जो होता है, जैसे हम नई गाड़ी खरीदने के लिए ऐसे नहीं है, स्वास्थ्य जो एक साइंटिफिक अप्रोच जो उस पर निर्भर होता है. तो जो कैंसर भी है, अगर नई दवाई होती है तो किस केस में वो निर्भर होता है उस हिसाब से देना पड़ता है. जैसे कोई केसेस होता है वो पहले की दवाइयों से भी ट्रीट हो सकती हैं,
2: अच्छा.
0: जो नई दवाई है हमें देखना पड़ता है क्या देयर आर इनफ लिटरेचर्स टू बैक इट अप, और वे इनफ एविडेंसेस, इज इट वर्किंग इन द पॉपुलेशन ओनर, तो ये सब देखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं.
2: इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आप लोग एज ए फार्मासिस्ट, आप लोगों को जो नई नई दवाइयाँ फार्मेसी में आ रही है,
1: जी बिल्कुल,
2: मार्केट में,
1: हम
2: मंडी में, तो आप लोग अपने आप को अपडेट करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हमें नया काम मिल जाता है, हमारा काम है अपने आप को अपडेट रखना नई नई दवाइयों, नए नए खोज से. मैं कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर कमलेश, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, दवाइयों के ऊपर काम होता रहता है बैकग्राउंड में. जैसे हम कोई दवाई अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मरीज़ के लिए बेनिफिट तो है लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जा रहा है. तो साथ ही साथ मार्केट में कंपनियां इसके ऊपर शोध करती रहती हैं इन बैकग्राउंड, और धीरे धीरे इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाकर, उसके स्ट्रक्चर में, उसके केमिकल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं. जैसे मार्केट में आप देखते होंगे अदर इन टेक्नोलॉजी, वी गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं, हर साल वो नई नई चीज़ें मार्केट में उतारते रहते हैं. ऐसे ही दवाइयों के बारे में भी है, अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनके ऊपर शोध के ऊपर खूब सारा एफर्ट लगाकर उसमें उसको बेहतर बनाते हैं और मार्केट में एक नया उसका एक वर्जन लेकर आते हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं और शायद उसमें जो इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एट द सेम टाइम.
2: जी बिल्कुल, हमने बात की महत्वपूर्ण विषय के बारे में, खासकर उन दवाइयों के बारे में जो खुद कैंसर का इलाज करती हैं. लेकिन डॉक्टर जी, आप हमें ये बताइए कि इन दवाइयों के सेवन करने से कौन सा दर्द होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पेशेंट्स महसूस करते हैं?
0: जो दर्द होता है आज तक कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है वो एक चैलेंजिंग स्ट्रैटेजी है, तो वो दर्द को कम करने के लिए वो पेशेंट टू पेशेंट बनता है.
2: अच्छा.
0: कुछ पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट और कीमोथेरेपी के बाद हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट को दर्द ही नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है, कुछ पेशेंट को टॉलरेबल दर्द होता है, उन लोगों को दर्द होता है लेकिन दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट को दवाई देना पड़ना पड़ता है.

0: हर बार अगर दर्द हुआ तो दवाई देनी पड़ती है. और जैसे कि कुछ कर्क पेशेंट्स जो पालिएटिव केयर में जाता है जिनकी उम्मीद नहीं,
1: हाँ,
0: तो उन लोगों में हम पेन मैनेजमेंट करते हैं. जैसे कि
1: पेन मैनेजमेंट, ये भी होता है?
0: हाँ, हर पेशेंट में पेन मैनेजमेंट होता है.
1: पेन मैनेजमेंट का मतलब,
0: जैसे दर्द होता है, जैसे हमने शुरुआत के शुरुआत में कहा था कि पैरासिटामोल, जिक्लोफेनाक, फिर ट्रामाडोल, वो WHO पेन लाडर के ऊपर होता है. तो कैंसर पेशेंट में भी वो निर्भर होता है कि उनके पेन क्या है, कौन सी स्केलिंग में है. हमारे स्केलिंग है 0 to 10.
1: अच्छा,
0: तो उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या देना पड़ता है, क्या नहीं देना पड़ता है, और कौन सी दवाई काम भी कर रही है उस पेशेंट के ऊपर.
1: और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर दर्द को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब आपके यहाँ आते हैं या फिर उनके परिवार आते हैं आपके यहाँ दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो क्या वे सवालात करते हैं कि इससे मुझे दर्द ज़्यादा होगा, इससे मुझे ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इससे मुझे, तब वहाँ पर आप एज ए फार्मासिस्ट कौन से निर्देश, कौन सी जो सलाह हैं आप देते हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बात से. पेन मैनेजमेंट इन कैंसर थेरेपी इज़ अ चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कैसे पेन को हम मैनेज करें पेशेंट के साथ. लेकिन मैं कहूँगा कि कीमियोथेरेपी में इतना पेन नहीं होता है. वो पेन जो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं कि लोग कीमोथेरेपी लेते हैं इट कैन बी वेरी पेनफुल, इसमें बहुत दर्द होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कीमोथेरेपी कैन बी पेनलेस, इट इज़ एज सिंपल एज टेकिंग एन इंजेक्शन. लेट्स से आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपने कभी सलाइन लिया होगा किसी ने, तो वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है. कीमोथेरेपी भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस कीमोथेरेपी का इंजेक्शन उस नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर दिया जाता है और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है. इसमें क्या होता है कि एक साइकिल होती है जिसमें दो तीन तरह की दवाइयाँ होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि दो तीन तरह की दवाइयाँ हो सकता है एक दवाई है या दो है या फिर तीन भी है. ये डिपेंड करता है कि मरीज कौन सा ट्रीटमेंट ले रहा है, किस स्टेज पर है, कैसा उसका हालात है, उसके ऊपर निर्भर करता है. लेकिन कीमोथेरेपी एक पेनलेस तरीका है कैंसर को मिटाने का. हाँ, वो जो दर्द की भ्रांति है, मैं कहूँगा कि एक कैंसर से रिलेटेड है, क्योंकि कैंसर पहले फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, जब वो थर्ड स्टेज में ऐसे मूव होने लग जाता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में आ जाता है, तब कैंसर जब सेल्स ग्रो करने लग जाती हैं किसी ऑर्गन के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर, वो आसपास के जो टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं उनको सप्रेस करने लग जाते हैं. और जब वो उन नर्व्स को प्रेस करने लग जाते हैं, सप्रेस करने लग जाते हैं, वहाँ पर उन नर्व्स के थ्रू पेन क्रिएट होता है. जब कैंसर अपनी अनकंट्रोल्ड मैनर में आता है, तब उस पेन को मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. उस पेन को मैनेज करने के लिए, जैसे डॉक्टर कमलेश ने अभी यहाँ पर कहा कि डिफरेंट तरीके के लेवल के हमारे पास दर्द की दवाइयाँ हैं, जो शुरुआत होती है पैरासीटामोल से, जो काफ़ी सिंपल है, लोग लेते हैं. उसके बाद डिक्लोफिनेक आ जाता है, और उसके बाद में फिर अगर ज़्यादा ही पेन है, नर्व पेन है, वी हैव प्रिगाबलिन फॉर दैट, फॉर नर्व पेन. वी हैव ट्रामाडोल, वी मे हैव टू मूव टू मॉर्फिन एंड फेंटानिल समटाइम्स. सो मॉर्फिन की ये भी डिफरेंट तरीके से मरीज को हम दे सकते हैं.
1: हाँ, जैसे इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जब दर्द ज़्यादा होता है लोग अक्सर मॉर्फिन और फेंटानाइल जैसे नाम सुनते हैं, वे लोग लेते हैं, ये दवाइयाँ क्या हैं?
2: जी, ये पेन को मैनेज करने के लिए, जब काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, ये ओपोइड्स होते हैं, ये एक तरह के ये पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं.
1: अच्छा,
2: तो मॉर्फिन जो है वो डिफरेंट डोसेज फॉर्म में उपलब्ध हो सकता है, जैसे कि हम डायरेक्ट इंजेक्शन मरीज को दे सकते हैं, और मॉर्फिन की कैप्सूल्स, टैबलेट्स अवेलेबल हैं. ये इट इज़ अवेलेबल इन सिरप फॉर्म एज वेल. सो ये मरीज की हालत पर डिपेंड करता है कि वो टैबलेट को स्वालो नहीं कर सकता है तो हम उसको इंजेक्शंस दे सकते हैं. अगर टैबलेट नहीं ले सकता है तो हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में, जैसे कप सिरप्स होते हैं, हम लिक्विड फॉर्म में उसको दे सकते हैं. ऐसे ही फेंटानिल के बारे में भी मैं कहूँगा, फेंटानिल के इंजेक्शन से हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में. और फेंटानिल के मैं कहूँगा कि इट इज़ अवेलेबल इन पैचेस फॉर्म एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि आप इस पेन मैनेजमेंट के लिए रोज़ दवाइयाँ

0: ले या फिर रोज 2 से 3 बार दिन में दवाइयाँ ले, आप एक पैच को आप प्लेस कर सकते हैं कहीं किसी बॉडी पार्ट पर और वो एक पैच लगभग 3 दिन के लिए काम करता है, 72 आवर्स के लिए। आफ्टर 72 आवर्स आप अपने उस पैच को चेंज कर सकते हैं। तो इस 3 दिन के दौरान आपको पेन महसूस कम होगा।
1: और इसके बारे में मोर्फिन और फेंटानिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जी?
2: जैसे नितिन ने कहा, मोर्फिन को हम जैसे केस टू केस देते हैं और हमें देखना पड़ता है कि वो काम कर रहा है या नहीं। और मोर्फिन के बारे में मैं लगभग ये ऐड करूँगा कि उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट है हमने देखा कर्क पेशेंट में, तो वो कंस्टिपेशन है, तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि वो कंस्टिपेशन को कैसे कंट्रोल करे। और फेंटानिल पैच जैसे नितिन ने कहा कि वो पैच लगाते हैं और लगभग 72 घंटों में वो स्लो रिलीज होता है ताकि वो पेन कंट्रोल करें।
1: डॉक्टर जी, मोर्फिन देने का मतलब ये है कि इंसान की मौत होने जा रही है?
2: नहीं नहीं, मोर्फिन देने का मतलब,
1: क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ।
2: क्योंकि मोर्फिन देने का एम जो है हम डर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान मरने जा रहा है। मोर्फिन देने का मतलब है कि कुछ लोग के कैंसर शायद स्टेज 2 स्टेज 3 भी जो हो सकता है, लेकिन उसे वो पेन इंटॉलरेंस होता है, तो हम देते हैं ताकि वो कम हो जाए। क्योंकि पेशेंट्स जो हैं पोस्ट ऑपरेटिव जो मेजर सर्जरीज भी होता है उसके बाद में हम देते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड कंट्रोल में। तो अगर वो हम देते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि वो इंसान मरने वाला है, वो सिर्फ उसकी डर को कंट्रोल में काबू में रखने के लिए करते हैं।
1: नितिन जी, एक बहुत बड़ी चिंता के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। क्या कैंसर की दवाइयाँ में हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं?
0: जी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैंसर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि जैसा डॉक्टर कमलेश ने शुरुआत में ही मेंशन किया था, कोलेट्रल डैमेज, अगर हम कुछ बुरी सेल्स को टारगेट करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ सिर्फ बुरी सेल्स को ही ख़त्म कर पाएंगी, कुछ अच्छी सेल्स भी उसमें कोलेट्रल डैमेज में ख़त्म हो सकती हैं। वो अच्छी सेल्स जैसे होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स में, बालों का झड़ना, और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के हो सकते हैं, उल्टी और डायरिया हो सकता है, और मरीज का काफ़ी कमज़ोर महसूस करना, क्योंकि मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक मरीज में ही आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट ही ना आए या किसी को सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिले। हो सकता है कि डिपेंड करता है कि मरीज टू मरीज की कौन सा साइड इफ़ेक्ट उसको मिल सकता है, उसकी बॉडी की कंडीशन, कैंसर का स्टेज, ये सब उसके ऊपर, एज फैक्टर, यू नो, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब उसके ऊपर मैटर करता है इसके ऊपर।
1: डॉक्टर जी, जितने सारे, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम का, आप जितने सारे जो लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर कैंसर बीमारी से जूझ रहे पेशेंट्स जो हैं, उनके परिवार, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरा संदेश थोड़ा लंबा है, तो मैं संदेश ये
1: संक्षिप्त रूप में
2: तो मैं ये कहूँगा कि जैसे नितिन जी ने कहा, वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं लोगों से वारी होता है, तो उस हिसाब से हम कीमोथेरेपी के बाद दवाई देते हैं ताकि वो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाए, वो साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में हो जाए और वो कंट्रोलेबल हो जाए। तो आप अपने आप जब आप कीमोथेरेपी को रिसीव कर रहे हैं तो दूसरे लोग के साथ कंपेयर ना कीजिए, आपकी केस दूसरे लोगों के केस से बिल्कुल अलग है, उसकी रिएक्शन अलग है और जैसे आप उसकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी अलग है। तो अगर आप कर्क से पीड़ित है, कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, तो आपकी मानसिक संतुलन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको विश्वास रखना चाहिए कि आप ठीक होंगे।
1: और नितिन जी, जितने सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कमलेश की बातों से। एक मानसिक संतुलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यू नो, देर आर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के बीच में कि कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें काफ़ी सारा दर्द हो सकता है और मरीज की

0: मौत तक हो सकती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी मैं कहूँगा कि एक पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है और साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम ही साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो सब केस टू केस वेरी करता है। तो मेरा मानना है कि ये आप इसको अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और घबराएं बिल्कुल नहीं। अपना मानसिक संतुलन आप स्ट्रोंग रखें और इसको कोर्स को फॉलो करने में अपना ध्यान ज़्यादा दें, ना कि लोगों की भ्रांतियों में।
1: तो श्री नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमलेश सिंह वासु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए और कैंसर बीमारी, इससे जुड़ी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात की, साइड इफ़ेक्ट्स और दवाइयों के बारे में बात की। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंड्रे और ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जहाँ पर कैंसर बीमारी से जूझने के बाद अपने अंदर की जो मानसिक शक्ति है उसको सुदृढ़ करके वे आगे बढ़े और आज के समय में वे लोग मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, ठीक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान कर्क रोग जैसी बीमारी से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है। अगर आप अपने अंदर में आपकी जो जीने की जो अदम्य इच्छा है, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा, अगर उस जिज्ञासा को और ज़्यादा सशक्त बनाएंगे तो आपकी भी जीत होगी, जिसे हम कहते हैं कि अहम अस्मि योद्धा न कदापि खंडितः। तो इसी के साथ हमारे आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
2: आज की चर्चा,
3: हल्दीराम्स, वो स्वेट इन बन जाने। हल्दीराम्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने शागस मुद्दे को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच जारी बातचीत का जायजा लिया और बताया कि दोनों सरकारें समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही शागस द्वीप समूह को लेकर मालदीव के एक नागरिक संगठन की ओर से किए गए कथित क्षेत्रीय दावे का भी जायजा लिया गया। मॉरिशस सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मालदीव की किसी भी आधिकारिक घोषणा या पहल पर करीबी नजर रखेगी और देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। मॉरिशस में 16वां गोपियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों से भारतीय मूल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाना, आपसी सहयोग बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। यह आयोजन भारतीय मूल के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पोर्टवी में विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों के फिश होल्स में फिर

0: से ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रथा पर पहले रोक लगा दी गई थी क्योंकि फिश होल्स का इस्तेमाल मछलियों को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक समुद्र में रहने वाले इन जहाज़ों को बड़ी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होती है, इसलिए डीजल को अस्थायी तौर पर फिश होल्स में रखा जा सकता है और फिशिंग एरिया में पहुँचने के बाद इसे जहाज़ के ईंधन टंकियों में डाल दिया जाएगा। इसके बाद फिश होल्स को हाई प्रेशर यानी तेज़ दबाव वाले पानी से और खास सफाई सामग्री से अच्छी तरह साफ किया जाएगा, जिसके बाद ही वहां मछलियां रखी जाएंगी। हालांकि इस व्यवस्था में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विदेश में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, लेकिन इस समय इस समूह की अगुवाई करना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफ़ी जटिल है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के करीब दो महीने बाद ही अमेरिका और इसराइल ने ब्रिक्स सदस्य ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद तेहरान ने भी ब्रिक्स के सदस्य यूएई और सऊदी अरब पर जवाबी हमले किए। अब भारत के सामने इन तीनों देशों को एक ही मंच पर साथ लाने की चुनौती है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। कमलन रोड नुवेल फ्रांस में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोसिल जोगी जो शोभा उदिन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे उनके घर कुमलुन रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगेशानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। हमदानी लेन पों फालामी 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड के श्री जसबीर रामदानी जो गासो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे उनके पिता श्री लोल रामदानी के घर रामदानी लेन पोंफाले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांछ्य की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। Avenue d'Épinay, 4 Bournemouth. À 33 Salle, qui 78 years old, qui Shemati Hemauti Kedan, Pedashinam Rampersad, aur jo suna naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi aaj din ke 1 baje, unke bete Shri Raj Kedan ke ghar, Avenue d'Épinay, 4 Bournemouth se uthakar, antim sanskar ke liye Code Gaud ki shmashan bhumi li jayegi. Cremation today at 1 PM. Tagore Road, Kongo, 78 years old, Shrimati Bhanumati Bhagwat, jo Pedashinam Kandal Singh, jo Bhanumati naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi aaj din ke 2 baje, unke ghar, residence Bhagwat, Tagore Road, Kongup se uthakar antim sanskar ke liye Kongup ki shmashan bhumi le jayi jayegi. Cremation today at 2 PM. P number 10 Pierre de Soleil Terracine Suyakmi 65 saal ki 65 years old ke Shri Vijay Ram Tuhal jo Santish naam se zyada jane jate the ki mrityu ho gayi. Unki arthi aaj sham 4 baje unke bete Shri Ashvir Ram Tuhal ke ghar P number 10 Pierre de Soleil Terracine Suyak se uthakar dafnane ke liye Riviere des Galles ki shmashan bhumi le jayi jayegi. Funeral today at 4 PM. Ragulen Bamboumi, 67 saal ki 67 years old ki Shrimati Geeta Kali, Paidashinam Guru Doyal aur jo Mandira naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi waise isi samay din ke 10 baje unke ghar Ragulen Bambu se uthakar antim sanskar ke liye Mejin Bambu ki shmashan bhumi le jayi jayegi. Cremation today at 10 AM. Shok mein dubin sabhi parivaron ke prati hamari gehri samvedna.
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: बेकातुहु गुलहाय अकीदत प्रोग्राम में आपका हम दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं बफजल रब्बे कायनात और ताजदार मदीना राहत कलबसीना साहिब मोतर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सदक़े आप खैर आफियत से होंगे। सामीन, आज के गुलहाय अकीदत प्रोग्राम को हमने कुछ इस तरह तरतीब दिया हुआ है। आगाज़ हम सूरा अलमैदा के पाँचवें रुकू की तफसीर से करेंगे, उसके बाद सदक़े की सच्ची कहानी पर मबनी एक वाक़े हम आपको पेश करेंगे और महफिल समा हम आपको गोश गुजार कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। पेश खिदमत है सूरा अलमैदा के पाँचवें रुकू की तफसीर, आवाज़ है सैयद डॉक्टर आसिफ कादरी दामत बरकातुमालिया।
1: सूरत अलमाईदा की आयत नंबर 35, 35। सूरत अलमाईदा का छठा रुकू और छठे पारे का दसवां रुकू। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। वबतगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो जिसकी बदौलत तुम्हें अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो। हमारे नेक आमाल ये भी अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है। जब बंदा नमाज अदा करता है, लंबे लंबे सज्दे करता है, तहज्जुद पढ़ता है, सहरी के वक्त दुआएं करता है, क़ुरान पाक की तिलावत कसरत से करता है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है, गरीबों की मदद करता है, परेशान हाल की परेशानियां दूर करता है, तो ये वो आमाल हैं जिससे अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। हमारे आमाल हमें मालूम नहीं कि मकबूल हुए कि ना मकबूल, फिर भी हमारे आमाल क़ुर्ब इलाही का ज़रिया हैं। हमें नेक आमाल करने चाहिए ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं वो तो यकीनन मकबूल हैं, तो उनसे मोहब्बत करना, उनकी सोहबत में बैठना, उनके दरबार में हाजिरी देना, ये क़ुर्ब इलाही का बड़ा अहम ज़रिया है। क्योंकि जब अल्लाह के नेक बंदों की निगाहें हमारे दिल पर पड़ती हैं तो उनकी निगाह करम से दिल पाक हो जाता है। अब देखें, जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए यानी सहाबाए किराम, उन्होंने एक लम्हे के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, एक दफा दीदार किया और फिर सारी जिंदगी ईमान पर कायम रहे, वो सहाबी हैं। सारे दुनिया के इबादत गुजार, साहिद और वली, गौस, कुतुब, अब्दाल जमा हो जाएं, फिर भी एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अल्लाह वालों की खिदमत और उनके दरबार में हाजिरी ये क़ुर्ब इलाही का बड़ा अहम जरिया है। विसाल से पहले भी उनके दरबार में हाजिरी होनी चाहिए और विसाल के बाद भी उनके मज़ारात पर हाजिरी, ये इनकी निगाह करम का बहुत बड़ा जरिया बनती है। उनकी खिदमत में जब हाजिर हो तो उनसे अर्ज करें कि आप हम पर निगाह करम फरमाएं, हमारे लिए दुआ करें, हमें चाहिए कि हम उनके वसीले से दुआ करें। ये सब क़ुर्ब इलाही का जरिया है और ये सब करना कुरान मजीद फुकान हमीद की इस आयत पर अमल करना है। इसके कई वाकयात हैं, अगर तफसील जानना चाहें तो किताब मियारे हिदायत का मुताला करें। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। वबतगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। वजाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह से डरना, अल्लाह के क़ुर्ब का वसीला तलाश करना और अल्लाह की राह में जिहाद करना। अल्लाह की राह में जिहाद जान से हो, माल से हो, अपनी औलाद से हो, अपनी सलाहियतों से हो, जिस्म के तमाम आज़ा से।

जबान से हो, हाथों से हो, दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करना, और दिन रात ये फिक्र हो कि मैं दीन इस्लाम की खिदमत करूं और दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करूं। अल्लाह ताला हमें जज्बा जिहाद और शौक शहादत नसीब फरमाए। इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जो काफिर हुए, लव अन्न लहुम मा फिल अर्दी जमीयान, अगर इनके लिए सारी जमीन की सारी दौलत हो जाए, जो कुछ जमीन में है सब का सब इनके खजाने में आ जाए, व मिसलहू माहू, और इतना ही और इनके पास हो, लियफ्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, उसे देकर कयामत के अजाब से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करें। यानी मुराद ये है कि अल्लाह का अजाब इतना सख्त है कि अगर इन काफिरों के पास सारी दुनिया की दौलत बल्कि उससे डबल दौलत भी हो, कयामत के मैदान में जब अजाब देखेंगे तो कोशिश ये होगी कि सारी दौलत ले ली जाए और अजाब से हम बच जाएं। मा तुक़ब्बिला मिन्हुम, तो उनसे न लिया जाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी काफिरों के लिए अजाब लाजिम है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। युरीदूना, वो इरादा करेंगे, अन यखरुजू मिनन नार, कि वो निकल जाएं जहन्नम से। जहन्नम से निकलना वो चाहेंगे, वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, और वो इससे ना निकलेंगे, कभी इधर भागेंगे जहन्नम में, कभी उधर भागेंगे, लेकिन अजाब से फरार ना होगा, कभी जहन्नम से निकल ना सकेंगे। वलहुम अजाबुम मुकीम, और इनके लिए हमेशा का अजाब है, हमेशा जहन्नम में काफिर जलते सड़ते रहेंगे। अल्लाह हमें ईमान की सलामती अता फरमाए। والسارق والسارقة, और जो मर्द या औरत चोर हो, فقطعوا أيديهما, तो उनका हाथ काटो, جزاء بما كسبا نكالا من الله, उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सजा, والله عزيز حكيم, और अल्लाह غالب حكمت والا है। चोर मर्द या चोर औरत हो, या तो चोर ने खुद दो मर्तबा इकरार किया हो, या फिर दो मर्दों ने गवाही दी हो हाकिम इस्लाम के सामने, इनकी गवाही से चोर की चोरी साबित हो, और जो माल चुराया वो 10 दिरहम का हो या उससे जायद हो। 10 दिरहम के माना है तकरीबन 31 ग्राम चांदी, और 31 ग्राम चांदी की कीमत तकरीबन 2000 रुपए पाकिस्तानी आजकल होती है 2016 में। तो आप समझें कि किसी ने फी जमाना 2000 रुपए की या उससे जायद चोरी की हो, 10 दिरहम चांदी की जो मकदार है उतनी या उससे जायद माल चुराया हो, और उसकी चोरी साबित भी हो जाए, या खुद उसने दो मरतबा इकरार किया हो हाकिम के सामने, या दो मर्दों ने गवाही दी हो और उस गवाही से उसकी चोरी साबित हो, तो फिर उसका हाथ काट दिया जाएगा। यहां पर फरमाया फक्तउ अईदियहुमा, तुम इनका हाथ काटो। यहां हाथ से मुराद सीधा हाथ है। पहली मर्तबा की चोरी में सीधा हाथ काटा जाएगा, फिर दोबारा अगर चोरी करेगा तो उल्टा पांव काटा जाएगा, अगर इसके बाद अगर चोरी करेगा तो कैद किया जाएगा यहां तक कि वो तौबा करे। चोर का हाथ काटना तो वाजिब है, लेकिन अगर चोर को गिरफ्तार किया जाए और चुराया हुआ माल उसके पास मौजूद हो तो वो भी असल मालिक को वापस करना वाजिब है, और अगर चोर ने वो माल खुद जाया कर दिया हो तो भी उससे तावान लिया जाएगा। लेकिन अगर चोर से खुद ब खुद ये माल जाया हो गया हो, मसलन उसे चुराया और चुराने के बाद वो दरिया का सफर कर रहा था और गलती में

वो माल दरिया में गिर गया, तो अगर माल खुद ब खुद जाया हो गया होगा तो उस पर जुर्माना वाजिब न होगा, सिर्फ उसकी सजा ये होगी कि उसका हाथ काट दिया जाए। जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, ये पूरे का पूरा बदला है उस जुर्म का जो उन्होंने किया। नकालम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये इबरत है कि लोग डरें और आइंदा चोरी ना करें।

बादी जुल्मिही, जो कोई अपने जुल्म के बाद तौबा करे, वह असलहा और सवर जाए, अपनी इसलाह कर ले, फइन्नल्लाहा यतूबु अलैह, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उस पर रुजू फरमाएगा, अपनी रहमत फरमाएगा और उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। मुराद ये है कि आखरत के अजाब से तौबा करने वाला बच जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत। युआज़िबु मन यशाउ, जिसे चाहता है अजाब देता है, वयग़फिरु लिमन यशाउ, और जिसे चाहता है बख्श देता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चाहत पर क़ादिर है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल, ला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फिल कुफ्र, आपको गमगीन न करें वो लोग जो कुफर पर दौड़ते हैं, मिनल्लज़ीन क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, उन लोगों में से जो अपने मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, और इनके दिल मुसलमान नहीं। अल्लाह ताला ने आयत करीमा में ये बयान फरमाया कि ए हबीब, मैं आपका मददगार हूँ, नासिर मोईन हूँ। मुनाफिकीन जो कुफर में जल्दी करते हैं, यानी मुनाफिकीन का जो कुफर का इजहार करना है और काफरों के साथ इनकी दोस्ती है, आप इससे रंजीदा न हो। वमिनल्लज़ीन हादु, और कुछ यहूदी, सम्माउन लिल्कज़िबी, खूब झूठ सुनते हैं, अपने सरदारों से झूठ सुनते हैं और इनकी झूठी बातों पर वो यकीन रखते हैं। सम्माउन लिक़ौमिन आखरीन, और लोगों की खूब सुनते हैं, लम यातूक, वो लोग जो आपके पास अभी हाजिर न हुए। इन्हें मुराद ये है कि ये लोग अपने सरदारों की झूठी बातें खूब सुनते हैं और जो खैबर के यहूदी हैं इनकी बातें ये खूब मानते हैं। युहर्रिफून अल-कलीमा मिन बादि मवादिईहि, अल्लाह की बातों को उनके ठिकानों के बाद बदल देते हैं। तौरात, ये इसमें रद्द बदल करते हैं, खास तौर पर यहूदी तौरात में रद्द बदल करते हैं। यकूलूना, वो कहते हैं, इन उतीतुम हादा फखुजूहु, ये हुक्म तुम्हें मिले तो मानो, व इल्लम तुतौहु फहज़रू, और ये ना मिले तो बचो। इसका शरह नुज़ूल ये है कि खैबर के यहूदियों में से जो मालदार थे, बड़े खानदान से उनका ताल्लुक था, उसमें से एक शादीशुदा मर्द ने एक शादीशुदा औरत से जिना किया। तौरात में इसकी सजा यही थी कि पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए, संसार किया जाए। ये बात इन्हें पसंद न थी, इसलिए इन्होंने चाहा कि इस मुकदमे का फैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराएं। चुनाचे इन दोनों मुजरिमों को एक जमात के साथ मदीने तैयबा भेजा गया और इन्होंने लोगों से कह दिया कि तुम हुजूर के पास जाओ, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोड़ों की सजा दें तो मान लेना, और संसार करने का हुक्म दें, आप फरमाएं कि पत्थर मार मार के हलाक कर दो तो मत मानना। वो लोग बनी कुरैजा और बनी नुदैर के यहूदियों के पास आए। उन्होंने ख्याल किया कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम वतन हैं, ये लोग मदीने में रहते हैं और इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह भी है, मुआहदा भी है, तो इनकी सिफारिश से काम हमारा बन जाएगा। चुनांचे यहूदियों के सरदार में से काब बिन अशरफ, काब बिन असद, सईद बिन अमर, मालिक बिन सैफ, किनाना बिन अबिल हकीक वगैरह

उन्हें लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मसला पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरा फैसला मानोगे? उन्होंने इकरार किया, कहने लगे बिल्कुल मानेंगे। आयत रजम नाजिल हुई और संसार करने का हुक्म दिया गया। आपने फरमाया, इन दोनों पर पत्थर बरसाए जाएं इतने कि ये हलाक हो जाएं। यहूदियों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे, ये तो आपने बड़ा सख्त हुक्म बयान किया, ये बात तो तौरात में तो नहीं लिखी। आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम में एक नौजवान है जो बहुत गोरा है और वो एक आंख उसकी खराब है, एक आंख सही है। फिदक का रहने वाला है जिसका नाम इब्ने सोरिया है, क्या तुम इसको जानते हो? कहने लगे, हाँ बिल्कुल जानते हैं। आपने फरमाया, वो कैसा आदमी है? यहूदी कहने लगे, आज पूरी दुनिया में यहूद में इसके पाए का आलिम नहीं, तौरात का यकता माहिर है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बुलाओ। चुनांचे बुलाया गया। जब वो हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इब्ने सोरिया है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, क्या तू यहूदियों में सबसे बड़ा आलिम है? उसने कहा कि लोग तो ऐसा ही कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया, बताओ इस मामले में इसकी बात मानोगे? सबने कहा बिल्कुल मानेंगे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सोरिया से फरमाया, मैं तुझे उस अल्लाह की कसम देता हूं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई और बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, तुम्हारे लिए दरिया में रास्ते बना दिए, तुम्हें नजात दी, फिरौनियों को गर्क किया, तुम्हारे लिए बादल को साया बान बनाया, मनो सलवा नाजिल फरमाया, अपनी किताब नाजिल फरमाई जिसमें हलाल और हराम का बयान है। बताओ क्या तुम्हारी किताब में शादीशुदा मर्द और औरत के लिए जो जिना करें उनके लिए संसार करने का हुक्म है? इब्ने सोरिया ने अर्ज किया, बेशक है, उसी की कसम जिसका आपने मुझसे जिक्र किया। अजाब नाजिल होने का डर न होता तो मैं इकरार न करता और झूठ बोल देता, मगर ये फरमाइए कि आपकी किताब में इसका क्या हुक्म है? प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चार आदिल और मोतबर गवाहों की गवाही से जिना बसराहत साबित हो जाए और सबूत में कोई शक बाकी न रहे तो संसार करना वाजिब है। इब्ने सोरिया ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम बिल्कुल यही हुक्म तौरात में मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सोरिया से फरमाया, जब तौरात में यह हुक्म मौजूद था तो इस हुक्म में तुम लोगों ने तब्दीली किस तरह की? उसने कहा कि हमारा कायदा यह था कि जब किसी बड़े खानदान का कोई शख्स पकड़ा जाता, मालदार शख्स होता, तो हम उसे छोड़ देते, और गरीब आदमी अगर पकड़ा जाता तो हम उसे सजा देते। इस तर्ज अमल से मालदारों में, शाही खानदान वालों में, बड़े खानदान के लोगों में जिना बहुत कसरत से आम हो गया। यहां तक एक मरतबा बादशाह के चचाजाद भाई ने जिना किया तो हमने इसको संसार न किया। फिर एक दूसरे शख्स ने अपनी कौम की औरत से जिना किया तो बादशाह ने ये चाहा कि उसे संसार किया जाए, तो उस शख्स की पूरी कौम खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि जब तक बादशाह के भाई को संसार न किया जाए उस वक्त तक इसको संसार न किया जाए। तब हमने जमा होकर ये फैसला किया कि संसार की सजा को खत्म किया जाए, और हमने फिर इसकी सजा ये मुकर्रर की कि 40 कोड़े मारे जाएंगे जो भी ये काम करे, और मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर गश्त कराए जाएगा। ये सुनकर यहूदी

0: बहुत बिगड़े, बड़े नाराज हुए और इब्ने सोरिया से कहने लगे, तूने इन्हें बड़ी जल्दी खबर दे दी और हमने जितनी तेरी तारीफ की थी तू इसका मुस्तहिक नहीं है। इब्ने सोरिया ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तौरात की कसम दिलाई और मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर मैंने झूठ कहा तो अजाब आ जाएगा। अगर मुझे अजाब के नाजिल होने का डर न होता तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ना देता और मैं झूठ बोल देता। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन दोनों जिना करने वाले मर्द और औरत को संसार किया गया। तो यहाँ ये फरमाया गया कि इन लोगों ने जब अपनी कौम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, यकूलूना वो कहते हैं, इन ऊती तुम हादा फखुदू हो, ये हुक्म तुम्हें मिले तो मानो, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोड़ों की सजा दें तो मान लेना, वह इल्लम तुतऊ फहज़रू, और ये ना मिले तो बचो, यानी अगर ये संसार का हुक्म दें तो फिर तुम उसे ना मानना। وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہیں سکے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ, یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और इन्हें आखिरत में बड़ा अजाब है। समाउन लिल कज़िबि अक्कालून लिस्सुहत, लोग कहते हैं कि नरमी से बात होनी चाहिए।
1: अल्लामा डॉक्टर आसिफ कादरी दामद बरकातुहुम अलैहा की ज़बानी सूरा अल-माईदा के पांचवें रुकू की तफसीर समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं, पेश खिदमत है गुशे नूरी में ये कलाम।

पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिजक दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वह आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को ये सब पसंद न था। एक दिन वह बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी, मुझे डर है कि क्यामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी, अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये हाल न होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास एक रुपया भी होता तो मैं वह भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू

कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बीबी हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाके कुछ कमा कर लाओ वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा न माना, जानता था कि वह शो आराम की आदी है, खुद उसे बचपन में फ्रोफा का देखना पड़ा था, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसे देखा, दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात यह कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वह अब्दुल्ला को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं, आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताना वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी कूक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो, तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये राज अपने दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी तो वह फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था, न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वह सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा, वहां उसने दो खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी न बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हां ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। यह सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा, वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद कुन लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया, फिर सोचा अब इस कुन को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुन टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई, अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्ला ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीबी आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला। अब्दुल्ला को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है। बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती, किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्ला को बीवी की नाशुकरी पर दुख हुआ, दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वो खाना खा सके और जरूरत का सामान ले सके। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दयांतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकरर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्ला अपनी बीवी के साथ बीवी के मायके जा रहा था। वह दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे जिसे दो

खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्लाह ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी न कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जो खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई भूख ने तुम्हारी अक्ल मार दी है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीबी के पेट में बच्चा है, अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें, उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्लाह ये बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वह बीवी के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो बीवी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छिपा रहा है। एक महीना पहले खजाना मिला था मगर नहीं बताया कहां से, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिले यकीन लगती है मगर बाद में सच निकलती है। अब से मैं उसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्लाह के पास आया और कहा, मेरे पास लिमू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है, तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्लाह ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लिमू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीबी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। इसी दौरान दो चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। दिल में कहा, अभी ये लिमू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं क्या होता है। बीवी हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीबी बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नजला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लिमू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनका दाम आसमान को छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। ताजरों को खबर मिली कि अब्दुल्लाह के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्लाह ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा, शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डर गई कि कहीं लिमू और माल्टों का मुनाफा भी फुकरा पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्लाह ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन ले? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिज्क और अता दिया। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कोई राज छिपा हुआ है, और अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो, और यही तुम्हारी दौलत का राज है। यह सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना हजार गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वह अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वह जमीन जिस पर उसने गरीबों का मेलज पनाहगाह बनाया था वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा,

बरह मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्ला गरीबों और यतीमों के मेलज में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और मूसीकी व गाने के आलात से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहा जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा, फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्ला वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मेलज के पास बनाया था। उसने एक महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब्दुल्ला ने देखा कि अब वो न शिकायत करती है न किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वह दूसरे मजदूरों के साथ मेलज के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वह मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान

खालिक ने कुछ इस तरह उतारे हैं मोहम्मद, खालिक ने कुछ इस तरह उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर जहरा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद, सारे हैं मोहम्मद।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस
2: बाला।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: आपकी पसंद

जहाँ श्रोता हो दो बजकर यानी कि सवा दो बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन नहीं है रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद प्रोग्राम। जय नमस्कार सादर प्रणाम सलाम आप सभी को गुड आफ्टरनून भी और ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वैसे हम बदलते रहते हैं ना रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन तो ये हो ही जाता है। बस ठंडी ठंडी हवाओं के बीच सैटरडे आफ्टरनून को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस और वक्त है आपके ही डेडिकेशंस आपके कुछ रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स और साथ में आपके प्यार भरे जो बातें हमारे साथ होने वाली हैं ऑन 4028085 या फिर मैसेजेस के लिए 5251700 5। और मैं हूँ दीविना और आज के इस ठंडी से सैटरडे को हम बनाएंगे गर्मा गर्म यादों एवरग्रीन मेलोडीज साथ में ब्यूटीफुल सॉन्ग से बिल्कुल स्पेशल। बाहर मौसम ठंडा है लेकिन हमारी महफिल फुल ऑन वार्म। तो चाय का कप हो हाथ में खिड़की के बाहर ठंडी हवा हो और दिल में हो म्यूजिक की एक प्यारी सी धुन बस फिर क्या कहना। आज आपके पसंद में चलेगा सिर्फ आपके दिल का हुक्म और बस आप फटाफट हमसे कंटेक्ट कीजिएगा। तब तक सूर्य निगम साहब की आवाज़ में आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। हाँ जी आप सबों के लिए ये 11 सा गाना।

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है। अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: की पसंद।
1: जो आपके प्यार में आपके इंतजार में हम गाना खोज रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी पसंद प्रोग्राम है और आप साथ दे रहे हैं। वैसे आज है सैटरडे का दिन 12 सितंबर 2026 ऑलरेडी 12 सितंबर 2026 और अभी हो चुका है 2:24 और आप सुन रहे हैं देविना के संग आपकी पसंद प्रोग्राम। कभी कभी एक गाना सिर्फ गाना नहीं होता, वो एक याद होती है, एक चेहरा होता है, एक जगह होती है या फिर जिंदगी का कोई खूबसूरत या दर्द भरा पल। और जब वो मेलोडी रेडियो पर बजती है ना, तो लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। जैसे अभी से लेकर 4 तक ऐसे कुछ गाने तराने आप सबों के लिए जो आपको रुकने के लिए मजबूर कर देगा कि हाँ चलो ये काम करेंगे अभी, मगर ये गाना

लेते हैं, ये डेडिकेशन भेज देते हैं। तो चलिए इस कोल्ड से सैटरडे आफ्टरनून को एक ब्यूटीफुल मेलोडी का नाम करते हैं और शामिल करते हैं यहाँ पर ये गाना, दिल जिगर नजर क्या है, है ना। तो ये है विश्वानी डुमन जी, आपकी पसंद का गाना है ना, तो वाकवा की विश्वानी जी और ये गाना फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर। ऑफकोर्स ये जाएगा हमेशा की तरह बहन इंदिरा के लिए, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और साथ में गीता गजाधर और सभी लोग हमारे जो लिसनर्स हैं कहीं बाहर घूम रहे हैं इस सर्दी के मौसम में, ठंडे ठंडे हवा है, साथ में कुछ कहीं कहीं पर कुछ बारिश भी हो रही है, तो बस ये गाना आप सुनते जाइए।

जा दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। हमें जान नहीं देने वाले, मगर आपके लिए गाना जरूर ढूंढ कर ला रहे हैं। कभी कुछ कुछ ऐसे गाने हैं जो ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी सर्वर पर पता नहीं कैसे उन्होंने लिख दिया होगा ये गाना, और कुछ गाने नहीं मिलते हैं, कभी कोई भी कुछ गाने हम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मगर अभी के लिए जो गानों की मांग आ रही है ना, वैसे ये गाने तो बस कमाल के हैं। और म्यूज़िक का भी ना एक अजीब सी मैजिक होती है, जहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं ना, वहाँ सुर दिल से बात करते हैं। और आज के स्थानीय मौसम में तो हर रोमांटिक मेलोडी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो मॉरिशस के हर कोने में, घर घर, कार में, वर्क प्लेस पर या अपने फेवरेट कॉर्नर में आपके साथ हैं आपके पसंद प्रोग्राम MBC रेडियो मॉरिशस पर देवना के संग। अब प्रेम कहानी है, कभी कभी सोनी महिवाल हो जाती हैं, कभी कभी रोमियो जूलियत या फिर लैला मजनू। और फिल्म थी लैला मजनू, उसमें नज़र आए थे ऋषि कपूर साहब और इस पूनम ढिल्लन शायद, और इसमें एक बहुत ही लाजवाब सा गाना रफ़ी साहब साथ में लता जी, और ये गाना हाँ जी नोवेल्टी कुवैत की साइदा जी। मगर ये जो गाना वो सोनी महिवाल वाला मूवी नहीं है, मगर ये है लैला मजनू, अब अगर मुझसे खुदाई भी खफा हो जाए। तो इरफान के लिए जोहान, फरीदा और यासीन के लिए, और साथ में साइदा जी सभी को, सभी जो लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं भेज रही हैं। और साथ में हम यही कामना करते हैं सभी से, सभी के लिए जो गणेश

टूटी हैं वो गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, विघ्नहर्ता सभी विघ्न दूर करे। और ऐसे में ये गाना वो आपके लिए साहिदा जी, बस इसको एंजॉय कीजिए।

जहाँ आफिस जी सैंपिये से हैं, खास तौर पर शोहर की याद में ये गाना आफिस जी एंजॉय इट। और आपके साथ शोहर है या नहीं, फिर भी आपके यादों में है, बस उनको याद करके ये गाना एंजॉय कीजिए। आशा जी रफी साहब की आवाज़ों में।

जहाँ एक परदेसी मेरा दिल ले गया, कितना जैसे कहते हैं ना खूबसूरत सा गाना हमेशा कानों में गूंजता रहता है और बार बार सुनकर ना मन खुश हो जाता है। कहने के लिए ओल्ड हैं मगर गोल्ड हैं। और कुछ गाने जो हैं दिल के बहुत करीब होते हैं और पहली बार सुनने के पर शायद बस अच्छे लगते हैं, लेकिन सालों बाद वही गाना सुनो तो अरे ये तो हमारी कहानी है। तो इस थंडे आफ्टरनून में एक ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर हो जाए लता जी की आवाज़ में, और ये भी तो ओल्ड है मगर गोल्ड है, और दिल को कह दीजिए आज बस म्यूज़िक सुनते हैं। और म्यूज़िक क्या है, पुराना वाला गाना जो सदाबहार गाना है ना, रेयर जेम्स ऑफ लता जी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, नैनों से नए हुए बस। ये गाना विद्यानंद जी की मांग पर मेबर्ग से हमेशा जब आते हैं धड़ाम से आते हैं ब्यूटीफुल सा गाना लेकर। और फिल्म है औरत, सुहंती जी के लिए अमित शीतल, आशु, किशिका, विशाल, राजीव, स्वीति, हरवेश, विष्णु का चाधर उनके खास दोस्त, और साथ में बिद्दू कालीचंद उसकी बहन।

झांके के की आवाज में ये बहुत ही खास खास गाना है, क्या मुझे प्यार है। ये यंगस्टर्स इस गाने को बहुत पसंद करते हैं और आई एम श्योर आप भी पसंद कर रहे हैं। और ये गाना जाएगा खासतौर पर आहाना के लिए। क्यूपिप से है खुशद और रूहिल है साथ में, राजीव है, माइक है और किशन है, सब जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं अपना दोस्त, ये गाना आपके लिए। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम देवीना के साथ।

0: तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

जहाँ ये था पूनम मूवी का ओल्ड फिल्म पूनम, और ये गाना था फॉर मिस्टर जय सी गुलाम और नुवेल फॉस और पूरा जो सी गुलाम परिवार है उनके नाम। आशा करते हैं कि जय जी आपको ये गाना आपने सुना और आप खुश हुए। और बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, और ये गाना ले जाएगा हमें 3 बजे के संक्षिप्त समाचार की ओर, और आप हमें सुनते रहिए, 1 घंटा और बाकी है आपकी पसंद प्रोग्राम के लिए। और हमारा जो लिस्ट है भरता जा रहा है आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके साथ के लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरे दोस्त।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। जिन्होंने ये दुर्घटना की है उनके जिम्मेदारियों के बारे में उन लोगों को पता चलेगा। ये इंतज़ार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है, उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य बात नहीं है। इस देरी के बारे में, उसके कारणों के बारे में पता लगाना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। रुडविक्स में 26 साल की महिला की मृत्यु चाकू लगने से हुई। 26 साल की इस बस कंडक्टर ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। रोशबोंजू रहने वाली इस महिला पर 27 साल के उसके साथी ने चाकू से वार किया। मोलुबे रहने वाले इस मैकेनिशियन को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है। दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस में एक मंच पर जुटे हुए हैं। पूर्वजों ने समुद्र पार करके दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई थी। आज उनके संतानों के पास उस पहचान को एक वैश्विक ताकत में बदलने का मौका है, अवसर है। 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, पहचान और भविष्य पर मंथन हो रहा है। विदेश समाचारों में, सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उस पाइपलाइन को बंद करवा दिया गया है। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है, जिसके बाद इसे बंद कर लिया गया। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

जी बिल्कुल, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है और सभी लोग भक्त जो हैं वो तैयारियां में लग चुके हैं और आपकी पूजा सफल हो, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। बस हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारी ओर से, हमारी मन की यही तमन्ना है, यही कामना है कि गणपति पापा सभी के घर आए, सभी की पूजा सफल करें और सभी के कष्ट दूर करें। और कहते हैं ना, आप सैटरडे आफ्टरनून की म्यूजिकल कंपनी में हूँ और सच कहें तो म्यूज़िक के बिना, गीत के बिना वीकेंड थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। और ऊपर से गणपति पापा आ रहे हैं ज़ोर शोर से, सो बस वीक भर की भाग दौड़ के बाद सैटरडे का कि ये कुछ पल रिलैक्स करने के लिए हैं, मुस्कुराने के लिए हैं और अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ खो जाने का है। और सभी चिंताएँ जो है ना गणपति पापा के नाम कर दीजिए, उनके उनको आप दे दीजिए, वे खाली हाथ आपको नहीं रहने देंगे। और ऐसे में लीला जी हैं बुआशेरी से सभी भक्तों को शुभकामनाएं भेज रही हैं गणेश चतुर्थी का, थैंक यू, धन्यवाद। और लोचन परिवार के लिए, सभी बप्पा के भक्त के लिए, उन लीला जी के बच्चों की ओर से। और लीला जी बुआशेरी की हैं और वे कह रही हैं कि वे अपने घर गणपति लेकर आ रही हैं, उनके यहाँ पूजा है, तो बस जो भी वहाँ से गुजर रहे हैं तो बस उनके यहाँ पूजा करने अवश्य जाएगा और आप सभी की पूजा सफल हो साथ में। हाँ जी, सुदेवी और वाकवा, गुड आफ्टरनून आपको भी दीदी जी, एंजॉइंग द शो, थैंक यू। और त्रियोली के दीदी ललिता, कुशल फैमिली के लिए दीदी सुनीता, शोभा देवी, ना बिंदु, माला मालेंगा के, अनुषा, किरण, केशनी, कृषय, प्रणीता और सभी रामरतन, रघुबर, कुवारू, जालू और हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। ये गाना सभी भक्तों के लिए, सभी रेडियो मॉरिशस के लिसनर्स के लिए, सभी मॉरिशस के लिए और सभी जो मॉरिशस के बाहर हैं, आप सभी के लिए। गणपति बप्पा मोरिया।

मोरियारे अनीता जी ऑफ फिकॉन फ्लाक का आप की रिक्वेस्ट पर ये गाना हम चला रहे हैं गणपति बाप्पा के लिए और हमारे सभी पूरी टीम के लिए और सभी को कह रहे हैं हैप्पी सैटरडे और अनीता जी आपकी पूजा सफल हो. थैंक यू.

जहाँ हो चुका है 3:24 और आजकल पूजा पाठ हो रही है, मगर हम कैसे भूलें कि हर रोज किसी न किसी का जन्मदिन तो आता ही है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू अगर आप लोग आज 12 सितंबर अपना बर्थडे मना रहे हैं। और ऐसे में तो चलेंगे खोंकूप की ओर। श्यामा रघुनंदन जी और जन्मदिन मना रहे हैं उनकी जो भतीजी है बेल्जियम में है, सिमरन सिंह। तो सिमरन जी आपको हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल बेस्ट विशेस फ्रॉम द होल रघुनंदन फैमिली और सबका हम जो है आपको भी भेज रहे हैं हमारी पूरी रेडियो टीम।

की ओर से और पापा जसवंत सिंह की ओर से हैं, मामा हैं विजयंती रघुनंदन और उनके भाईजी हैं रविंदर सिंह, मामू हैं जयप्रकाश, राम प्रकाश, रामराज, मामी हैं नम्रता और उनकी जो कजिन्स हैं केशव और युधिष, साथ में उनकी जो मौसी जी हैं श्यामा जी और पूरे परिवार की ओर से और हमारे पूरी टीम की ओर से भी, और हम भेज रहे हैं बिल्कुल बहुत सारी बधाइयाँ और जितने लोग बधाइयाँ के पात्र हैं आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। फिल्म है दिलिक मंदिर, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

अदनान सामी की आवाज में प्यार भरी बोली है, साथ में दुआ भी है उन लोगों को जो जन्मदिन मना रहे हैं फिर से एक बार। सो है जैबून और पोफाले, वे है फूफू, दादी फूफू, और वे विश कर रही है जहरी को, जहरीन को, हाँ जैबून जहरीन को विश कर रही है हैप्पी बर्थडे। और ऑस्ट्रेलिया में है पापा है रेजा, और साथ में है दादा आज़ाद, चाचा चाची फौजा की है, और सभी परिवार की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू जहरीन। और ये गाना आपके लिए, और साथ में ये गाना जाएगा सुनीता जी और खोंगुप साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच। अमृता जी हैं उनकी बहन खोंगुप से ही, हैप्पी बर्थडे टू यू अमृता जी, प्यार भारी शुभकामनाएं हैं आपको। भाई अजय, भाभी हैं गीता, बेटा यानी कि भतीजा हैं आनिश, और सभी परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे, आपकी झोली भरी हो, और गणपति पापा भी आपकी आपके जीवन में प्यार ही प्यार भरे, खुशियाँ खुशियाँ, और साथ में सेहत भी।

जहाँ उमर की पुलवारी में हम नाम जोड़ते हैं इंद्रानी अवलेस का लिए। इंद्रानी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू इंद्रानी जी, बेस्ट विशेज आपके पूरे परिवार की ओर से। पति हैं विश्वदेव, बेटी है यशना, संजना, अक्षय और साथ में एक और बर्थडे है, टू इन वन, वाव। और इंद्रानी जी के जुड़वे भाई हैं, जुड़वा हैं एक्चुअली, सो उनके जो भाई साहब हैं ईश्वर दत्त शिवधारी, आपको भी हैप्पी बर्थडे ईश्वर दत्त जी। सो इंद्रानी जी और ईश्वर दत्त जी, आप दोनों को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज हैं, लॉट्स ऑफ लव। और साथ में हमारी पूरी टीम की ओर से भी ये गाना आपके लिए, इंद्रानी जी और ईश्वर दत्त जी। From Hall, Sivdhari or Mohit, Mohal Parivar.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल आप भी किसी से कम नहीं, इसे तो हम चले जाते हैं आपका साथ देने के लिए। और आज है शनिवार, स्पेशल शनिवार है, और वैसे गणेश चतुर्थी की तैयारियां में लगे हुए हैं सभी लोग, और साथ में कुछ लोग घर का काम काज कर रहे हैं भागदौड़ी के बाद, और कुछ लोग तो हैं आज रेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, और आई एम श्योर कुछ लोग जो हैं वे बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और ऐसे में ये गाना उस सपनों के सौदागर, सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता है मेरी जान, बस सपना देखना है तो पूरा करने की कोशिश भी करना। और यहाँ पर तो बातचीत हो रही है सपने के सौदागर की, तो ये है महन जी आपके लिए। और हाँ जी, महन कहते हैं, हमें महन कहते हैं और हमें देवीना कहते हैं, ये गाना है आपके लिए। और आपके प्यारे से मैसेज के लिए, वाट अ लवली वॉइस यू हैव, थैंक यू, आपके बोलने के अंदाज़ और के मधु, हाँ जी बिल्कुल, और फैंस हो गए हैं और हम भी आप फैंस हो गए हैं आपके, ऐसे ही हमारे साथ देते रहें ओ सपनों के सौदागर। सो बस ऐसे ही लगे रहिए हमारे साथ महन भाई।

जो सपना महंगा हो सकता है मगर सपना देखना इट्स वेरी चीप, बहुत कहेंगे थे बहुत सस्ता है मगर इनको पूरा करना सबसे बड़ी बात है। तो सपना देखिएगा और साथ में उनकी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना। जी हाँ, तो आपके पसंद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सभी भक्तों की ओर से, सभी लिसनर्स की ओर से ये बप्पा के लिए ये गाना जो है फ्रॉम द मूवी डॉन, और इस गीत की मांग बहुतों ने की है और साथ में दिलीप जी हैं कुंगुमा से शुभकामनाएं भेज रहे हैं सभी लिसनर्स के लिए, सभी भक्तों के लिए। मोर यारे संगीता के लिए मनीषा हैं, योगेश और कविता साथ में जो ट्रियोले की जो है सुदेवी जी, आपने भी ये गीत मांगा था तो आपके लिए चला दिया और फिर से आपका नाम जोड़ते हैं। सभी जो भक्त हैं मोरिया रे बाबा मोरिया रे, आपके लिए आपके पसंद प्रोग्राम में।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जहाँ मोर यारे बापा तो आएंगे जरूर, और अभी के लिए बस एक और गाना है। रेहाना जी हम नहीं बोले आपको, न तो दाम की है, अपनी सहेली जो है माला फॉर्डर, सहेली से बरकर हैं, और वे ये गाना भरोसा मूवी का गाना आपके नाम करती हैं, खास खास आपके लिए माला जी।

और अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे विदा लेंगे, और उन सभी लिसनर्स के लिए जो अपने फेवरेट सॉन्ग्स के थ्रू किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं और आपके फ़ोन नहीं लगे, आपका गाना नहीं चला, तो बस किसी के लिए ये सॉन्ग है आई मिस यू, किसी के लिए है आई लव यू, और किसी के लिए है दोज वर ब्यूटीफुल डेज। बस ये अगला गाना जो है अंतिम गाना है आपके पसंद प्रोग्राम के लिए, तो बस साथ देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और टाइम रियली फ्लाइज व्हेन देयर इज़ गुड म्यूजिक ऑफ कोर्स, और हम साथ निभाएंगे कल 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा प्यारा साथ होगा और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान। और अब लेकर आ रही है अगला प्रोग्राम, प्रस्तुति होगी अंजू जी की, और बस उनका साथ दीजिएगा। और साथ में एक खास मेहमान भी है, बहुत से मेहमान भी हैं। सो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारियां में लगे हुए हैं, बस आप सभी को बॉन कुराज, और जाते जाते आपको दे रहे हैं ढेर सारा प्यार और शुभ बरा नमस्कार आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्भरन की प्रस्तुति में।
2: समय हुआ है साहित्य दर्पण का। श्रोताओं, आप सबका अभिनंदन करते हैं और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए साथ दे रहे हैं लुदविक जी, और हमारे साथ आप सोच भी नहीं सकते, आज एक मेहमान नहीं, तीन तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वजह क्या है? वजह है हिंदी भाषा। हिंदी के लिए कार्यक्रम करते हैं, साहित्य दर्पण नाम है, तो समाज में क्या हो रहा है सबके हित के लिए ये जानना भी आवश्यक हो जाता है आप सब श्रोताओं को, जो कि हमें लगातार सुनते हैं शनिवार के दिन इस समय पर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप लोगों के साथ मिलकर तीन तीन अतिथियों का, जिसमें हैं डॉक्टर शशि दुक्कन, जिनका परिचय देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मुझे, और साथ ही दो और टीचर्स जुड़े हैं। मैं उनको टीचर्स कह रही हूँ, पर साथ ही साथ वे छात्र हैं बीए थर्ड ईयर के, तृतीय वर्ष के, महात्मा गांधी संस्थान में पढ़ाई कर रही हैं, शविनी जी और वैष्णवी जी।
3: सभी तो, को मेरा नमस्कार। अंजुज बीच में
2: जी, स्वागत है आप तीनों का आज के कार्यक्रम में।
3: नमस्ते, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया, और हमें ये भी खुशी है अंजू जी कि हिंदी दिवस 14 को है
2: जी,
3: और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इस समय।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सी गतिविधियां देश भर में आयोजित की जा रही हैं, और इसी अवसर पर आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हमें और भी प्रसन्नता हो रही है। मेरे साथ मेरी दो कुलीग भी कहूंगी, दो छात्राएं भी कहूंगी, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दी है
2: जी,
3: कि वो थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स भी हैं, और मैंने उनको अवसर प्राप्त किया कि वो थोड़ा अनुभव प्राप्त कर सके टीचिंग में, और इसीलिए
2: मैंने उनको टीचर्स कहा।
3: हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा उनको अनुभव प्राप्त हो, छोटे बच्चों के साथ उनका राफ्ता कायम हो, ताकि वो हिंदी पढ़ा सकें।
2: बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और आप मेरे छोटे से निमंत्रण पर आप उनको लेकर आई, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी। श्रोताओं, 1949 में संविधान सभा भारत में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ये हम सब जानते हैं। सितंबर का महीना आता है तो जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं ये बताया जाता है। हिंदी के इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो 1953 में हुई थी। पहली बार के लिए आधिकारिक तौर पर हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली ये भाषा कहलाती है। इसीलिए इसका चुनाव हुआ था, क्योंकि हिंदी सबको बहुत प्रिय है और हिंदी प्रेम की भाषा है। अलग अलग राज्यों, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़े लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसकी भूमिका यही है कि देश से बाहर रहने वाले भारतीयों के बीच में भी हिंदी अपनापन और जुड़ाव का भाव पैदा करती है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने और इसके व्यापक प्रयोग को बढ़ा देने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, और साथ ही हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, और पुरस्कार समारोह, पुस्तक विमोचन जैसे कार्य होते हैं। और महात्मा, हमारे यहाँ विश्व हिंदी सचिवालय में कार्यक्रम हुए, इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में हुए, और साथ ही हिंदी सप्ताह मनाया गया महात्मा गांधी संस्थान में, जहाँ पर हम अभी जानकारी पाएंगे कि कैसे इस सप्ताह भर क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो ऐसी भाषा के लिए हम समर्पित हैं जिससे हमारा अस्तित्व है, और जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं। MBC में 2400 घंटे सातों दिन हम गीत सुनते हैं, कला

0: कलाकारों को सुनते हैं, अध्यापकों को सुनते हैं और हिंदी से प्रेम करने वालों को सुनते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो हिंदी से ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि वे पूरा दिन सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम छात्रों का अब, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपके लिए हिंदी क्या है मैं जानना चाहूँगी।
1: नमस्ते सभी सुनने वालों को और धन्यवाद बहन जी हमें यहाँ अवसर प्रदान किया। और हिंदी केवल हमारे लिए एक भाषा नहीं है, परंतु हमारे अब चूँकि हम तृतीय वर्ष के छात्राएँ हैं, पर अब हिंदी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जहाँ हम उसे रोज़ कहीं ना कहीं पर प्रयोग करते हैं।
0: बहुत बढ़िया बात कही आपने।
2: सभी को नमस्ते, मैं हूँ श्रविना पुरन, MGI से तृतीय वर्ष की छात्रा। मेरे लिए मैं अगर कहूँगी तो हिंदी एक पहचान बन चुकी है, क्योंकि मैं लगातार 3 सालों से हिंदी पढ़ती आ रही हूँ और MGI में जो वातावरण है वह अधिक हिंदी भाषा को अति महत्व देती है। और हिंदी को पढ़ते पढ़ते अब मैं कहूँगी कि HSC या फिर SC से नहीं, अब मैं हिंदी को पसंद कर रही हूँ। अब मैं हिंदी पढ़ना पसंद कर रही हूँ और पढ़ाना भी पसंद कर रही हूँ।
0: तो बहुत अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा जी। अब हम आते हैं जो अनुभवी, क्योंकि आज मेरा ये विषय लाना, इतने अतिथियों को बुलाना इसलिए था कि हम हिंदी भाषा के जो शुरू कर रहे हैं, हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ जो अनुभवी लोग हैं उनको भी इसमें कैसे रुचि हुई और उनका जो अनुभव है वो आज का नहीं है, वर्षों का है। यहाँ पर उन्होंने लंबे समय तक MBC में कार्य किया है तो, और वे बैठकाओं में भी पढ़ाती हैं, तो इसलिए मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो हिंदी यात्रा इतने वर्षों की रही उसमें आपका क्या विशेष अनुभव है।
3: अंजू जी, सबसे पहले मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद आपका जो आपने हमें आमंत्रित किया। मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगी, हमारी मैं जैसे कि आप जानते हैं हम भारत से आए हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी थी।
0: बिल्कुल।
3: और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मैंने हिंदी का विशेष अध्ययन जो है मॉरिशस में किया। कभी कभी लोग सुनकर मुझे अचानक अचंभे में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि कि मातृभाषा होने के नाते हिंदी मुझे आती थी, लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट रही अपने HSC तक, और जिसमें हम हिंदी सब्जेक्ट 9th में ही छोड़ देते हैं, और जहाँ 5 सब्जेक्ट साइंस के होते हैं तो हिंदी हमने करी नहीं थी। मॉरिशस में आकर जब हमारी जब विवाह हुआ तो मेरे पास सब्जेक्ट के रूप में हिंदी थी नहीं, लेकिन बोलचाल में हमारी भाषा जो थी हिंदी रही। क्यों? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा रही। तो उसके बाद फिर मुझे MBC ज्वाइन करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा अच्छी रही, वो भी सिर्फ मात्र इसलिए कि वो मातृभाषा थी। और उस तहत जब फिर हमने अपना सफ़र MBC में 82 से जब शुरू किया, तो 82 से मैंने बैठकाओं में शुरू किया
0: जी।
3: और 84 में मेरा जो है 1984 में मेरा जो सफ़र है MBC के साथ शुरू हुआ एज ए प्रेजेंटर उद्घोषिका के रूप में।
0: एक दो वर्ष नहीं, 1984 से लेके
3: 40 साल
0: 2023 तक
3: 2025 तक पिछले साल मैं रिटायर हूँ दिसंबर में।
0: रिटायर हो के भी आप टायर्ड नहीं हैं, आज भी हिंदी के लिए ही यहाँ पर हैं।
3: बिल्कुल सही
0: तो
3: कह रही
0: है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर अनुभव जब मैं करती हूँ तो बैठकाएं जो 1982 से आपने शुरू की, आज की तिथि 2026 में अपना अनुभव क्या क्या?
3: मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी नींव हिंदी की जो पढ़ी है वो बैठकाओं से ही पढ़ी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया प्रथम जब पहले यहाँ 82 में, तो मुझे खुद इतनी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने उत्तमा तक किया हिंदी यहाँ पर, और उसके लिए मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद मैं बैठकाओं में मुझे लिया गया क्योंकि मेरी भाषा अच्छी थी। तो वो जो थी वो मेरी नींव थी, और उसे जब पढ़ी उसके बाद फिर मेरे को काम भी तो पहले ही 84 में मिल गया हिंदी भाषा के नाते ही। देखेंगे मेरे अपनी किस्मत थी, मेरी भाषा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
0: तो भाषा ने आपका अस्तित्व बनाया
3: पहचान बनाई, अस्तित्व बनाया।
0: अब मैं आती हूँ कि आपके अनुभव में कहाँ आपने अंतर पाया 1982 और 2026 तक आपकी यात्रा आ

0: चुकी है, कहाँ आप अंतर पाती हैं? हिंदी बढ़ रही है, हिंदी पीछे जा रही है, हिंदी ऊपर उठ रही है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा
0: जी,
1: क्योंकि जिन वर्षों में मैं आई थी तो मुझे लगते थे कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं, छात्र जो हैं, हिंदी भाषा को लिए जो थे पढ़ते थे, रुचि लेते थे, बैठकाओं में बच्चे थे और काफ़ी समय, लंबे समय तक वो रुचि रही। लेकिन आज कुछ थोड़ा सा अभाव लगता है, जबकि इतनी सुविधाएं हैं, इतनी अध्यापक जो हैं सरकार की तरफ से हर सुविधा प्राप्त हो रही है, प्रयास हो रहे हैं, गतिविधियां हैं, और आज तो
0: एक स्तर मिला है,
1: बैठकों को स्तर मिला और एक नया आयाम बना है बच्चों के लिए भी नौकरी के रूप से। जब ये कहते हैं ना कोई भी भाषा हो तो उससे कुछ रोटी रोजी होनी चाहिए, वो भी आयाम खुले हैं
0: बिल्कुल,
1: लेकिन फिर भी आज बच्चों में दिलचस्पी थोड़ी कम नजर आती है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा जिसको कि हमें पकड़ना चाहिए।
0: एक विशेष कारण जो मैं अनुभव करती हूँ, जेब से जब चीज जुड़ जाती है तो वो बढ़ जाती है,
1: ये सही बात है।
0: तो जब जेब से कटा रहेगा एक भाषा या विषय तो उसमें कमी पाते हैं
1: बिल्कुल,
0: जब उसमें उसको जेब से जोड़ देंगे, अपनी पॉकेट में पैसे आएंगे, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था जहां भी जुड़ेगी वहां पर आपको लोग मिलेंगे
1: बिल्कुल,
0: जहां अर्थव्यवस्था से आप हट जाते हैं वहां आपको।
1: मैं समझती हूँ आपका बहुत अच्छा विचार है, हमें चाहिए जो भी हम गतिविधियां आयोजित करते हैं बजाय कि सिर्फ एक पुस्तक देकर बच्चों को इनकरेज करें, बहुत सी चीजें हैं
0: जो आपने किया। दो छात्राओं को आपने बैठकाओं में पहुंचाया टीचर के रूप में, अध्यापिका के रूप में, उनका अनुभव बढ़ेगा तो वे अपने भाषा, अपने विषय हिंदी के लिए ज़्यादा समर्पित हो पाएंगी, ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगी।
1: मैंने हमेशा MGI के बच्चों को अपनी बैठकाओं में मौका दिया है। इससे पहले भी जो बच्चे आए हैं
0: जी,
1: जो आए हैं 5-6 बच्चे आए, मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ, मीनाक्षी है, दुर्गेश है,
0: श्रावणी है
1: हाँ, जो हमारे साथ काम कर रही हैं अभी एक्चुअली, और ये सब बच्चे MGI से पढ़े हैं और जब उनको काम मिल जाता है तो मैं समझ सकती हूँ कि वो सातों दिन काम नहीं कर सकते, वो छोड़ देते हैं
0: बिल्कुल।
1: इसी अवसर से लाभ उठाते हुए मैंने इन दोनों को और मेरे को जो हमारे इंस्पेक्टर हैं झा जी, उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया कि मैं, हमारे पास दो टीचर हैं, दो बच्चियां हैं छात्र, उनको आप, तीन हैं, एक लड़का और है महावीर करके, वो भी इनके साथ है, वो तीनों हमारे जो हैं MGI के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको मैंने यहाँ पर अपनी बैठका में काम, मतलब उनको कहा कि आप अपना अनुभव लें और बच्चों के साथ जुड़ें, आगे अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और जिसे मैं आज महसूस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अंजू जी, उसी बैठका ने मुझे जो है आज बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया है।
0: बहुत सुंदर, आपने अपने अनुभव बांटा। चलिए, हम कार्यक्रम में जो हमारे श्रोता हैं उनमें से कोई जुड़ा है, चलिए हम बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो,
3: हाँ बेटी,
0: नमस्ते नानी, कैसा हुआ?
3: अच्छा है बेटी, तो अच्छा, गला नहीं अच्छा बात,
0: गला तो अच्छा बात, अब ना बतिया था,
3: अभी तो बीमार है, ऐसने जीवन जाए,
0: कोई बात नहीं,
3: बहुत
0: ईश्वर
3: उम्र हो गल बेटी,
0: ईश्वर की कृपा है कि आप कार्यक्रम से जुड़ रही हैं।
3: हम, मेरे को याद हो गया कि जो साइट में हम बैठका जाती थी
0: जी,
3: तो हमारे गुरु जी ने सिखाया, 11 साल की थी हमें,
0: बहुत सुंदर,
3: गुरु जी ने बोला पढ़ाया, सब कुछ लिखा या,
0: तो देखिए 11 साल में आपने जो अनुभव किया वो हमारे साथ बांट रही हैं।
3: मेरे माँ को बोला जे बाल शिक्षा खरीदना बेटी के लिए
0: जी,
3: तो मेरे माँ तुरंत खरीद दिया, तो बाल शिक्षा पढ़ते तो हमने के सबले पहले उनके प्रार्थना सिखाई
0: बिल्कुल,
3: प्रार्थना तो
0: वो हमारे संस्कारों में है ना, कि कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करें तो प्रार्थना से होता है।
3: अभी तक ले याद बा बेटी
0: जी,
3: वो प्रार्थना अभी तक ले हमरा याद बा, मैं इतना बूढ़ी हो गई नहीं, बाकी हमके याद बा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी बने धर्मचारी धर्मचारी, ध्यान यहाँ पर भुला गई नहीं है
0: कोई बात नहीं आप

0: देखिए,
1: लग गए
0: 11 वर्ष की
1: कहीं
0: उम्र में
1: भुला
0: आप
1: गए थे।
0: बैठ कर गई,
1: वीर व्रताधारी बने बेटी, देखो
0: बिल्कुल,
2: और जो आपने सीखा वो आज तक
0: वो
2: आपको याद
0: आज
2: है।
0: तक आपको याद है
1: हमके
0: और
1: लाइन
0: आप
1: मिलल, हमके अवसर दिया बनले को
0: जी,
1: तब कुछ थोड़ा सन प्रार्थना में
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और देखिए, आप साहित्य दर्पण कार्यक्रम की एक बहुमूल्य श्रोता हैं, तो
2: मैं ये आवाज सुनती रहती हूँ अंजू, अक्सर ये भाग लेती हैं।
0: हमेशा उनका प्रयास रहता है कि जो भी विषय है उसके ऊपर ही अपना विचार दे पाए।
2: बहुत खूब,
0: बहुत खूब है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। चलिए, अब हम जो दो छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जो अभी अभी अध्यापक पद पर आ गई हैं, पदोन्नति के लिए तो बधाई दे दी मैंने, पर आप हिंदी से कैसे जुड़ी? आप दोनों के लिए ये प्रश्न है कि हिंदी पढ़ने की रुचि थी या कि आपको परिवार से की ओर से प्रोत्साहित किया गया, या कि आपको सिनेमा ने प्रोत्साहित किया, किस प्रकार आप हिंदी से जुड़ पाई?
3: जी बहन जी, तो मेरे लिए हिंदी इस कोर्स को पूरा करने के लिए मेरे परिवार ने मुझे प्रोत्साहित किया है
0: जी।
3: क्योंकि मैं हमेशा कविता में रुचि रखती थी
0: जी।
3: और ख़ास करके अभिमन्यु अनंत की जो कविताएं हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। और जैसे कि बच्चों को भी पढ़ाना हमारे हिंदी को और शुद्ध करती हैं,
0: वो मांझ देती है आपकी भाषा को।

0: जैसे कि बच्चों को भी पढ़ाना हमारे हिंदी को और शुद्ध करती हैं।
1: वो मांझ देती है आपने आपकी भाषा को।
2: तो अनेक प्रतियोगिताओं में भाग ली मैंने, जैसे कविता, संस्कृत आदि के जैसे
1: माध्यम से
2: आज
1: की तिथि में हिंदी पखवाड़ा हुआ है, एक सप्ताह के लिए हिंदी सप्ताह मनाया गया महात्मा गांधी संस्थान में, उसका कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के लिए।
3: और कौन कौन सी गतिविधियां वहां आयोजित की,
1: पूरे सप्ताह में क्या किया आपने?
2: जी, हिंदी सप्ताह मूल रूप से नुक्कड़ नाटक से शुरू होती है। नुक्कड़ नाटक जो है वो एक स्ट्रीप प्ले है।
1: मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे एक बहुत जाने माने श्रोता जुड़े हैं। चलिए, आपकी रुचि को हम जानना चाहेंगे। हेलो
4: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्कार जी, स्वागत है धनी जी।
4: धन्यवाद, मैं हूँ धनेश्वर चोवा झवेर से।
1: जी धनेश्वर जी,
3: नमस्ते। धनेश्वर जी
4: नमस्ते, और सभी मेहमानों को भी नमस्ते और धन्यवाद, और उन सभी को बारंबार प्रणाम।
1: जी,
4: तो मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ।
1: अवश्य, स्वागत है।
4: मैं सत्संग में जाता था और रामायण का पाठ सुन सुनकर मैं भजन गाना, चौपाई गाना शुरू किया
1: जी,
4: थोड़ा बहुत। तो सत्संग के माध्यम से थोड़ा हिंदी सीखा हूँ
1: जी,
4: और हिंदी भाषा के माध्यम से थोड़ा जीने की कला सीख लिया।
1: बहुत सुंदर।
4: और जैसे कि हमारा अभी 75 साल हुआ है
1: जी,
4: दिसंबर में 76 हो जाएगा
1: जी,
4: तो हिंदी भाषा के माध्यम से जैसे कि हाँ, और मैंने डॉक्टर ईश्वरदत्त नल्लाल के पास गया था
1: जी,
4: वहाँ थोड़ा सीखा, और 22 साल से मैं टीवी में हमें जब मित्र शर्मा आया था
1: जी,
4: उस समय मैंने आकर वहाँ पर भजन गाता हूँ हमेशा
1: जी।
4: ये तो आप गुरु के बारे में, जैसे आप विदुषी और गुरु माँ है, और गुरु लोगों के लिए दो लाइन सुनाता हूँ।
1: स्वागत है।
4: तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, मिटे अंधेरा मोह का जब गुरु करुणा हो, ईश्वर मिलता भाग्य से गुरु मिलता सौभाग्य, गुरु बिन सारा ज्ञान है जैसे पूरा वैभाग्य। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत आभार आपको कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और हिंदी भाषा पढ़ने का आपने जो

0: तो हिंदी सप्ताह नुक्कड़ नाटक से शुरू होती है
1: जी।
0: नुक्कड़ नाटक जो है वो साधारण नाटक से अलग है क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक स्ट्रीट प्ले होती है
1: जी।
0: और नुक्कड़ नाटक जो उसमें अलग है वो है पहनावे और हमें कम प्रॉप को
2: इस्तेमाल
0: करना पड़ता है
1: क्योंकि ना मंच होता है ना
0: श्रृंगार एकाएक होता है
1: बिल्कुल।
0: नुक्कड़ नाटक जो है रास्ते पर होती है एक टोली बनाकर और आप आते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं। नुक्कड़ नाटक में जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी आवाज, आपको चिल्लाना पड़ता है और ताली बजाना है और फिर आती है नारा। नारा जो है स्लोगन जो हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि हम एक संदेश भेज रहे हैं। तो नुक्कड़ नाटक का लक्ष्य जो है वो है एक संदेश भेजना,
1: पहुंचाना लोगों तक।
0: फिर
1: क्योंकि आपने कहा वो स्ट्रीट
0: जी एक स्ट्रीट है, आपको तो लोगों को आकर्षित करनी पड़ती है तो आपको क्लैप करनी है और जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, आवाज चली जाती है
1: जी।
0: और नुक्कड़ नाटक के बाद आई कविता प्रतियोगिता जहाँ पर आप एक स्वरचित कविता लिखकर आते हैं और मंच
2: आपका होता है
0: MGI में कहते हैं। फिर आशुवाक आपको विषय एक दिन पहले या दो दिन पहले से मिल जाती है, आगे जो होती थी आपको तुरंत विषय मिलती थी और आपको प्रिपेयर करना है
1: बोलना,
0: लेकिन अब जो है एक दिन या दो दिन पहले से मिल गई। और कल हमने एक दिलचस्प समारोह किया जो है अंत्याक्षरी जो हम ही यवान यतू यफ्री BA ने मिलकर करा और जो इसमें मेरी कक्षा से ही मेरे दोस्त विजयित हुए। तो यही
1: बहुत आपका कैसा अनुभव रहा इसमें?
3: सबसे पहले इस नुक्कड़ नाटक में प्रथम प्राइज मिलने के लिए मैं अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूँगी।
1: चलिए हमारी ओर से भी बधाई कि नुक्कड़ नाटक में आपने भाग लिया, विजयी हुए और आप तो प्रथम आई उसमें बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में, तो बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपने उसमें अच्छे से तैयारी की होगी
2: और इनका ही नाटक अंजू जी मैं कहूँ की प्रथम
1: नाटक का नाम
3: नाटक का शीर्षक था लोग क्या कहेंगे।
1: लोग क्या कहेंगे, स्लोगन भी यही होगा फिर।
3: दूसरों की सोच का कब तक सहो के भार, अपना सपना करो अपना सपना साकार।
1: बहुत सुंदर चुनाव किया आपने स्लोगन का। एक फोन कॉल लेते हैं फिर चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो
4: शुभ नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद शशि जी।
2: नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, हमेशा सुनते थे अब भी सुनती रहती हूँ, आप प्रोग्राम में भाग लेते रहते हैं और अच्छा लगा आज आपसे रूबरू हुए इस प्रोग्राम के माध्यम से।
4: जी मैं देख ज्यादा नहीं कहूँगा
2: नवीन जी
4: और वो जो मेहमान और एक भी मेहमान नमस्कार।
1: दो नई नई अध्यापिकाएं हमारे साथ जुड़ी हैं,
4: आशीर्वाद है उन लोगों पर
1: जी।
4: गहरा आशीर्वाद है, सिर्फ आशीर्वाद नहीं गहरा आशीर्वाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनकी ओर से।
4: अच्छा एक दो बातें बोलूं
1: जी।
4: देखिए मैं मॉरिशस में रहता हूँ
1: जी
4: और आपने एक प्रश्न पूछा हिंदी क्या है
1: जी,
4: और आपने कहा हिंदी प्रेम की भाषा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी।
4: हालांकि ये हिंदुस्तान की भाषा है और चूंकि हम भारतीय वंशज हैं हमें इस भाषा को पढ़नी चाहिए और सीखनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
4: अतः हम अपनी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक जुड़ाव और व्यावहारिक जरूरतों से जुड़े रहेंगे। मैं जानते हो बहन जी, मैं हालांकि दफ्तर में काम करता था, मैं अपनी हिंदी से जुड़ी रही।
1: बिल्कुल,
4: और मैं अभी तक मैं हिंदी के शुभ चिंतक हूँ, पढ़ता भी हूँ, रोज पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ।
1: बहुत अच्छा है ये तो अनुभव आपका।
4: और हिंदी की पढ़ाई में
1: जी
4: जितना आनंद मिलता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। शशि जी ने अच्छा संकेत किया है कि सच है, मैं मानता हूँ कि बहुत कम रुचि कई लोगों में है हिंदी पढ़ने को, इसलिए मैंने विनम्र भाव से कहूँगा कि अयोध्या में मैंने हिंदी और भोजपुरी की गंगा

0: बहाने
1: का प्रयास किया
0: की है हाँ, जी प्रार्थना की है पाठकों से
1: जी।
0: देखिए बहन जी, ये जो हिंदी पढ़ता है वो सचमुच एक अद्भुत आदमी, अनोखा आदमी है।
1: बिल्कुल,
0: ये हिंदी आदमी को कहाँ नहीं पहुंचा सकता है।
2: बिल्कुल,
0: और यह हिंदी एक सभ्यता भी है।
1: बिल्कुल, पूरा भारतीय दर्शन, पूरा उसमें शास्त्रों का ज्ञान, हर चीज से जोड़ सकते हैं आप हिंदी, हिंदी के यात्रा करते हुए।
2: और हिंदी भाषा मात्र भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है।
1: बिल्कुल,
2: जो अगर जान गया ना हिंदी, तो अंदर से जो भाव निकलते हैं,
1: जो संवेदना है, वो तक दूसरे तक
2: पहुंचती है। बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: और एक बात कहूं बहन जी,
1: जी
0: मेरे दिल में हिंदी पहला स्थान रखती है।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद,
0: फिर मिलेंगे कभी।
2: धन्यवाद नवीन,
1: चलिए
2: बहुत अच्छा लगा,
1: आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। दो बिटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका अनुभव सुनना चाहेंगे कि आपने भाग लिया नुक्कड़ नाटक में, आप विजयी भी हुई, साथ ही वहाँ पर कविता, स्वरचित कविता लिखी गई, और उसके बाद आपने कहा अंत्याक्षरी का आयोजन हुआ और आशुवाक का भी आयोजन हुआ, और क्या हुआ
3: जी? तो हम बात कर रहे थे नुक्कड़ नाटक के बारे में
1: जी।
3: नुक्कड़ नाटक जो है, जैसे कि शोभना ने कहा कि वो एक स्ट्रीट प्ले है।
1: बिल्कुल।
3: तो हमें जैसे कि श्रोतागण तक संदेश पहुंचाने के लिए जितना भी समय मिलता है, उतने ही टाइम लिमिट में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ कहना भी पड़ता है, जिससे कि उन पर एक प्रभाव पड़े हमारे नाटक के द्वारा। और स्वरचित कविता के बारे में, कविता क्या है? कविता हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो जो हम लिखित रूप में डालते हैं
1: जी।
3: और नई नई कविताएं जो हैं वो बहुत सुंदर हैं और सुनने के लिए भी हम प्रसन्न होते हैं। और आशुवाक प्रतियोगिता के लिए हमें दो दिन पहले से ही शीर्षक
1: विषय बता दिया गया था,
3: और हमने हमें बहुत समय मिला उसके बारे में प्रिपेयर करने के लिए। और जब हम मंच पर जाते हैं तो एक थोड़ी सी घबराहट होती है जो कि बहुत स्वाभाविक है
1: जी।
3: और फिर अंत्याक्षरी के लिए हमारे लिए बहुत फन था, क्योंकि इसमें विषय नहीं दिया जाता है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, बस ऐसे ही
1: स्पॉन्टेनियसली
3: जैसे ही एक स्वर आता है हमें बस गाना पड़ता है
1: जी। बहुत अच्छा लगा जानकर। और एक जो चीज मैं अनुभव कर पाई आपकी बातों से कि एक दूसरे को जोड़ा गया। प्रथम वर्ष बीए की छात्रा कभी भी तृतीय वर्ष से आकर नहीं मिलती अगर ये आयोजन ना होता हिंदी सप्ताह का,
2: तो
1: प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ आपका मेल मिलाप जो हुआ, तो यही सबसे बड़ी पकड़ है हिंदी की कि वो एक दूसरे को मिलाती है, जोड़ती है, सेतु बनाती है। शशि जी, आप क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं?
2: मैं
1: आपको मौका,
2: मैं हिंदी के लिए तो आप जितना भी मुझे कहलवाना चाहेंगी मेरे लिए
1: बोलते
2: ही रहूंगी, आपका प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा शायद, मेरा हिंदी से बोलना जो है वो कम नहीं होगा।
1: हम दिन भर उसी में सोचते हैं, उसी में लिखते हैं, उसी में पढ़ते हैं, तो वो हमारी जड़ों में जुड़ी हुई है।
2: अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अब ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने नए छात्र छात्रों को हिंदी के साथ जोड़ सकें।
1: बिल्कुल,
2: ये गतिविधियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात, जो आपने अर्थ की बात कही, वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
1: जी।
2: अब जैसे ये दो बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं, दो छात्र जो मेरे पास आ रहे हैं, किसी ना किस तरह हमारी सभा भी इनको एक अलाउंस दे रही है, तो इनको जो है वो भी रुचि रखता है कि मैं जाऊंगी, मुझे ये मेरी एक पॉकेट मनी, मुझे
1: पॉकेट मनी होती है, तो
2: बच्चों को हर चीज से इनकरेज करना चाहिए।
1: बिल्कुल, माता पिता के सामने हो सकता है कि मातृ दिवस के लिए एक उपहार खरीदना है उसने, तो वो अपने पॉकेट मनी से,
2: वो उनके लिए बहुत गर्व की बात है,
1: खुशी कितनी होती है।
2: और ये एनकरेजमेंट बच्चों को आगे बढ़ाएगी।
1: बिल्कुल,
2: चाहे वो मिनिमम हो लेकिन होना चाहिए।
1: मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक कॉल लेते हैं फिर चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। हेलो हेलो
4: हेलो अंजू जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, स्वागत

0: है आपका? हमारे साथ तीन तीन अतिथि जुड़े हुए हैं, तो अपना नाम बताइए तभी वो जुड़ पाएंगे।
1: आपने मुझे पहचाना नहीं।
0: बिल्कुल वीना जी हैं, वीना जी हैं, मैं पहचान गई। मैं आपके मुख से कहलाना चाहती थी कि हमारे साथ जो दो अध्यापिका जुड़ी हैं वो भी जान पाए कि वीना जी जुड़ी हैं।
1: बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार है, और खास मेरी शशि बहन को
2: नमस्ते।
1: बहुत
2: वीना जी,
1: बहुत मई तो
2: ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने आज तक हमें जोड़ रखा है।
0: बिल्कुल, आप त्यागुश रहती हैं ये भी हमें पता है, पर मैं आपके मुख से कहलवाना चाहती थी।
1: अचंभित कर दिया, मैंने सोचा अरे अंजुबन कैसे मुझे भूल गई।
0: नहीं, मैं तो आपका गांव भी नहीं भूली, जहां आप रहती हैं, जिस शहर में आप रहती हैं वो भी मुझे याद है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद जी। मैं शशि बहन के लिए भी खास, क्योंकि मैंने सोचा चलो रेडियो के माध्यम से सही ही मैं उनसे थोड़ी मुलाकात तो कर लूं।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, अच्छा लगा
1: के बाद में।
2: सही बात है, सही बात है।
1: तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका, और आप तो हमेशा भले ही अब कार्य से निवृत्त हो गई हैं, लेकिन आप मेरे हृदय में हमेशा रहती हैं।
2: बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और मुझे भी अपने श्रोता बहुत प्रिय हैं, आपकी तरह कितने श्रोता हैं जो मैं जिनको आज तक भी याद करती हूँ और दिलों में रखती हूँ।
1: जी हाँ जरूर। तो हिंदी के विषय में जो
0: यही हिंदी की महिमा है ना,
1: यहाँ तीन बेटियाँ जो आई है उन लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, साधुवाद कहती हूँ कि वो इसी तरह से उनकी हिंदी सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है
0: जी।
1: तो जैसे कि सभी जानते हैं कि मॉरिशस में हम सभी भारतवंशी ही है, क्योंकि हमारा जो मूल है वो तो भारतवर्ष ही है, और हम वहाँ से आए हुए हैं और हमारे पूर्वज हिंदी को लेकर आए थे, जिसके माध्यम से आज हम जो कुछ है तो उन्हीं की बदौलत, अपने पूर्वजों की बदौलत है
0: जी।
1: तो हिंदी क्या है, मेरी दृष्टि में हिंदी मेरे लिए बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है उसका व्याख्या करने के लिए
0: जी,
1: क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि हिंदी मेरी नस नस में है।
0: बिल्कुल।
1: और हिंदी बचपन से ही, मेरे माता पिता निरक्षर थे फिर भी उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई। ऐसा होता है ना, रामचरितमानस में एक चौपाई आता है कि राम जी जब गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए तो उनको अल्पकाल ही में सब विद्या आ गई थी।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं भी हिंदी को लेकर यही सोचती हूँ कि अल्पकाल ही में थोड़े से ही पढ़ के मुझे बहुत सारी हिंदी आ गई।
2: देखा, बिल्कुल। और वाकई में वीना जी बहुत विदुषी
1: है, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है, ऋषियों वाणी भारत वंशी है, तो भारत की भाषा है, तो हमें मुझे बहुत प्रिय है, और मैं जो कुछ भी हूँ इस भाषा ने रोजी रोटी के अलावा मुझे जो मान सम्मान दिया है बहन जी, इसका तो मैं जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगी।
2: और देखे जो मान सम्मान मिलता है उसका मोल नहीं होता,
1: नहीं है,
2: और उससे लोगों की पहचान बनती
1: है। जानती है और पहचानती भी है, और उन्हें लोगों की परख भी है। और एक बात होती है, जो हिंदी भाषी होते हैं ना उनका व्यक्तित्व ही दूसरा होता है, वो कुछ अलग ही होते हैं वो लोग, उनके बोलने का ढंग, उनमें जो उनका जो प्रस्तुति होती है, अब वो जिस तरह आपसे मिलते हैं जिस तरह से, तो वो मन को सहज ही रूप से जैसे कि छीन लेता है।
0: नहीं ये तो, आपने सोचा ऐसा, हिंदी भाषा हमें विनम्र बनाती है।
1: हाँ हाँ हाँ, एकदम सही, क्योंकि अन्य भाषा की निंदा नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल, सभी भाषाएं सम्मान करेंगी है,
1: लेकिन मैं अपनी भाषा से मुझे बेहद बेहद बेहद प्रेम है,
0: हमें गर्व है कि हम हिंदी से जुड़े हुए हैं।
1: जुड़े हुए हैं, और अभी भी हम हमारे घरों में हम उसको पढ़ते रहते हैं, ऐसी नहीं है, रोज तो एक दो पृष्ठ, शशि जी को पता है कि मैं तो स्वाध्याय करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ मुझे तो नींद ही नहीं आएगी अगर मैं कुछ पढ़ूंगी नहीं।
0: बिल्कुल,
1: मैं उनसे अंतिम समय तक जुड़ी रहती हूँ हिंदी।
2: और ये आपका प्रेम बताता है कि हिंदी के प्रति कितना आपको प्रेम।
1: जी जी, तो हम तो समर्पित भाव से, मतलब हमने अपने को समर्पण कर दिया है इस भाषा के लिए।
2: बहुत खूब।
1: जब तक हम इस उम्र में, अभी तो हमारी उम्र भी बढ़ रही है, तो क्या है कि बचपन से ही जब से हमने सीखा इसको, क्योंकि इसमें क्या नहीं है इस भाषा,
0: चलिए
1: हम अन्यों को मौका देंगे। बिना जी पहचानते हैं अपनी जड़ों को, पहचानते हैं बड़े छोटों को, मतलब इसमें जो भाव है, जैसे आप लोगों ने भी पहले कहा जो भावना है वो एक अलग ही है।
2: बिल्कुल।

0: हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बहुत अच्छा लगा वीना जी आपको सुनकर आज,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और वीना जी ने जब इतनी बात कही तो मैं कहूंगी जितने भी वीना जी के वर्ग के लोग हैं ना, उन्होंने अल्प उम्र से ही जो है हिंदी को अपने साथ संजो कर रखा है और आज वो इस मुकाम पर है कि हिंदी को इतना लगाव उनको है हिंदी के साथ।
2: बिल्कुल।
1: इसी बात से याद कर मैं आज अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं अपनी एक कविता जो है स्वरचित वो मैं सुनाना चाहूंगी अपने श्रोताओं को, क्योंकि भाषा जो है ना वो एक ऐसा विषय है जो आपके अंतरतम से निकलता है।
2: बिल्कुल।
1: और उस अगर आपको उससे लगाव है तो उसके लिए आपका जो है स्वाभिमान, आपको भाषा से प्रेम, लगाव, वो सब अपने आप अवतरित होता है,
2: स्वतः आता है
1: आप सबके लिए। मेरी ये कविता छोटी सी, स्वभाषा से बनता है स्वाभिमान हमारा, मान रहा आज विश्व हिंदी की शक्ति, इसीलिए तो हिंदी माथे की बिंदी, आओ सब मिलकर लें हिंदी की गंती। हिंदी भाषा हमारी पहचान है, हिंदी हमारा मान है, स्वभाषा की उन्नति के लिए सब कुछ न्यौछावर है। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, हिंदी हमारी धर्म संस्कृति की अनमोल धरोहर है, इसीलिए स्वभाषा से बनता है स्वाभिमान हमारा। आज कलम से लिख दो अस्तित्व हमारा हिंदी है, हमने सपने संजोए जिसमें, जिससे जुड़ी हमारी हर आशा है, जिससे हमें पहचान मिली है वो हमारी मधुर भाषा है। हिंदी है भाषा हमारी, सीखो इससे दिल से प्यार करना, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी, शब्दों की ताकत इसमें, लेखक का अभिमान है इसमें, अखंडता में एकता बनाए रखने की क्षमता है इसमें, भाषा का जो सम्मान करते पाते वो मान जीवन में, हिंदी दिवस के अवसर पर आओ पढ़ें लिखें हिंदी, हिंदी है हमारी भाषा, आओ इसे अपनाएं हृदय से, आओ इसे अपनाएं हृदय से, निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम करेगा वो आज देश से, वही वीर देश का न्यारा है, हिंदी जिसका नारा है। हिंदी दिवस पर हम सब ठान लें लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, ये बात बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: अपनी श्वासों से सपनों को सजाना है, हिंदी भाषा की और आगे, हिंदी भाषा को और आगे ले जाना है, और आगे ले जाना है, और आगे ले जाना है, इसीलिए स्वभाषा में स्वाभिमान हमारा।
2: बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार शशि जी आपका। एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो,
1: शायद हमारे श्रोता छोड़कर चले गए, फिर से उनके लिए माइक खुला हुआ है, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ।
2: जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो।
3: हाँ बहन जी, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, कैसी हैं?
3: मैं अच्छी हूँ बहन, उतनी तो अच्छी नहीं, फिर भी आप लोगों को सुनकर अच्छी हो गई हूँ बहन जी।
2: चलिए
3: मैं दो लाइन सुनाती हूँ शशि जी के बारे में, तब बाद में बात करूंगी आपसे।
2: जी
1: बहुत अच्छा लगा आप मेरे बारे में कुछ सुना रही हैं।
3: हाँ, तो सुना सुना लागे बीरज का धाम, गोकुल को छोड़े चले हैं घनश्याम। ये शशि जी के लिए है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा कि आप मुझे याद करती हैं।
2: आपका नाम बसंती है ना? बसंती जी बात कर रही हैं
3: ना, मैं श्यामा रघुनंदन।
2: अच्छा,
1: श्यामा जी, यस
2: श्यामा जी, आपका बहुत हृदय से स्वागत है। और आपने शशि जी के लिए जो बोला वो बहुत ही हृदय को छू देने वाली बात थी।
1: धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी।
3: हाँ तो आगे चलती हूँ बहन जी।
2: जी
3: मैं कहूँगी, धन्य है उन महान आत्माओं को जिन्होंने हमारी हिंदी भाषा को आज तक जीवित रखा है और बचाया है।
2: जी
3: हाँ, हिंदी भाषा हमारी आन बान और शान है, यही तो हमारी पहचान है।
2: बिल्कुल।
3: इसके बिना हमारा क्या अस्तित्व है बहन जी?
2: जी
3: यह हमारी धरोहर है, यह भाषा मधुर सरस और सरल है।
2: जी
3: जो कानों के लिए कर्ण प्रिय और मीठी है, हमारी भाषा

0: हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि कोई ऐसी भाषा नहीं जिसके बोलने और समझने में कठिनाई होती है। भोजपुरी से लेकर काव्य, संगीत, नाटक, कहानी, सब सब रचनाओं में हमारी हिंदी भाषा है बहन जी।
1: जी,
0: जो समझ भी नहीं सकते हैं वे आसानी से समझ जाते हैं। हमारी रीति रिवाज, पूजा पाठ, संस्कार इन्हीं भाषाओं में तो है बहन जी।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो मेरा यही कहना है बहन जी, बहुत धन्यवाद।
2: बहुत अच्छा लगा श्यामा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्यामा जी, हम अपनी भाषा पे गर्व कर सकें, हमारा कार्य इस प्रकार रहना चाहिए। चलिए हम एक अन्य श्रोता को लेते हैं और बातचीत कर रहे हैं, किन से जानना चाहेंगे। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: जी, मैं वसंती
1: जी। हाँ, मैंने आपका नाम पहले ही ले लिया, आप कार्यक्रम में जुड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आइए, स्वागत है आपका।
3: जी, एक दो लाइन का भी सुनाऊंगी आपको।
1: जी
3: जी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, मनुष्य मननशील प्राणी है, यह आदिम काल से ही शक्ति की खोज में रत है। वह शक्ति संचय करके विश्व के प्रांगण में अपनी विजय पताका फहराना चाहता है। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी ने जन बल पाना चाहा, तो किसी ने धन बल और किसी ने विद्या बल। वर्तमान संसार दो बड़ी देवियों की साधना में लगा है, एक है सरस्वती और दूसरी है लक्ष्मी। भगवान वेद ने कहा, महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्व विराजति। अर्थात हे लोग, जैसे सरस्वती आकाश में स्थित शब्द रूप समुद्र को उत्तम प्रकार के जल चतलाती हैं और सब बुद्धियों को नाना प्रकार से प्रकाशित करती हैं, वैसे ही तुम विद्याओं के प्रवृत्त हो। मुझे हिंदी से बहुत प्रेम है, मैं हिंदी में बातचीत करती हूँ, हिंदी हमारे माथे के बिंदी है, और मैं यहाँ समाप्त करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, हमारे साथ जो दो अतिथि जुड़े हुए हैं विशेष रूप से, मैं उनके अनुभव जानना चाहूँगी कि आपका अनुभव कैसा है हिंदी के लिए
2: पढ़ाने के क्षेत्र में, जब आप जुड़े हो बच्चों के साथ,
1: अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं, बच्चों के साथ जुड़ रही हैं, क्या अनुभव करती हैं?
4: तो पहले मैं लुनेला गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्रत्येक रविवार को, और शुरू होता है 9 बजे और समाप्त होता है 12 बजे। तो पढ़ाने के क्षेत्र में सबसे पहले बच्चों को केवल पुस्तक से तक सीमित नहीं किया जा सकता है, उन्हें कहीं कहीं बार कविताएं या कहानी भी सुनाना पड़ता है, ताकि
1: जी रुचि ले पाएं।
4: जी, क्योंकि अगर केवल हम पुस्तक तक सीमित रहेंगे तो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और उन्हें कोई रुचि नहीं मिलेगी। तो कभी कभी हम अनेक गेम्स की भी आयोजन करते हैं, हिंदी के आधार पर ही,
1: माध्यम हिंदी ही है। जी
4: जी, ताकि उन्हें हिंदी भाषा और रोचक
1: लगे।
4: ऐसे ही, और
5: मैं भी लुनेलॉन्ग वनमा स्कूल में पढ़ाती हूँ, और इसीलिए इसके लिए बहन जी दुकान के लिए आभार हूँ। और मैं ग्रेड 1, 2 और 3 के बच्चों को पढ़ाती हूँ। वे बच्चे जो है वे मासूम है, वे छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने में दिलचस्प होती है, लेकिन दिलचस्पी होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी होती है, क्योंकि वे अनेक प्राणी होती है, अनेक वातावरण में पले हुए हैं, तो वे उनके कंठस्थ की शक्ति एक समान नहीं होती है। तो उनको मैं एक अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं उनको गा के पढ़ाती हूँ, जैसे मछली जल की रानी गा गा के सुनाती हो, और या फिर आ ई, और उनको हर रविवार एक

0: एक पौराणिक कथाओं से मैं
1: जोड़ती
0: परिष्कृत
1: हैं।
0: करती हूँ। जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है कुछ
1: जी
0: ही दिनों में, तो कल मैंने सोचा कि मैं उनको गणेश जी के जन्म के बारे में कुछ
1: बताएंगी
0: करूँगी, हाँ
1: बारे
0: कुछ बताऊँगी ताकि वे रुचि
1: ले
0: बनाए
1: सके।
0: रखें। और मैं अब माता पिताओं से कहूँगी कि अपने बच्चों को बैठकाओं में भेजिए, उनको हिंदी से जुड़िए, उनको शिवालयों में या पौराणिक कथाओं को से जुड़ित करें, चाहे वो यूट्यूब में हो या एआई हो या फिर कौतून के माध्यम से, लेकिन उनको जुड़े
1: जोड़े
0: जोड़े
1: जोड़ना बहुत
0: जी
1: आवश्यक है,
0: आवश्यक
1: क्योंकि
0: है जी।
1: भाषा के साथ नहीं जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों,
0: बहुत
1: अपनी
0: खूब
1: संस्कृति से छूट
0: छूट
1: जाएंगे,
0: जाएंगे
1: पीछे रह जाएंगे। और इस वर्ष का जो हिंदी का
0: स्लोगन।
1: स्लोगन नहीं, जो विषय चुना गया है,
0: अच्छा
1: वे है ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
0: एआई।
1: किस प्रकार एआई के साथ हमें हिंदी भाषा को जोड़ना है। तो एआई के साथ बच्चों को जब तक नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक उनको आज की प्रौद्योगिकी से नहीं जोड़ेंगे, हम उनसे जुड़ नहीं पाएंगे भाषा के माध्यम से।
0: अंजू जी, मैं एक बात कहूँगी यहाँ पर, मैं ये
1: जी
0: कहूँगी कि देखिए बच्चे, जब पेरेंट्स जो होते हैं ना, अभिभावक जो हैं, वो बच्चों को स्कूल ज़रूर भेज देते हैं हिंदी के लिए पढ़ने के लिए। कहीं कहीं बहुत से पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, उनको खुद हिंदी नहीं आती है। मैं समझती हूँ कि इस माध्यम से वो खुद भी पढ़ें और बच्चों
1: बिल्कुल
0: को हेल्प, उनको मदद करें,
1: बिल्कुल
0: ताकि कुछ वो भी सीखेंगे। और ये नहीं कि मतलब बच्चों को सिर्फ खाली हाथ भेज देना कि वहाँ जाकर वो सीख लेंगे, नहीं। जब तक अभिभावक बच्चों के साथ जुड़कर उनकी मदद घर में नहीं करेंगे, तो वो इंटरेस्ट बच्चों में नहीं आएगा।
1: नहीं आ पाएगा, और
0: ये
1: वो
0: बहुत ज़रूरी है कि एक अभिभावक जब,
1: परिवेश पूरा होना चाहिए, तभी
0: यस,
1: भाषा आगे बढ़
0: और
1: पाएगी।
0: जानते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उनको हिंदी नहीं आती है। देखें, हम भी शुरुआत में जब आए थे तो हमें फ्रेंच नहीं आती थी। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते तो हमने कोशिश की कि हम सीखें कुछ
1: बिल्कुल
0: किताब में से। मुझे अभी तक है कि वो किताब, अभी तक वो माघी और एक था
1: रेमिये
0: रेमिये
1: मागी,
0: माघी,
1: रेमिये
0: हम
1: मागी।
0: वो पढ़ते थे ताकि
1: हाँ
0: बच्चों को बता सकें।
1: बिल्कुल
0: तो यही हिंदी के साथ भी लागू होना चाहिए कि अभिभावकों को चाहिए कि हिंदी नहीं भी आती है तो वो
1: और
0: आज
1: आज
0: आजकल
1: तो
0: तो यूट्यूब
1: मोबाइल में
0: है,
1: 10 सेकंड
0: सब कुछ
1: में
0: है।
1: आपकी भाषा परिवर्तित हो जाती है, अनुवाद हो जाता
0: वो
1: है।
0: बच्चों को भाषा से अधिक मजबूती से जोड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: और उसमें देखिए, संडे एक ही रविवार होता है जिस समय बच्चे आते हैं, तो वो मेरा को कहीं ना कहीं कमी लगती है कि इसको, हमें कमी को दूर करने के लिए अभिभावकों को पहले रुचि लेनी होगी कि
1: बिल्कुल
0: जब वो घर में आते हैं, देखिए बच्चे बच्चे से पूछिए आपने क्या सीखा। ये नहीं कि मैंने तो हिंदी करी नहीं है तो मुझे आती नहीं है, मैंने सिर्फ बच्चों को वहाँ भेजा है, वो वहाँ पर वो सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ताली दो हाथ से बजती है। तो
1: बिल्कुल
0: अभिभावकों को चाहिए कि वो भी अपने बच्चों से पूछें कि क्या सीखा, ढूंढें, अगर कुछ नहीं आता तो बच्चे को बताएं, वो जब आएगा तो वो बच्चा ज्यादा रुचि लेगा क्लास
1: जी, बहुत सही बात आपने कही,
0: में।
1: और ये आप अनुभव के माध्यम से बोल रही हैं।
0: बिल्कुल सही कह
1: जो
0: रही हैं।
1: आपने अनुभव किया उसी को साझा किया हमारे श्रोताओं के साथ। एक फोन कॉल है, हम लेते हैं। हेलो,
0: हेलो दीदी, प्रणाम, नमस्कार।
1: प्रणाम, नमस्कार, कैसी हैं?
0: और जो बच्चे आए हैं उनको भी मैं शुभाशीष देती हूँ। मैं ही हूँ राधा मोचदा से।
1: जी जी राधा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत
0: हाँ,
1: है।
0: मैं भी सभी को हिंदी की दिवस के लिए बहुत भरी शुभकामना दे रही हूँ।
1: जी
0: और मैं भी जो बात जोड़ूंगी कि पहले जब हम पढ़ते थे या जिस जमाने में हम बच्चों को पढ़ाते थे, तो उस समय का उसका माध्यम कुछ अलग था।
1: जी
0: हम स्वर, व्यंजन, मात्रा ऐसे से शुरू करते थे बच्चों को बताना, चित्र के माध्यम से या फलों के माध्यम से बाहर बच्चों को निकालते थे, उन्हें बाग बगीचे दिखाते थे। तो ऐसे हम बच्चों को हिंदी की तरफ प्रेरित करते थे। छोटे छोटे रंगीन पुस्तक खरीदते थे जिससे बच्चे प्रेरित हों। ऐसे करके हमने हिंदी सीखा और बच्चों को भी हमने ऐसे सिखाया। लेकिन अब समय बदल चुका है और माध्यम भी बदल चुके हैं, तो फिर भी बच्चों को इसको ओर प्रेरित करने के लिए अभिभावकों का साथ देना बच्चों का
1: सहयोग
0: बहुत ही
1: बहुत
0: आवश्यक
1: जरूरी।
0: है।
1: बिल्कुल
0: अगर अभिभावक ही नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ें, तो जो जैसे अपनी अपनी जो हमारे जो ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण आदि, ये आगे ये बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: बड़ी बात आपने
0: अब,
1: कही है,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि भाषा से ही अपनी जो संस्कृति है, अपने जो धर्म की पहचान हम कर सकते हैं, केवल हमारी भाषा ही हमें करा सकती है।
1: भाषा और संस्कृति एक ही सिक्के
0: हाँ,

0: के दो पहलू हैं
1: बिल्कुल हाँ। और मिनिमम भी अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो कल को वो रामायण पढ़ सकेंगे कम से कम
2: पढ़ सकेंगे और समझ भी सकेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
1: जब पढ़ लेंगे तो समझेंगे तो बराबर
2: समझेंगे हाँ। हाँ, लेकिन बच्चों को बच्चों के पीछे हमेशा अभिभावकों का हाथ
1: जरूर यही बात मैंने कही कि कमी नजर आती है।
2: हमारे यहाँ अभी थोड़े दिनों से कुछ बुजुर्ग लोग हिंदी पढ़ने आ रहे हैं हमारे शिवालय में उनको सिखाया जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग इस उम्र में भी वो लोग हिंदी जाने सीखें
1: क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला था।
0: तब परिवेश बिल्कुल अलग था
2: हाँ, जब सब कुछ अलग था बदल चुका है अब ना
0: बिल्कुल। आज तो हमें बहुत सी सुविधाएं हैं इतनी संस्थाओं में पढ़ाई हो रही है इतनी जगह पर
2: बच्चे अभी
0: आयोजन
2: जो बेटियां आई हुई हैं दोनों बेटियां ये जो कर रही हैं ये लोग भी बहुत प्रेरित कर रहे हैं।
0: इसीलिए मैंने आमंत्रित किया
2: इनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए
0: क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम बच्चों को समय नहीं देते हैं बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं कार्यक्रम में हाँ, इसीलिए हाँ। मैंने इन दोनों को आज आमंत्रित किया
2: हाँ,
0: इस कार्यक्रम
2: अच्छा
0: में भाग लेने के लिए और सहयोग था शशि जी का जिन्होंने जोड़ा हाँ, उनको भी आभार प्रकट करेंगे
2: बेटियों को बहुत आशीष इन लोगों को। मैं चाहती हूँ कि ऐसे इनसे प्रेरित होकर और भी बच्चे हिंदी के साथ जुड़े सिखाएं बच्चों को खुद पढ़ें दूसरों को भी पढ़ाएं। मेरा यही संदेश है हिंदी दिवस पर
0: बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में एक और श्रोता है हम उनको लेते हैं। हेलो
3: हेलो नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी आशा जी कैसी हैं आप।
3: मैं अच्छी हूँ
1: आशा जी। अच्छा लगा आपको सुनकर। आशा भी हमारी रेगुलर लिसनर है बहुत अच्छा
0: इनसे आशा बंधी रहती है कि वो कुछ सुनाएंगी
1: जरूर
0: जी।
3: तो आज तो साहित्य दर्पण में जैसे त्रिवेणी की गंगा बह रही है
0: जी
3: तो शशि जी और दोनों बहनों को भी मैं सादर सादर नमन करती हूँ। और कुछ सुनाने से पहले समस्त हिंदी प्रेमियों को मैं हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देती हूँ और कहूंगी हिंदी भाषा की जय।
0: बहुत धन्यवाद। क्या सुना
3: और अपनी लिखी हुई एक छोटी सी कविता आप समक्ष आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
0: स्वागत है।
3: शीर्षक है हिंदी हमारी शान हिंदी हमारी पहचान ज्ञान की गंगा बहाए हिंदी सुमन जग को महकाए हम हिंदी प्रेमियों की शान बढ़ाए हिंदी हमारी शान हिंदी हमारा मान पूर्वजों की धरोवर सभ्यता की अमृत सरोवर विचारों की पूंजी में संस्कृति की गागर गीता पाठ पढ़ाए रामायण संदेश हो विख्यात गीता पाठ पढ़ाए रामायण के संदेश का हो विख्यात हिंदी हमारा शान हिंदी हमारा मान धरा है हर कलम की आसमान है हर पुस्तक की जिससे मिट्टी की खुशबू आए गाथा है ये हम सबकी माथे की चंदन हृदय का मान माथे की चंदन हृदय का मान हिंदी हमारी शान हिंदी हमारी पहचान नानी दादी की कहानियों में गीत संगीत की सरगम है कविता की सरिता बहाए कविता की सरिता बहाए हिंदी की साहित्य दर्पण में जीवित रहेगी हिंदी जब तक रहेगी जान जीवित रहेगी हिंदी जब तक रहेगी जान हिंदी हमारी शान हिंदी हमारी पहचान।
1: बहुत अच्छा आशा बहुत
0: अच्छा बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार। चलिए अब हम श्रोताओं के साथ नहीं जुड़ पाएंगे कारण ये है कि घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि बहुत कम समय रह गया है और हमारे तीन तीन अतिथि हमारे साथ हैं। हम दोनों छात्राएं जो कि अब अध्यापिकाएं बन रही हैं उनकी ओर से विचार जानना चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में आप जुड़ी आपका क्या अनुभव रहा कैसा लगा आपको।
4: मैं कहूँगी कि हिंदी एक श्रोता ने कहा कि हिंदी आपको कहाँ से कहाँ ले आती है
0: जी।
4: तो इसी संदर्भ में मैं कहूँगी कि हिंदी ने मुझे यहाँ पर ले आई और हिंदी के माध्यम से मैंने जब नुक्कड़ नाटक में प्रयोग में पार्टिसिपेट किया भाग लिया तो मुझे सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस मिला उसके अनुभव ही कुछ अलग था। और अगर मैं नुक्कड़ नाटक की बात कर रही हूँ और मैं अपने सहेलियों या सहायकों को धन्यवाद नहीं करूँगी तो कुछ रह जाएगी तो उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने भाग लिए और हमें सहायक भी किए, सहायता भी की। और मेरी अनुभव यहाँ पर है कि मैं आपको धन्यवाद

0: धन्यवाद कहूंगी
1: यहाँ
0: पर इस मंच पर लाने के लिए, धन्यवाद।
1: अब हम दूसरी बिटिया को सुनते
2: हैं, वैष्णवी।
1: वैष्णवी जी, आप क्या कहना चाहेंगी एक मिनट में? जी
3: जी, पहले तो आप दोनों को धन्यवाद बहन जी, क्योंकि आपने हमें ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, और आशा करती हूँ कि कई श्रोताओं के लिए हमने उन्हें प्रेरित किया है ताकि वे अपने बच्चों को भी बैठकाओं में पढ़ने के लिए भेज सके।
2: बिल्कुल सही कहा।
3: और एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि बहन जी दुकान कह रही थी कि अगर माता पिता ही अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे तो
2: अभाव रह जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। शशि जी, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, एक मिनट आपको देती हूँ क्योंकि रोशन जी बाहर आ चुके हैं।
2: बिल्कुल कार्यक्रम, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत कुछ प्रोग्राम में हम कह चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हिंदी के लिए आज बहुत आवश्यकता है कि हम बच्चों को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, और बच्चों के लिए मैं कहूंगी अभिभावक जो है वो भी उनके साथ जुड़े। ये नहीं कहें कि हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ या हमें आती नहीं है, आज ये कहना सब बातें व्यर्थ हैं। आज सब साधन है, सब है, हिंदी के लिए जुड़े और हिंदी आपको आगे बहुत तक ले जाएगी। सिर्फ उसे अर्थ से ही नहीं जोड़े, अर्थ ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में, लेकिन भाषा और संस्कृति का जो सहयोग है वो बहुत अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति के लिए।
1: हर कोण से आप देखें भाषा बढ़ रही है।
2: बिल्कुल,
1: और उसको हमें गिराना नहीं है, उसको बढ़ाते रहना है, उस पर गर्व करके हीन भावना नहीं लानी है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो दूसरा अंग्रेजी में बोल रहा है वो बहुत अच्छा है। हम अपनी भाषा पर गर्व करें क्योंकि वे हमारी मातृभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने भाग लिया। आभार प्रकट करेंगे हम लुडोविक का जिन्होंने आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया। शशि जी और दोनों छात्राओं का हम अब आभार प्रकट करेंगे क्योंकि उन्होंने एक छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। और अब मैं कहूंगी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और 15 तारीख को आप मनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी की भी आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हम गणपति से यही आशा करेंगे कि हमारी शुभकामनाओं के साथ आप सब श्रोताओं के लिए हिंदी दिवस मंगलमय हो।
2: बहुत खूब धन्यवाद अंजू जी, और सभी श्रोताओं से भी हम विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अभी अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम साहित्य दर्पण। शशि मैम और विद्यार्थिनियों को बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम के लिए और अंजू जी के लिए भी इस ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के लिए अत्यंत धन्यवाद है। 5:02 हो गए हैं।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
1: नमस्कार और आदाब प्यारे प्यारे मेरे साथियों, शानदार स्वागत है आप लोगों का। साथियों ये है रेडियो मॉरिशस, आपका मनपसंद रेडियो चैनल जहां पर हर तरह के प्रोग्राम चलता है केवल आप लोगों के लिए, और उन प्रोग्रामों में से एक है खेल खिलाड़ी प्रोग्राम जो चलता है 5 से लेकर 6 बजे हर शनिवार की शाम को। पहले सेगमेंट में सिनेमा दिल से जहां पर हम फिल्मों पर बातें करेंगे, प्रश्न करेंगे और गाने भी चलाएंगे।

तो चलिए आज का जो विषय है बड़ा ही नया सा विषय हम लाए हैं आप लोगों के लिए। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में मैंने कई बार आपसे बात की, परंतु फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर ये एक विभिन्न एस्पेक्ट है। यानी फिल्म फेयर का कमाल एक अनोखा मिसाल। जी हाँ, फिल्म फेयर का कमाल एक अनोखा मिसाल। फिल्म फेयर अवार्ड एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को दिया जाता है। ऐसा कई बार किया गया है, एक कैटेगरी में एक ही कलाकार नॉमिनेट हुआ है। जी हाँ, एक ही कलाकार नॉमिनेट हुआ है एक कैटेगरी में, जहाँ पर चाहे वो बेस्ट एक्ट्रेस हो या बेस्ट सिंगर हो, एक ही कलाकार नॉमिनेट होता है और स्वाभाविक सी बात है कि अवार्ड उन्हीं को प्राप्त हुआ। जी हाँ, तो चलिए ऐसे ही कलाकारों के बारे में हम बात करेंगे जिनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और एक साल में केवल वही नॉमिनेट हुए थे। तो चलिए पहला गाना हम चाहने वाले हैं मीना कुमारी जी पर। जी हाँ, मीना कुमारी जी पर क्यों? क्योंकि 1962 में 1962 में केवल मीना कुमारी जी ही को बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। जी हाँ, केवल मीना कुमारी ही का नाम था इस कैटेगरी में। तीन फिल्मों में वो नॉमिनेट हुई थी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और कोई और अभिनेत्री नहीं। और उन्हें ही फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया था। और तीन फिल्मों में से दो फिल्में थी आरती, जिसमें नजर आई थी मीना कुमारी जी, प्रदीप कुमार साहब और अशोक कुमार साहब, और मैं चुप रहूंगी, जो सुनील दत्त के साथ मीना कुमारी जी ने काम किया था। और एक तीसरी फिल्म भी थी जिसके लिए भी नॉमिनेट हुई थी, और ना तो आरती फिल्म में ना ही मैं चुप रहूंगी फिल्म में उन्होंने अवार्ड पाया था, बल्कि उस तीसरी फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया।

था। तो आप हमें 402-807-0-85 पर 480-8085 पर प्लीज हमें बताइए कि वो कौन सी तीसरी फिल्म है 1962 में जिसके लिए मीना कुमारी जी को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर की तरफ से, और उसका गाना चल पड़ा आप लोगों के लिए।

सखिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। पहली नजर में नींद उड़ जाती है, पहले प्यार में आशिक की दुनिया रुक जाती है। आशा भोसले जी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म। यही तो हम जानना चाहते थे कि फिल्म का नाम क्या है जिस फिल्म के लिए मीना कुमारी जी को अवार्ड दिया गया था, और सही जवाब है साहिब, बीबी और गुलाम। बहुत ही सुंदर फिल्म थी जो रिलीज हुई थी 1962 में, जिसमें नजर आए थे गुरुदत्त साहब, और गुरुदत्त साहब इस फिल्म के निर्माता थे और अबरार अलवी इस फिल्म के निर्देशक। और सही जवाब दिया रेहाना जी फ्रॉम नोटरडाम, फेनिक्स से सिदिक साहब, विजय भाई फ्रॉम क्राबित सेवास्तोपोल, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, कमला जी फ्रॉम मोताबा, अली जनाब फ्रॉम लिस्कालिये और कटरबोन से स्वस्ति बहन। चलिए प्रश्नों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं।

0: और 1968 में यानी 1968 में ऐसी एक फिल्म आई थी। वैसे तो ऐसा एक सिंगर था बहुत ही, जिसे हम कहते हैं द हेवनली वॉइस, सभी लोग उन्हें जानते हैं, मरहूम मोहम्मद रफी साहब। 1968 की फिल्मों के लिए फिल्मफेयर अवार्ड की तरफ से केवल मनोनीत हुए थे मोहम्मद रफी साहब ही, 3 गानों के लिए। जी हाँ, 3 गानों के लिए वो मनोनीत हुए थे। 2 गाने जो थे ब्रह्मचारी फिल्म से लिया गया था और 1 गाना जो था नीलकमल फिल्म से लिया गया था। और कोई गायक कलाकार नॉमिनेट नहीं हुए थे, केवल रफी साहब ही। ब्रह्मचारी के जो गाने थे वो है मैं गाऊं तुम सो जाओ और दिल के झरोके से, और दिल के झरोके वाला गाना, इसी के लिए वो अवार्ड उनको मिला था फिल्मफेयर की तरफ से, बेस्ट सिंगर का अवार्ड। आपको हमें बताना पड़ेगा कि नीलकमल फिल्म में जिस गाने के लिए रफी साहब को नॉमिनेट किया गया था, आपको वो गाना हमें बताना पड़ेगा। 4028085 पर वो गाना प्लीज हमें बता दीजिए जिस गाने के लिए रफी साहब को 1968 में नीलकमल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें प्राप्त हुआ इस गाने के लिए जो ब्रह्मचारी वाला गाना हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं अपने दिल के पास। इस गाने को सुनकर जागता है दिल में मीठा मीठा एहसास। रफी साहब की आवाज, और उन्हें प्राप्त हुआ था फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड। परंतु हमने आपसे ये पूछा था कि नीलकमल फिल्म के लिए कौन से गाने के लिए रफी साहब मनोनीत हुए थे। बहुत से लोगों ने कहा, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, लेकिन ये गाना नहीं है दोस्त। गाना इस प्रकार है, बाबुल की दुआएं लेती जा। जी हाँ, ये गाना है पुराने ज़माने में जब मॉरिशस में शादियाँ हुआ करती थी तो विदाई के समय ये गाना चलाना स्वाभाविक सा था। स्वाभाविक सी बात थी, सभी लोग रो पड़ते थे जब दुल्हन माता पिता को छोड़कर गाड़ी में बैठ जाती थी दूल्हे के साथ और ये गाना बैकग्राउंड में चलता था। उस ज़माने की बात ही कुछ और है यार। और सही जवाब दिया वीना जी त्यागोश से, शमा जी विलमे से, अमृता जी ओकुले से, ठुदुदुस से आत्मा जी, सिरिक भाई फ्रॉम फेनिक्स और अनिता जी फ्रॉम मदर बेयर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 1968 से निकल कर हम 1972 तक जाते हैं, जहां जैसे 1972, हाँ जी 70s में जाते हैं।

साहब की तरह आशा जी भी ऐसी एक गायिका हैं जो बेस्ट सिंगर के कैटेगरी में केवल उन्हीं का नाम नॉमिनेट किया गया था 1972 के अवार्ड में।

सम्मानित किया गया था। तो चलिए ये गाना आपके लिए हम अवश्य चलाएंगे। और इस गाने के जो संगीतकार है वो कौन है, ये प्रश्न नहीं है, वो तो राहुल देव साहब है, परंतु इसके जो गीतकार हैं, किसकी लायरिक्स हैं, लायरिसिस्ट कौन है, किसने ये गाना लिखा था, ये हमें जानना अवश्य ज़रूरी है आप लोगों से। तो 4028085 पर फ़ोन करके हमें बताइए कि ये जो गाना अभी चलाने जाएंगे हम, इसके गीतकार कौन है।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा गाना हरे कृष्णा हरे राम, फिल्म हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा से लिया गया, देवानंद निर्देशित फिल्म थी 1972 में, और ये फिल्म जो है जीनत अमान की पहली फिल्म। क्या परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने, देवानंद जी के की बहन के रूप में वो नजर आए थे इस फिल्म में, मुमताज भी थी इस फिल्म में। और हमने सवाल किया था कि आशा जी ने इस फिल्म के लिए, इस गाने के लिए अवार्ड तो पाया था, लेकिन गाने के लिखने वाले कौन, गीतकार कौन? बड़ा आसान सा सवाल था और सही जवाब है आनंद बख्शी। और सही जवाब दिया इंदिरा जी मेबर्ग से, एक और इंदिरा जी मौदाबिया से, नन्नाल जी मौदस्थालिया से और शोभा जी वाकवा से। चलिए हम बढ़ते हैं किस साल की ओर, 1972 यानी 70s से निकलकर हम 80s तक आते हैं, जहां पर रफ़ी साहब

आशा जी की तरह किशोरदा भी एक ऐसा गायक निकला जो बेस्ट सिंगर के कैटेगरी में उनका ही नाम 1984 के सभी फिल्मों के लिए। चार चार गाने केवल किशोरदा के नाम, और कोई और गायक कलाकार नॉमिनेट नहीं हुए। और उस जमाने में तो शब्बीर कुमार साहब थे, अमित कुमार जी भी थे, सुरेश भादकर, शैलेंद्र सिंह और अनवर थे, पर सभी गाने के लिए जो नॉमिनेट हुए थे केवल किशोरदा 1984 में। और ताजुब की बात यह है कि एक ही फिल्म के चार गाने नॉमिनेट हुए थे, यानी शराबी फिल्म के गाने। और जो जो गाने इस नॉमिनेट हुए थे वो थे मंजिलें अपनी जगह, दे दे प्यार दे, लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, और इंतहा हो गई इंतजार की। और मंजिलें अपनी जगह गाना जो था इसी के लिए किशोरदा को अवार्ड दिया गया था। अभी गाना तो हम चलाएंगे, परंतु अगर आपने फिल्म शराबी देखी है तो आप हमें बताइए कि मुंशी फूलचंद जी का रोल किसने अदा किया था, किसने भूमिका निभाई थी मुंशी फूलचंद जी का। विक्की कपूर के रोल के लिए अमिताभ बच्चन तो थे ही, और मीना के रूप में जयप्रदा जी थे। तो मुंशी फूलचंद का रोल किसने अदा किया था, 402-808-5 और ये गाना आप लोगों के लिए।

0: शराब भी वो फिल्म थी जिसके चार गानों के लिए किशोर दा को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें प्राप्त हुआ इसी गाने में बेस्ट सिंगर का अवार्ड फिल्मफेयर की तरफ से। मंजिलें अपनी जगह अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया ये गाना, और अफसोस की बात है कि अमिताभ बच्चन ने लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं पाया, क्योंकि उस साल में अनुपम खेर साहब पहली फिल्म में उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड पा लिया था फिल्म सारांश के लिए। और हमने कहा पूछा था आपसे कि मुंशी फुलचंद जी की भूमिका किसने निभाई थी, और बहुत से लोगों ने कहा मुखरी साहब, लेकिन मुखरी साहब का नाम उस फिल्म में तो नट्ठूलाल था, क्योंकि बच्चन साहब ने कहा था ना कि मुझे हो नट्ठूलाल जैसी वरना मुझे ना हो। लेकिन मुंशी फूलचंद जी का किरदार निभाया था ओम प्रकाश साहब ने। जी सही जवाब दिया जीवंती जी फ्रॉम बेलवेदे, रामदत्त जी फ्रॉम बाकवा, अली साहब फ्रॉम लिस्कालिये, ज्योति जी फ्रॉम बॉम्बू, विजय भाई फ्रॉम क्लब सेवास्तोपोल, नीला जी फ्रॉम बाकवा, स्वस्ति जी फ्रॉम कटरबोन, कमला जी फ्रॉम मोताबा और आत्मा जी फ्रॉम थुडुदूस। 5:34 और पहला सेगमेंट यहाँ पर समाप्त हो जाता है आपके लिए। अब हम लाएंगे दूसरा सेगमेंट, मेरा सवाल तेरा कमाल, इसमें क्या होने वाला है चलिए अब आपको बताएंगे। अभी
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी।

लवर्स म्यूजिक प्रेमियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आपका एकदम स्वागत है दूसरे सेगमेंट में रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम, जहां पर नाम रखा गया है इस दूसरे सेगमेंट का, मेरा सवाल तेरा कमाल। यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज फुटबॉल और स्पोर्ट्स पर, और हम शुरुआत तो करते हैं आदत अनुसार फुटबॉल से। और फुटबॉल में जब हम डुबकी लगाते हैं तो सीधा हम चले जाते हैं इंग्लैंड, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग। और आज के जो फिक्चर है वो इस प्रकार है, 6 बजे मैच खेले जाएंगे, लिवरपूल वर्सेस फुलहम, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस इप्सविच टाउन, बोर्नमुथ वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, द बैटल ऑफ द बीज, एस्टन विला वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, चेल्सी वर्सेस हल सिटी, ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस एवर्टन, और सन्डरलैंड वर्सेस चैंपियंस आर्सेनल। और कल के जो मैचेस निर्धारित किए गए हैं वो इस प्रकार है।

कोवेंट्री सिटी वर्सेस ब्राइटन, और कल का जो धमाकेदार धुएंदार मुकाबला द मैनचेस्टर डर्बी ओल्ड ट्रैफोर्ड में, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्वागत करेगा मैनचेस्टर सिटी का, और साथ ही साथ लीड्स यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल। और हम बढ़ेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल की ओर, तो जहां पर पहले स्थान पर मैनचेस्टर सिटी है 9 अंकों के साथ, और आर्सेनल दूसरे स्थान पर आता है 9 अंकों के साथ ही। दोनों के पास 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन गोल एवरेज भी +5 है। क्या बात है, शुरुआत ही में दिन में तारे नजर आ रहे हैं। लेकिन सिटी ने एक गोल ज्यादा स्कोर किया है, यानी 7 गोल और आर्सेनल 6 गोल, तो इस प्रकार सिटी पहले स्थान पर है सिटी बजाते हुए। तीसरे स्थान पर कौन है, हल सिटी, क्या बात है, 7 अंकों लिए। चौथे स्थान पर चेल्सी है मजबूती के साथ 6 अंक के साथ। छठे स्थान पर लिवरपूल है, और 11वें स्थान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अंतिम स्थान पर है कोवेंट्री सिटी, एक भी अंक नहीं है। केवल ऐसे अभी तक 2 टीम्स हैं जिसके पास कोई अंक नहीं है, वो है फुलहम और कोवेंट्री सिटी। लेकिन फुलहम अभी एवे जाएगी लिवरपूल के मैदान में, हो सकते हैं कि फुलहम एक अंक ले जाए या लिवरपूल को हरा दें। ये फुटबॉल है बाबू, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और अभी तक जो 100% विन है वो है मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के लिए, 3 मैचेस में 3 जीत 9 अंक। सबसे ज्यादा गोल्स अब तक स्कोर किया है मैनचेस्टर सिटी ने, और टॉप स्कोरर के रूप में देखेंगे तो 3 गोलों के साथ 3 खिलाड़ी अभी पहले स्थान पर हैं, यानी लिवरपूल का अलेक्जेंडर आइसाक और मैनचेस्टर यूनाइटेड का टैलिस्मैन ब्रूनो फर्नांडिस, और मैनचेस्टर सिटी का बहुत ही लाडला अर्लिंग हालैंड, 3 गोलों के साथ अभी वो तीसरे, वो पहले स्थान पर है। तो आपको 4028085 पर बताना पड़ेगा कि अभी तक केवल एक ही टीम है जिसने कोई भी गोल कंसीड नहीं किया है। आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, सभी ने गोल कंसीड किया है, यानी उनके खिलाफ गोल स्कोर किए गए हैं। लेकिन एक ही ऐसी टीम बची है जो गोल तो स्कोर किया है, लेकिन उसका जो गोलकीपर है उसके पास अभी क्लीन शीट है प्रीमियर लीग के सीजन में, कोई गोल नहीं बन पाया है उस टीम के खिलाफ। वो कौन सी टीम है, 4028085। और जब ये टीम की बात, इस टीम की बात होती है, तो मैं कहता हूं कि माय डील गोज बू।

माय डियर गुज़ुम। और ये जो गाना है शान साहब और गायत्री अय्यर जी की आवाजों में फिल्म सलाम नमस्ते, आपको भी सलाम और नमस्कार। सवाल था कि अब तक प्रीमियर लीग में केवल एक ही टीम है जिसके खिलाफ कोई टीम गोल नहीं बना पाया है, और वो कौन सी टीम है? अरे यार, वही टीम है जो प्रीमियर लीग में अभी अभी आया है, और वही टीम है जो सबसे पहले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया था। उस टीम से चौकन्ना रहना, और खासकर चेल्सी जो कल उससे मुकाबला करने वाला है, कल नहीं बल्कि आज। सो बीवेयर चेल्सी। और वो टीम है हल सिटी। जी हाँ, हल सिटी जो सभी टीमों को हेल दिखा रही है। और सही जवाब दिया नंदलाल जी फ्रॉम मॉड ऑस्ट्रेलिया, इंदिरा जी फ्रॉम मॉडलबे और नीला जी फ्रॉम बाकवा। चैंपियंस लीग की बात करें तो बहुत से टीमों की जीत हुई पहले मैच में। अस्टन विला, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन, लिवरपूल, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन सबों की जीत हुई है पहले ही मैच डे में। और अगला मुकाबला होने वाला है 13 और 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को भूलिएगा मत, धमाकेदार मैच बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मेन, और साथ ही साथ एएस रोमा वर्सेस रियल मैड्रिड। चलिए अब हम आते हैं हमारे प्यारे देश की ओर, और हम आपसे जानना चाहेंगे एक गांव का नाम, और आज हम जाएंगे दक्षिणी ओर, दक्षिण की ओर यानी दक्षिणी प्रांत। जब आप रॉसबेल से निकल कर मेबर्ग जाती हैं तो वहां पर बहुत से गांव मिलते हैं इन बिटवीन। जी हाँ, रॉसबेल से निकल कर अगर आप मेबर्ग जाएंगे, लेकिन पुराने रास्ते से, हाँ जी पुराने रास्ते से जाएंगे, तो रॉसबेल को छोड़कर आपको न्यू ग्रोव मिलेगा। लेकिन न्यू ग्रोव, रॉसबेल और न्यू ग्रोव के बीच में दो छोटे गांव आते हैं, बागामिया और मोफियाचिल। और अगर आप न्यू ग्रोव जाते हैं सेंटर में, अगर आप लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं तो आप देबा की ओर जाएंगे, अगर आप राइट की ओर मुड़ेंगे तो आप गोबियो, महताबा और रिव्याजिपोस जाएंगे। परंतु अगर आप न्यू ग्रोव से निकलकर मेबर्ग की ओर जा रहे हैं एयरपोर्ट से होकर, तो आपको क्या मिलेगा, ये हम आपको अभी अभी प्रश्न करेंगे, आपसे प्रश्न करेंगे कि अगर आप न्यू ग्रोव को छोड़कर, तो आपको मौदाबिया मिलेगा, प्लेनमायों भी मिलेगा, लेकिन न्यू ग्रोव और मौदाबिया के बीच में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम क्या है? न्यू ग्रोव और मौदाबिया के बीच में मेबर्ग जाते हुए आपको एक छोटे से गांव से गुजरना पड़ेगा, वो कौन सा गांव है? 4028085 पर प्लीज आप लोग बड़े प्यार से जवाब दीजिए।

जी हाँ, जीवन में पहली बार के लिए लेकिन एक ही बार प्यार करना चाहिए, बार बार नहीं। सवाल था कि न्यू ग्रोव और मोदाबिया के बीच में एक छोटा सा गांव, बहुत ही सुंदर सा गांव पाया जाता है, उसका नाम क्या है? सही जवाब है लाहोजा। और ज्यादातर दक्षिण प्रांत के लोगों ने फोन करके जवाब दिया, यानी इंदिरा जी मोदाबिया से, इंदिरा जी मेबर्ग से, दीपा जी कोंतोरेल से, केवल वही दूर है, इंदिरा जी न्यू ग्रोव से और देवदास जी कटरबोन से, वो भी थोड़े दूर हैं, और इंद्रानी जी लेस्कालिये से नज़दीक हैं। और इंद्रानी जी का आज जन्मदिवस है और उनका जो जुड़वा भाई है उनका भी जन्मदिवस है, तो दोनों को हम कहेंगे एमबीसी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों के जन्मदिन के लिए, और ईश्वर आप दोनों की रक्षा करें और हमेशा आपको स्वस्थ रखें और सुरक्षित भी। चलिए अगला प्रश्न हम करेंगे मैथमेटिक्स पर। और मैथमेटिक्स के साथ साथ हिंदी पर भी, क्योंकि हिंदी दिवस मनाया जाएगा 14 सितंबर को, यानी सोमवार को। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो गणित विज्ञान में यानी मैथमेटिक्स में हम प्रयोग करते हैं, जैसे एरिया, एवरेज, ये सब कुछ, और पॉलीगन्स का मतलब है जो शेप्स हैं, यानी स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम। तो आपको हमें बताना पड़ेगा दिमाग लगाकर 4028085 पर कि कौन से दो पॉलीगन्स को, यानी बहुभुज, हिंदी में पॉलीगन्स को बहुभुज कहते हैं, यानी शेप्स को हिंदी में हम त्रिभुज और

वर्ग कहते हैं। जी हाँ, कौन से दो शेप्स को यानी कौन से दो पॉलीगन्स को हम हिंदी में त्रिभुज और वर्ग कहते हैं? 402-808-5402-80-85 पर प्लीज आप लोग हमें जवाब दें।

शान भी तो गजब करता है, लेवलोजी में पास हो जाता है, बाकी सब में फेल। लेकिन हम चाहते हैं कि शान जी तो पढ़े लिखे हैं और खासकर मैथमेटिक्स में। और जो प्रश्न हमने आपसे कहा पूछा था मैथमेटिक्स और हिंदी पर था, यानी हिंदी में हम एक मैथमेटिकल टर्म को, शब्द को कहते हैं त्रिभुज और एक को कहते हैं वर्ग। तो त्रिभुज किस शेप को हम कहते हैं, किस पॉलीगन को, और त्री यानी थ्री, फ्री साइड्स, फ्री एंगल्स, और बेशक वो है ट्रायंगल, और वर्ग है स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायर है वर्ग और ट्रायंगल है त्रिभुज। ऐसे और हम शब्द लाएंगे हिंदी में मैथमेटिकल टर्म्स बाकी प्रोग्रामों में, आप इंतजार कीजिए। 5:55 हो गए हैं, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हो चला, और ठीक 6 बजे आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे। तो रेडियो मॉरिशस के साथ आप जुड़ते रहें, और जाते जाते आप लोगों को हम कहेंगे कि जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, जैसे स्वास्थ्य, समय, खुशियाँ, सच्चे दोस्त, सपने और प्यार। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप हैं सबसे बड़ा धनवान। बेकार है बटोरना और बटोर के रखना भौतिक सामान। और वादा कीजिए हमारे साथ कि आप कभी भी अपने आप को क्या कहें, ठुकराएंगे ये नहीं, यानी आप अपने आप अपना ख्याल रखिएगा, व्यायाम रोज और प्राणायाम भी रोज। गाते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। रेडियो मॉरिशस 24/7 आपकी सेवा में। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि, और आपको कहेंगे

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिला ये शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कैबिनेट ने शागस मुद्दे पर गुरुवार को अटर्नी जनरल और बरतानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में चर्चा किए गए विषयों का जायजा लिया। दोनों सरकारों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत जारी। देश में कई ऐसी जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में कि कब जांच समाप्त हो। ये इंतज़ार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है। डीपीपी दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य नहीं। देश में दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज़ अपने साथ लेकर गए थे सपने, उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियों दुनिया के अलग कोने में मॉरिशस से एक मंच में जुटे। गोपियो इंटरनेशनल कॉन्वेंट 2026 का मंच। विदेश की खबरों में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने किया ड्रोन हमला, उस पाइपलाइन को बंद किया गया है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने शागुस मुद्दे पर गुरुवार 10 सितंबर 2026 को अटर्नी जनरल और बरतानी सरकार के प्रति

0: प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में चर्चा किए गए विषयों का जायजा लिया। दोनों सरकारों के बीच समझौतों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बातचीत जारी है। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
1: ये मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच 2 महीनों के भीतर हुई दूसरी वर्चुअल बैठक है। पहली 2 जुलाई को हुई थी। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने शागुस मुद्दे पर ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के ओवरसीज टेरिटरीज एंड पोलर डायरेक्टोरेट के निदेशक रोबी बुलक के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान बरतानी पक्ष ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने के समर्थन में अपनी स्थिति दोहराई। ब्रिटेन ने यह भी पुष्टि की कि अक्टूबर की शुरुआत में एक बरतानी प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस आएगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी मॉरिशस की जरूरतों का आकलन करना होगा। यह आकलन उस संधि के तहत मॉरिशस की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया जाएगा जब वो संधि लागू हो जाएगी। दूसरी ओर मॉरिशस मालदीव के दावे पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रिपरिषद ने 7 सितंबर को नागरिक और मानवाधिकार समूह पेन फॉर राइट्स मालदीवियंस फॉर शागुस द्वारा प्रकाशित एक लेख का जायजा लिया। इस समूह ने मालदीव सरकार से अपील की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का इस्तेमाल शागुस द्वीप समूह पर अपने उस दावे को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए करे जिसे वो एक ऐतिहासिक क्षेत्रीय दावा बताता है। वो शागुस द्वीप समूह को फुल हवाई के नाम से संदर्भित करता है। मॉरिशस सरकार ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में शागुस मुद्दे पर मालदीव की ओर से की जाने वाली हर घोषणा, राजनयिक संचार या आधिकारिक पहल पर नजर रखेगी। मालदीव की इस पहल के बीच मॉरिशस सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
0: मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रसभा में 9 विधेयक पेश किए जाने पर मंजूरी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल, नेशनल क्राइम इंटरिम एजेंसी बिल, सेक्रेटेरियट ऑफ द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी पैनल बिल, सेक्रेटेरियट ऑफ द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी इंटरिम पैनल बिल, फाइनेंशियल क्राइम बिल, एसेट रिकवरी एंड अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ बिल, नेशनल क्राइम एजेंसी मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल और क्रिमिनल जस्टिस ऑफेंडर्स असिस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस बिल। इनका मकसद है नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना का प्रावधान करना। कैबिनेट ने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में नेशनल एविएशन कंसल्टेटिव काउंसिल की स्थापना को मंजूरी दी। ये परिषद राष्ट्रीय स्तर पर हवाई संपर्क से जुड़ी दिशा तय करेगी और विमानन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों को राष्ट्रीय हित के आधार पर परखेगी। कैबिनेट ने सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के मौके पर शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इन कार्यक्रमों का मकसद विद्यार्थियों को उनके विचारों, नेतृत्व और देश निर्माण में उनके योगदान के बारे में बेहतर जानकारी देना, देशभक्ति, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इनके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कला और भाषण प्रतियोगिताएं, विरासत कोनों की स्थापना, संगीत कार्यक्रम, आज़ादी के संघर्ष और देश निर्माण पर चर्चा तथा युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को सचिव सागर राम गुलाम के कार्यकाल में लागू की गई मुफ्त शिक्षा के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा। कल 11 सितंबर को दिवंगत सतकाम बुलेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिपाही भोईले वाले दिवस में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस हस्ती की 126वीं सालगिरह के अवसर पर फूल चढ़ाए गए। उनके बेटे डॉक्टर अरविंद बुलेल सहित लेबर पार्टी के कई सदस्य वहां मौजूद रहे। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कुछ जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि कब जांच समाप्त होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। ये इंतजार उनके जख्मों को और कुरेद रहा है, उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के अनुसार एक न्याय संगत देश में ऐसी देरी सामान्य बात नहीं है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: किसी अपने को एक दर्दनाक हादसे में खो देना एक ऐसा

0: दर्द हैं जिसके साथ परिवारों को जीना सीखना पड़ता है, लेकिन जब जांच और अदालती कार्रवाई सालों तक चलती रहती है तो दुख भी अधूरा रह जाता है। कुछ हादसों को 6 साल बीत जाने के बाद भी परिवार आज तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
1: अट्ठाईस दिसंबर
0: 2019 में उनकी मृत्यु हुई। पुलिस कहती है कि जांच अभी जारी है। एक महीना पहले मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे बताया गया कि बोम्बू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, वहां जाना चाहिए। ये जटिल है क्योंकि हम पहले से ही दुख में हैं, एक सदस्य को खो दिया है। जब किसी जानलेवा हादसे के बाद मामला अदालत तक पहुंचता है और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो कानून में क्या प्रावधान है? असिस्टेंट डीपीपी वकील ओद्रे स्टीफन कहती हैं, हालांकि जब कोई व्यक्ति सच स्वीकार कर लेता है या जिम्मेदार होना स्वीकार कर लेता है, तब अपराध के सभी तत्वों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके। एक व्यक्ति पुलिस जांच के दौरान कुछ बातें स्वीकार कर सकता है, लेकिन अदालत में खुद को निर्दोष बता सकता है। अपराध के सभी सबूत इकट्ठा करने चाहिए। जब कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाती है तब क्या होता है? अगर किसी जानलेवा हादसे में व्यक्ति का रिश्तेदार गवाह है तब वो अदालत को पत्र भेज सकता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई तक की अवधि होती है, या फिर अदालत आकर सुनवाई के दौरान शिकायत कर सकता है। डीपीपी दफ्तर की असिस्टेंट डायरेक्टर के अनुसार कानून में इतनी लंबी देरी सामान्य बात नहीं है।
1: Il est vrai que la constitution prévoit que un accusé, il doit être un inculpé et doit être jugé dans les plus brefs délais.
0: संविधान में व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन मारे गए व्यक्ति या उसके रिश्तेदार को लेकर कोई कानूनी शर्त नहीं है। मॉरिशस में अब तक ऐसा कोई ढांचा नहीं है कि दुर्घटना होने से लेकर मामले की समाप्ति तक अपने आप उसमें हो रहे विकास को वे देख
1: सकें।
0: इस बीच परिवार अपनी स्थिति समझाते हुए डीपीपी दफ्तर को पत्र लिख सकता है और मदद की मांग कर सकता है। इन परिवारों के लिए मकसद सिर्फ जवाब पाना नहीं बल्कि अपने खोए हुए परिजनों की याद में इंसाफ हासिल करना भी है।
2: कप सचिवानी यानी जलवायु पर आधारित सालाना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करीब है। तुर्की में 9 से 20 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी दिशा में पर्यावरण मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों के नौजवानों को एकत्र किया। मॉरिशस में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रकोपों और चुनौतियों पर उन्होंने अपने विचार और सिफारिशें पेश की। 12 सितंबर की तारीख मॉरिशस के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण। 6 सदी पहले इस तिथि को सभी मॉरिशनों के बीच देशभक्ति की लहर दौड़ उठी थी जब आकाशीय जहाज के कारण तेल रिसाव हुआ था। रेजिस्टेंस कार्यनाचीव के सदस्य आज भी बर्ग वाटर फ्रंट पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान सरकारी प्रोग्राम के कई कदमों का कारण बना है। उन्होंने जनता से संवैधानिक सलाह मशवरे में शामिल होने की मांग की और 24 सितंबर को पोटली में आयोजित गतिविधि में भाग लेने की भी उन्होंने मांग की। 2 सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ लेकर आए थे कई सपने, कई उम्मीदें और एक विरासत। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग कोनों से मॉरिशस में एक ही मंच पर एकत्र हुए। अवसर रहा 16वें गोपियों इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का, जहां भारतीय डायस्पोरा की एकता, उसकी पहचान और भविष्य पर मंथन किया गया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: भारत से मॉरिशस, मलेशिया से दक्षिण अफ्रीका, जापान से कनाडा और म्यांमार से लेकर दुनिया के कई देशों तक, कभी मजबूरी कभी उम्मीद और बेहतर भविष्य की तलाश में निकले भारतीयों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई और आज उनकी संतानों को जो रहा है गोपियो, एक ऐसा वैश्विक मंच जो भारतीय डायस्पोरा को एक परिवार की तरह करीब लाने का प्रयास कर रहा है।
4: जब जहाज में से लोग अलग अलग देश में उतरत अलन जा तो सबके अंदर से ही पुकार रहा कि हमने फिर मिलब जा। उस समय

0: सोचे जहाज से निकल जहाज में दोस्ती होल कठिन स्थिति में जिलन जा और दू जना है जा एक जना के पता जा तू है जा उतर तू मॉरिशस में उतर तू साउथ अफ्रीका में उतर तू फिजी में उतर तू हब जा उतर तो कितना कठिन दायक स्थिति हुई उस समय और हाउ समय दिल से कौन चित्कार निकल हुई अपन के समझाई खातिर चिंता नहीं कर हम फिर मिलेंगे फिर मिलब जा और हवे फिर मिलब के हमनी के 2 साल लगभग लगल है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाई के
1: युवाओं को जोड़ना व्यापार और पेशेवर अवसरों को बढ़ाना नेटवर्किंग को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति एवं भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में शामिल है।
2: लगभग 3.5 मिलियन जो प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया में रहते हैं और गोपीय उसका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको जोड़ता है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको भारत सरकार के समक्ष रखता है। तो ये कन्वेंशन हर 2 साल में एक बार होती है और तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि इन कन्वेंशन में जाएं और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सम्मिलित होके आप डिस्कस करें और उसके बाद अगर आप उसका फिर भारत सरकार के साथ बात करें और उनका सॉल्यूशन निकालें।
3: बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग प्लस क्रिप्टो बैंकिंग के को प्रमोट कर रहा हूँ जिसके कारण से ये जो बैंकिंग प्रॉब्लम है जो फंड जो है कहीं कहीं पे काफ़ी टाइम से पहुँचते हैं अभी बहुत सारा सेंक्शन लग रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रही फ़ंड ट्रांसफ़र और उसके कारण से बिजनेसमैन को हो रहे लॉसेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर टाइमिंग एंड ऑल सो वी आर ट्राइंग टू डू इट शॉर्ट।
1: मुख्य मेहमान मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रवासन यानी माइग्रेशन को आज की वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच सिर्फ साथ रहने के बजाय एक्टिव डायलॉग इंटरकल्चरलिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
4: मॉरिशस इज नॉट इम्यून टू दीज वाइडर करंट्स येट माइग्रेशन इज आल्सो डीपली एम्बेडेड इन आवर ओन नेशनल एक्सपीरियंस इट इज अ वेरी स्टोरी थ्रू व्हिच मॉरिशस बिकेम द कंट्री इट इज टुडे। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयरफॉर not simply to manage diversity or ensure peaceful coexistence, but to cultivate the conditions for genuine interaction, dialogue and a stronger sense of belonging to a common society.
1: रविवार 13 सितंबर को ये वैश्विक सम्मेलन समाप्त हो रहा है गोपी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 जहां विरासत जुड़ रही है समुदाय एकजुट हो रहा है और भारतीय डायस्पोरा अपने भविष्य की नई कहानी लिख रहा है। मॉरिशस में 11 से 13 सितंबर 2026 के बीच 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का आयोजन किया जा रहा है और उद्घाटन समारोह के दौरान कई देशों से आए प्रतिनिधि इस समय भाग ले चुके हैं। इस सम्मेलन ये जो सम्मेलन है दुनिया भर में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय यानी कि इंडियन डायस्पोरा के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को एकजुट करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसी उद्देश्य से इसका आयोजन भी किया गया है। सम्मेलन का मुख्य ध्यान युवाओं और प्रवासी समुदाय के भीतर व्यवसाय एवं व्यापार को बढ़ावा देने पर आधारित विभिन्न विषयों और सत्रों पर आधारित रहेगा।
5: हाईलैंड्स के होनोरिस एजुकेशनल नेटवर्क में 11 से 13 सितंबर के बीच इस्लामिक सिविलाइजेशन पर आधारित 5वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस लगा। आज अलग अलग साझेदारी की मकसद के लिए एकत्र हो रहे हैं अफ्रीकी इलाके और हिंद महासागर के टापू देशों में इस्लामिक रीति रिवाज को बढ़ावा देना और साथ में इसके संरक्षण और इसके प्रचार प्रसार पर भी विचार करना। मॉरिशस भारत और तमिल समुदाय के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को आर्थिक सहयोग का एक सशक्त माध्यम बनाना ये 13वें वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक समिट के प्रमुख देशों में से एक है। इस वार्षिक सम्मेलन में कई देशों से आए ठेकेदार निवेशक पेशेवर और अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। कल रात इस्लामी सकाफती सेंटर पोटली में कौमी खेरात मुकाबले का फाइनल लगा। 17 साल की उम्र वाले मोहम्मद हमीद रजा खान जुमन ने पहला इनाम जीता। मकतुल मुकरम सोसाइटी ने MBC के ताउन से इस मुकाबले का एहतमान किया। मकसद नई नस्ल में कुरान की तिलावत

0: को फरोख देना। कुरान इस्लाम की सबसे अजीम किताब हैं जिससे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद पर नाज़िल फरमाया गया था। आज से श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सवम का शुभारंभ हो रहा है। ग्रैंड रेवेन्यू फर्स्ट स्थित तेलुगु महासभा के मुख्यालय में कलश स्थापना विधि के साथ 40 दिनों के व्रत का आरंभ हुआ। ज़रा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पूजा विधि, मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ तेलुगु समुदाय के श्रद्धालुओं ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए 40 दिनों की व्रत दीक्षा का संकल्प लिया। इस अवधि के दौरान भक्तजन उपवास एवं विभिन्न धार्मिक नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति और आराधना में शामिल होंगे। इस अवधि के दौरान हमें अनुशासन में रहना चाहिए और हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, यानी काम, क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें स्वयं को भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये माध्यम है उनके कमल चरणों के और समीप जाने का। इन 40 दिनों के दौरान तेलुगु महासभा की पहल पर कई विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सभा के अध्यक्ष के अनुसार इस व्रत दीक्षा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना तथा मर्शन समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। हम शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी पूजा के साथ कल तेलुगु महासभा में करेंगे। पूजा शाम 5 बजे से शुरू होगी। हम चाहते हैं कि ये महोत्सव समस्त मॉरिशन समाज एक साथ मिलकर मनाए। इन 40 दिनों के व्रत के दौरान 7 अक्टूबर को युवा शाखा द्वारा वाल्डेवी में स्पिरिचुअल कंसर्ट लगेगा और 11 अक्टूबर को महिला संगम द्वारा बटुकम्मा का आयोजन होगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत दीक्षा महोत्सव का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ किया जाएगा।

0: भारत के महाराष्ट्र राज्य से मॉरिशस तक मराठी संस्कृति का प्रचार नेत्र के माध्यम से भी हुआ। गांवों और मछुआरों के बीच या फिर खेतीहरों द्वारा की कई देशज नृत्य किए गए, जो एक अलग कहानी सुनाते हैं, एक अलग रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ साथ अब ये नृत्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी किए जाने लगे हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: हर एक नृत्य की अपनी एक कहानी होती है, एक समुदाय की, उसके काम की और उसकी मान्यताओं की कहानी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्यों में कोली नृत्य का एक विशेष स्थान है। ये नृत्य मुख्य रूप से कोली मछुआरा समुदाय से जुड़ा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। इसके हाव भाव समुद्र में मछुआरों के जीवन को दर्शाते हैं। लहरों की गति, मछुआरों का काम और उनकी नावों की गतिविधियों को इन नृत्य मुद्राओं के माध्यम से दिखाया जाता है। मछुआरे इन मूवमेंट्स के माध्यम से सुरक्षा की मांग करते हैं। एक अन्य परंपरा, एक अलग दुनिया, किसानों की दुनिया। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य कृषि उत्सवों और अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जब नाचते हैं तो ज्यादातर हाथों का प्रयोग किया जाता है और किसान प्रार्थना करते हैं कि फसल अच्छी हो। लेकिन ये अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्यों के ताल और नृत्य हाव भाव एक ही प्रस्तुति में देखने को मिलते हैं।
2: डांस की एसोसिएशन विद गणेश चतुर्थी।

0: से झाकरी।
1: गणेश चतुर्थी की बात जब करते हैं तो झाकरी की बात होती है। झाकरी भी एक फोक डांस है। समय के साथ झाकरी में बदलाव लाए गए, इसकी प्रस्तुति में विशेषकर। मराठी समुदाय के प्रतिनिधि झाकरी को यूनेस्को के सामने ले जाना चाहते हैं।

0: इसके इतिहास और उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है।
1: विदेश में सऊदी अरब के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑयल पाइपलाइन पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया है, जिसके बाद उसे बंद करवा दिया गया। ये 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, जिसने मध्य पूर्व संकट की शुरुआत से सऊदी अरब को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने में मदद की है। रियाद ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाइपलाइन के पास काला धुआं दिखाई दिया है। और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह 6:08 पर सूरज निकलेगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। लासोजिन लेस्कालिये में, लासोजिन लेस्कालिये में 64 साल के 64 इयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद इकबाल नसरुल्ला, जनाब मोहम्मद इकबाल नसरुल्ला जो इकबाल मेकानिसिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 8:30 बजे उनके मकान लासोजिन लेस्कालिये से उठाकर दफनाने के लिए लासोजिन लेस्कालिये का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप में 56 साल के 56 इयर्स ओल्ड के श्री जितेंद्र गोपी जो गोपी क्वाफर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। लुइस स्ट्रीट रॉयल रोड ले ओशे तेरूज में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रविता केतु पैदाशी नाम जगू और जो फी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान लुइस स्ट्रीट रॉयल रोड लोशे तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिद फत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। नंबर पाँच रोजलिन लेन कासी में 60 साल के 60 इयर्स ओल्ड के श्री मानाजी आबाजी जो दादो कैकायरी अपला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान नंबर 5 रोजलिन लेन कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन पोर्टलवी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। अटलास लेन गुडलैंड्स में 60 साल के 60 इयर्स ओल्ड के श्री जगदीप लखवा जो देवानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी निशा लखवा के

मकान अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। रामचंद्र रोड ग्रीष्म सेंट्रल फ्लैक में, रामचंद्र रोड ग्रीष्म सेंट्रल फ्लैक में 83 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइनसामी चिलम्बन, श्री गोइनसामी चिलम्बन जो तंगावेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और कॉन्स्टांस शुगर स्टेट के पूर्व ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान रामचंद्र रोड ग्रीष्मा सेंट्रल फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रीष्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 PM। पाई रोड पाई में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्रनाथ हरकू, श्री राजेंद्रनाथ अकू जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और दागोचिया रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके रिश्तेदार विनय गणपत के मकान पाई रोड पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। नंबर 12 रोथ रॉयल कासी में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माधवी लाचा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी मां कुशीला लाचा के मकान नंबर 12 रॉ रोड कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन पोटली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। बुआशेही रोड मोका में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त गुलाम जो बालों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी अनीता गुलाम के मकान बुआशेही रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। कथबो रोड बोनाकई में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री चित्रंजन माधो जो राजू मौशांगोची के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कथबो रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रुद्बुआशेही मोका में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भामा रामचंद जो फी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके भाई अशोक रामचंद के मकान रुद्बुआशेही मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में विनोबा भवन शाखा नंबर 4 रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे सियाकोंस्टांस सैंपिया के विनोबा भवन में यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नाडेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स द्वारा यज्ञ का आयोजन कर रहा है। सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपॉक वाक्वा के माराथी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेमोत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6:00 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3:00 बजे सैमोत्या सुल्फेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौराबो के सनातन और कौराबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4:00 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 4:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台819频道。今天是音乐节目，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。毛里求斯广播电台听众朋友你好，欢迎收听毛里求斯广播电台819节目。我是你今天的节目主持人张大卫，今天是歌曲节目，希望在接下来的30分钟有你喜欢的歌曲。

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: सभी श्रोताओं को अनीता का विनम्र नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रोताओं, एक विचार इस प्रकार है कि इस सृष्टि पर दो प्रयोजन हैं, एक लौकिक भोग और दूसरा मोक्ष। निर्णय हम सभी को करना है कि सच्चा आनंद कहाँ है। तो चलिए, इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, रजोगुण तमोगुण गलत दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। हजारों कदम चलने की अपेक्षा चार कदमों को लक्ष्य की ओर चलना या पुरुषार्थ करना कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य पर चलने से व्यर्थ रजोगुण तथा तमोगुण छूट जाता है।

प्रियजन, व्यवहार में विवेक वैराग्य की प्राप्ति में एवं यम नियमों के पालन में, ईश्वर परिधान में एवं किसी भी व्यक्ति के साथ द्वेष ना रखने में ही हमें अपना सारा बल लगा देना चाहिए।

भक्तों, मनुस्मृति में कहा गया है कि सर्व लक्षहीनोपि यः सदाचार वानरः श्रद्धानो अंसुयश्च शतम् वर्षाणि जीवति। तात्पर्य यह है कि मनुष्य में चाहे सभी अच्छे बाहरी गुण ना हो, किंतु यदि वह सदाचारी और श्रद्धावान हो तथा दूसरों की निंदा ना करता हो, तो वह दीर्घायु होकर 100 वर्ष तक जीवन जीता है।

श्रोताओं, हर व्यक्ति अपने मन से अपने ढंग से सोचता और अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है। आपके विषय में उसका विचार आवश्यक नहीं है कि सत्य ही हो। अतः दूसरों की झूठी टीकी टिप्पणी पर अधिक ध्यान ना देना चाहिए। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके ध्यान एवं साथ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ।

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़रत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह लेते हैं इस महीने की बुराई से और तकदीर की बुराई से। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस पुरनूर महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सुबह को कुरान की एक आयत सीख लो तो ये तुम्हारे लिए 100 रकत नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। सामईन, तिलावत कुरान मजीद समात फरमाएं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا

सुरा अन्नमल उर्दू तर्जुमा, जब कोई टूट कर तड़प के मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा और 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और 10 दरजात बुलंद किए जाएंगे। बहवाला निसाई शरीफ। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का।
3: धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का।
4: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर हो गलबा समय भोजपुरी गीत संगे जुड़े के। अभी से लेके रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के साथ है देवत हवन रत्ना। सप्रेम नमस्कार स्वीकार कर लजा। और मजेदार कार्यक्रम संगे आप सब कोई हमनी के संगे जुड़े सकब 4028085 पर। अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकबा और इमेसास विदा करे खोजा था वह 5251705। चलो 9:10 हो गल बा और इस समय हो गल बा बढ़िया भोजपुरी संगीत के साथ है जुड़े के। चलो शुरू करब जा आज के है पहला गीत संगे 2025 के। बरिस के है गीत है किशोर खिमिया के आवाज में रखल जलसा लाली लाल बा।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जितना कोई अभी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर सब तैयारी में लगल हवन सा बस तोरा बहुत बहुत शुभकामना देवब जा। और 9:17 हो गल बात है चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर आज के जो पहला फरमाइश हमनी के हिया मिलल बा सुनीता जी के पसंद पर चलाओ अब जा है अगला गीत धोती पोथी पगड़ी और है गीत उनकर जो बहिन है जे कोंगो मा रहेलन विमला जी उनकरा है गीत बहुत खुशी रहेलन सुने के विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन उनकर बहिन हवन वीना संगे हवन अमृता जे साथ है देवत हवन गोंगोब से और गुडलैंड से और ये विमला जी के बेटा संजीव कनाडा से आल हवन तो चला बहुत खुशी हवन तो चला निमन से बिताया है छुट्टी के दिन और खुशियाली के साथ धोती पोथी पगड़ी है गीत तोहर खातिन करब जा और जितना कोई सुनत हवन बस साथ देते रहिया जा और मजेदार गीत संगे है जा पर हमनी के चचा है ना अभी का जानी जान जान गल हवन पोता पे कैसे कोमान पासे करे के ऑनलाइन शॉपिंग करे के शुरू कर दे लखवा अब आदमी बोले बा ओकरा कि 10 दिन लगी एगो जोली कुर्ता किनले हवन पर अभी ले कुर्ता पहुंचले नहीं बा त जाने ल चाचा त लगल खीस करे पुनारिये के टेलीफोन

उठा के लगल झगड़ा करे वो आदमी संगे, बोले हाँ ऑनलाइन के दुकान खोल के बैठ गल हवा, लेकिन हमनी के जन चीज हा हम बोलत हई तोरा हई कुर्ता हम पहने खोजत हई गणेश चतुर्थी के, और गणेश चतुर्थी तो 2 दिन में बा, कब मिली हमनी के हमर कुर्ता, ऑर्डर कर ले हई तो काहे नहीं दिलावत हवा हमनी के। तो जोन छोकरा रहल वो बोले चाचा जी काहे दिन इतना खिसियात हवा, तनी नम्रता के संगे बात कर। बोले हाँ दा ओकर संगे बात करब। बोले नहीं नहीं हमर मत बल रहल, तनी शांति से बतियाइया। बोले हाँ दोनों से बतिया लेव, अब नम्रता से भी बतिया लेव, अब शांति से भी बतिया लेव, अब सेल्ब हमनी के पहला हमर कुर्ता दिया हमनी के हमर गणेश चतुर्थी पे हम पहनब।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और ही चला हैजा पर विश्वानी दुमन हमनी के संगे जुड़कर हवन वाकुआ बगल से और हौजा पर से सोना नोयन के गीत के मांग करत हवन। उनकर दूगो बहिन है इंदिरा और शारदा, दूगो सखी नीला और प्रतिभा, संगे हवन शोभा और गीता गजादर और जितना कोई सुने होला श्रोता लोगन हवन उन सब कोई खातिन त चला सोना नोयन के आवाज में रखल हा दुनिया बा चला बाजा बोल है गीत चलावब जा उनकर खातिन। आउरी हमर जो चचा है का बोलब, जैसे जैसे दिनवा जाता कपार में का जानी कहाँ से ओकर है सब बतवा चलावेता। कौन दिन भगवान के आगे बैठ के भगवान के भजन शुरू कर देलब, भगवान के बोलता प्रभु हम तो भोजन पकावे होला मांगले रहली, तू तो मुंह पकावे वाला दे देलक, हमर भेजा पकावे वाला दे देलक, मीठी मीठी बतिया सुनावे वाला मंगले रली तो है कौन दे देलक, हमने के तीखा तीखा भाषण सुनावे वाला एगो मेहरारू दे देलक, है अखियों में जन्नत दिखावे वाला मंगले रली तोहर से, है तो हमने के अखिया दिखावत हवन। हम तो सोचले रही सुबह शाम जे फुलका हमने के गरम गरम फुला के दे ऐसन मेहरारू मंगले रही तोहर से, है तो अपन मुखड़ा फुला के बैठे रहे सब पूरा दिन, कैसे कर भगवान तू हमनी के बोला।
2: हा दुनिया बा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
0: भोजपुरी तड़का
2: 9:33 होकर बाद जितना कोई रात के काम करत हवन बस ऐसने हिम्मत के साथ लगे रहिए डटे रहिए और जे राजो भीरी में बात गीतवा सुनते सुनते मजेदार संगे मूड बनाइते बनाइते और बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत सुनते चला और चला अगला गीत जो है गायत्री जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन अल्फोंस

से बेटा अजय, मामी हवन कल्याणी मोहन, मेबग से साधेवत हवन और उनकर भौजी हवन शकुंतला मोतायलोंग से, और खास सखी गीता बाई और उनकर सब परिवार साथ देवत हवन चला। गीता बाई, आशा करब जा कि तू अच्छा हवा। और हैजा पर है ये गीत लागी नहीं छूटे राम के गीत, चाची ललिता कुशल खातिन भी चलाओ अब जाए त्रियोले से साथ देवत हवन, और उनकर बहिन सुदेवी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन वाकवा देने से साथ देवत हवन। ज्ञानी देवीना छोटी दादी प्रभावती भाई आत्माराम सुखलाल मौसी माला राम जियावन और सुदेवी जी हमनी के बोले तनी चला द हमर दीदी ललिता खातिन सुनीता शोभा देवीना और मालेगा से हवन राम रतन परिवार। चला हाई जा पर विजय बंधन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन, और अगला गीत उनकर पत्नी रेखा जेकलावेत से तू दोनों जन हमनी के संगे जुड़ गल हवन, और तीन गो बहिन हवन चंदनी रेखा और बिंदु और नहीं चंदनी बिंदु और कुमारी रेखा त पत्नी हवन, और उनकर जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन। और लागी नहीं छूटे राम के है गीत करब जा जितना कोई खुशी हवन है गीत सुने के। और जैसे भगवान के हिया चचा पूजा करलन त चाची धोगले चलाल, चाची बोले जब इतना है बुरा लगत है तो घर से निकाल कहे नहीं दे था हमनी के, तो चाचा बोले तो हम निकाल देव अब तो तू चल जाबे का, तो चाची बोले कबो नहीं जाब, तो बोले तो काहे बोलत हव, तो चाची बोले बस ऐसने हमनी के बहुत अच्छा लगेला तोहरा चाकर भी हम तू हमर कुछ बिगाड़े नहीं सकब, हई हई जाब बैठब तोहरा घर में तोहर छाती पे बैठ के मूंग दलब ऐसे ऐसने बैठे रहब। देखलक हमर चाची भी बहुत होशियार हो गल हवन, चचा चाची के किस्सा। तनी प्यार से गीत गाइए हो, लागे नहीं छूटे राम है गीत।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला 9:40 हुआ था और अगला गीत जन है चाची शांता सुकागी जी हमने के साथ देवा थवन से जमील फॉर साइड से और अगला गीत के मांग कर ले हवन उनकर चार को बेटा खातिन जिमे हवन अशोक सुजीत गाविन और सुदेश भैया चला खुशी खुशी बहुत अच्छा लगेला उनकरा अपन नाम सुने के और पतो हवन किरण संगे हवन हैजा पर नाती प्रवेश और नातीन संजना और सुनीता नन को की आवाज में रखला है अगला गीत चमेली चमेली है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और खास कर सुदेश भैया खातिन जे बहुत खुशी रहेलन भोजपुरी गीत के कार्यक्रम सुने के तो चला बहुत मजेदार गीत बा और अगला गीत जो है सब कोई खातिन और है जन पप्पू भैया है ना कौन दिन अपन पिताजी से बोले पिताजी पिताजी आप कितना अच्छा हुआ हो माताजी कैसे तोहर से भेंट कर गई लन ऐसन तो पिताजी बोले हाँ जाने ला तोहर माँ जोन रहल ना उ तोहर माँ बचपन में श्रावण के बहुत व्रत रख ले रहल श्रावण मास के सोमवार के व्रत कर ले रहल उही से हम ओकरा मिल गईली तो बोले तू काहे तनी व्रत नहीं करलक तनी व्रत कर ले तक तक तक तोहरा भी अच्छा पत्नी मिलत ना पिताजी ऐसन पत्नी मिल गल तोहरा हमनी के रोज मारेलन

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। चला अगला गीत जो है जुबे दालो तो लेके जाए रंभा राम तोहल के आवाज में। और हाई जो गीत है अमृता गणेश जी खातिन चलाओ अब जापीतों से उस साथ देवत हवन। और खासकर आज के जो गीत है उनकर बेटा विषम के ओर से चलाओ अब जाओ। उनकर पत्नी मीनाक्षी, बहिन हवन पूनम और दू गो प्यारी बेटी हवन सोनिया और परी। तो चला अगला गीत जरूर उनकर खातिन चलाओ अब जा और ये तोरा नाचे के मन करता तनी कमरिया हिला द। कहे कि हमर जो चाची है ना कबो कबो ऐसन ताव में चलावेला ऐसन ऐसन गीत गा देवेला का जनी ओकर कपार में कैसे गीत चलावेला। और गीत तो सुन ले हवा ना मिलो ना तुम तो हम घबराए चाची चाचा खातिन है गीतवा चला देलक जाने लसल मत चाची के व्यसों कैसन रहल। चाची गावे मिलो न तुम तो हम घबराए मिलते ही क्लेश हो जाए हमको क्या हो गया है हमको क्या हो गया है। अरे चाची गल्ला ठीक नहीं बा, काहे गल्ला फाड़ फाड़ के ऐसे गावत हो चाची।

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा। 9:55 हो गल बा और ई चल अगला गीत चलाओ अब जा। युधीश खातिन जी अभी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर मामा हवन शीला और जितना उनकर खुजाए कुजीन लोग उनकर से भेंट करे आल हवन उन सब कोई खातिन। और बस रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर नीरज गुप्त मधु की आवाज में रखल हाई अगला गीत। और ई हमर चचा जाने ल बोले देखा हाई जोन पति जोन रहेला ना वो बहुत भोला रहेला, ओकर दिल बहुत विशाल समुंदर नियर रहेला और वो हमेशा चाहेला कि उनमें ढेर मछली फुदक फुदक के नहाए। पर हाई जोन पत्नी है ना हाई पत्नी हा वो सार्क नियर हा वो गैके नियर हा गैके नियर वो तो हमेशा चाहेला कि वो हाई हाई बुढ़वा के दिल में वो ही खाली राज करे दूसर मच्छे लोग के हुआ नहीं रहे दहे देवेलन सर जाने ल का हो चचा चला सुना है बढ़िया संगीत नीरज गुप्त मधु के आवाज में और मजेदार गीत संगे तनी थपरी बजावा।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
0: भोजपुरी
3: भोजपुरी तड़का तड़का।
4: चला गणेश के वंदना है गीत चलावत है और है गीत के मांग करत हवन मीराबाई दौमिया मौदालबिया से पादिया परिवार दौमिया परिवार उनकर बेटी उनकर दामाद खातिर। और जितना कोई अभी गणेश वंदना गणेश पूजा में अपन सहयोग देवत हवन उन सब कोई के विघ्न दूर होई सब कोई के कल्याण करी भगवान श्री गणेश।

0: स्मृति हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भाई ठंडा तो बड़ी जोर मारा था और ये ऐसा ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनते रहा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। अभी से लेके बिल्कुल एगो और घंटा रह गल भाई, यानी 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर साजिद जी हमनी के संगे से जुड़ गल हवन रोजिल बगल से और सुना नयन के आवाज में रखल अगला गीत के ऊ मांग करत हवन। और बिल्कुल चचा चाची के किस्सा का बोलब, चचा कौन दिन बैठे बैठे ऐसे शायरी मारे, ऐसे शायरी मारे का बोलब, बैठे बैठे बोले बैठ कर हमर महबूबा के बाहों में बड़ी जोश आला। तब दमोदर भैया बोले अरे वाह का बोला था वह, बोले हाँ बैठ कर महबूबा के बाहों में हमनी के बड़ी जोश आल। अरे फिर का होल भैया, मतलब फिर का तोहर चाची तोहर भौजी हमनी के देख लेलक और सीधा लोपिताल के आईसीयू में हो साल। काहे करत हवा ऐसन काम धंधा,

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम मौरी अगला गीत जो है अनिता जी खातिन चलाओ अब जाफरी कॉम्फ्लेक्स से साथ देवत हवन और उनका सब परिवार खातिन और बहुत खुशी से हमने के बोले हमारे सब दोस्त और परिवार खातिन चला दे एगो बढ़िया गीत और हईजन गीत सुनीता ननकू के आवाज में रखल लंबे माँ धरीला चरनिया तोहार तो चला है ये गीत सब कोई खातिन और बस अभी भक्ति में सब कोई वातावरण में डुबल हवन सा पर हमर जोन पप्पू भैया है ना का बोलब जितना भी दुख रही जितना भी त्राका रही जितना भी प्रॉब्लम रही वो कबो नहीं सुधरी जाने लगा है कौन दिन पप्पू भैया से भेंट

हो गल ता हम बोली पप्पू भैया तोहर पर तब बहुत दुख पड़ल बा। बोले हाँ जब भी देखा हजार दुख चलावेला ना तो का जानी हम तो हमेशा हंसते रहिला। फिर बैठल बैठल हमनी के कपार में है ये सवाल आवेला कि हम स्ट्रांग है बहुत आ उही खातिर हंसत हैं कि फिर हम बहुत बेशरम हैं उही खातिर हंसत हैं।

0: नचाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।

0: राजा बंधु के आवाज में रखल है गीत हा विमल बंधु और मनोज खातीन जे हमनी के साथ देवत हुआ संत बस साथ देते रहिए जा और 11 बजे ले साथ देवत है
1: संत

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनते रहा और बिल्कुल 10:33 हो गल बा। तो चला आगे बढ़ब सा और अगला गीत जोन है सुनब जा। अगला गीत जोन है नीता खेदनी हमनी के संगे जुड़ गल हवन सन जुलिया विलास से और उनकर खास दोस्त खास सखी हवन स्वादिका और सब खेदनी परिवार खातिन चलाव अब जा है अगला गीत। और है भी बहुत मजेदार गीत है और संभावती दुमन के आवाज में रखल गीत सुनब जा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: चटाचट भोजपुरी की रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर हमने के संगे चाचा धन पर जुड़ गल हवन वाकवा देने से और सब सीनियर सिटीजन खातिर जितना कोई वृद्ध हवन जितना कोई घर से दूर हवन जितना कोई वृद्धाश्रम में हवन जितना कोई के लइका लोग इनकरा वृद्धाश्रम में छोड़ देले हवन उन सब कोई खातिर चाचा धन पर है गीत के मांग करत हवन तो मैं एनो के हवन चाचा जी तो चला चाचा जी हमारे ओर से आप खातिन आप सब कोई खातिन गीता गजादर के आवाज में रखल है अगला गीत करब जा माँ बाप के मोर।

0: मैरिज हॉल आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।
2: तो चला इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय हो गया। काहे के है जो नाखरी गीत है सोना नोयन और बसंत सुफल के आवाज का के रखल लाखोश और है गीत आकाश खातिन चलाओ अब जा उही है गीत के मांग कर ले हवन उनकर तीन को बेटी खाती और उनकर सब परिवार खाती। चले हंसते मुस्कुराते साथ देवे खातिन बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करब जा कि आवे वाला जन सप्ताह बा उ तोहर खातिन बहुत भक्तिमय रही, बहुत निमन से रही और सब सब कोई पे गणेश जी के कृपा बनल रही। तो चले एकर संगे साथ देते रहिए जा अभी थोड़ा घड़ी में रात के 11 बजे से 12 बजे ले पुराना गीत के कार्यक्रम तू सुने सकबा और जो कार्यक्रम प्रस्तुत करल जाए नीतू शाह देने से नीतू शाह बगल नीतू शाह तोहर साथ दिए जा सुनहरे पल में जहाँ पर पुराना पुराना गीत संगे उ तोहर मनोरंजन करिए जा। तो बस प्यार से तू उनकर साथ दिए जा और हमनी के भेजा पर अनुमति। नमस्कार शुभरात्रि सब कोई के।

under the neon. Sonwo, basa tu ase kamperal bahar. Kaito ke bu

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: निदुषा का करजोर प्रणाम। नमस्कार श्रोताओं, जी हाँ, इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और वक्त हो चला है सुनहरे पलों को फिर से ताज़ा करने का। तो जहाँ से भी हमारी हम सफ़र बने हुए हैं, साथ निभाते रहिएगा।

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं, निर्देशक निर्माता नहीं, बल्कि एक पूरे सिनेमैटिक दौर की पहचान बन जाते हैं। ऐसे ही एक महान नाम थे महबूब खान, एक ऐसे विजनरी फिल्म मेकर जिन्होंने अपनी सोच, अपनी कहानियों और अपनी फिल्म मेकिंग के जरिए इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी। 9 सितंबर 1907 को बिलिमोरांग गुजरात में जन्मे महबूब खान का असली नाम महबूब खान रमजान खान था। उनका सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। मुंबई में वो एक्टर बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन सिनेमा की दुनिया में उनकी शुरुआत एक एक्टर के रूप में छोटी भूमिकाओं और स्टूडियो के काम से हुई। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म मेकिंग की दुनिया को समझा और एक एक्स्ट्रा और असिस्टेंट से लेकर एक महान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक का सफर तय किया।

खान का डायरेक्टोरियल करियर 1930s में शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपनी अलग सिनेमैटिक आइडेंटिटी बनाई। उनकी फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि आम इंसान की जिंदगी, गरीबी, सामाजिक असमानता, औरतों की मजबूती, इंसानी जज्बात और समाज की हकीकत भी नजर आती थी। महबूब खान की फिल्म मेकिंग का एक खास पहलू था, उनकी कहानियां बड़ी कैनवास पर होती थी लेकिन उनके किरदार दिल के बहुत करीब लगते थे। वो गांव, किसान, मजदूर, माँ, परिवार और आम इंसान के स्ट्रगल्स को सिनेमैटिक गौंदों के साथ पेश करते थे। 1940 में आई फिल्म औरत उनके करियर की एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी को लगभग 17 साल बाद उन्होंने और भी बड़े स्केल और गहराई के साथ मदर इंडिया के रूप में पेश किया। औरत और मदर इंडिया के जरिए उन्होंने इंडियन सिनेमा में माँ, मिट्टी, परिवार, सैक्रिफाइस और स्ट्रगल को एक महान सिनेमैटिक रूप दिया। इसके बाद महबूब खान ने एक के बाद एक यादगार फिल्में दी। अनमोल खड़ी, अनोखी अदा, अंदाज, आन, अमर जैसे टाइटल्स उनके क्रिएटिव रेंज को दिखाते हैं।

1946 की अनमोल घड़ी एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसके गीत और कहानी ने ऑडियंस के दिल में खास जगह बनाई। महबूब खान समझते थे कि इंडियन सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ कहानी के बीच का एक हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को महसूस करने का एक पावरफुल मीडियम है। फिर आई 1949 की अंदाज, जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस जैसे तीन बड़े स्टार्स एक साथ नजर आए। प्यार, दोस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को लेकर बनी अंदाज अपने वक्त से काफी मॉडर्न फिल्म मानी गई। महबूब खान ने इस फिल्म के जरिए ये भी साबित किया कि वो सिर्फ सोशल ड्रामास तक सीमित फिल्मेकर नहीं थे, वे कंटेम्पोररी रिलेशनशिप्स को भी बहुत खूबसूरती से स्क्रीन पर पेश कर सकते थे। 1952 की आन ने उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल का एक और रूप दुनिया के सामने रखा। ग्रैंड सेट्स, एडवेंचर, एक्शन, कॉस्ट्यूम्स और स्पेक्टेकुलर प्रेजेंटेशन के साथ आन ने इंडियन सिनेमा के स्केल को और बड़ा किया। ये फिल्म कला में बनी और अपने जमाने के विजुअली एम्बिशियस प्रोडक्शंस में से एक थी।

सामना। 1954 में आई अमर एक अलग ही मोड और सब्जेक्ट लेकर आई। महबूब खान ने डिफिकल्ट सोशल क्वेश्चंस को स्क्रीन पर रखने से कभी पीछे कदम नहीं खींचा। उनके फिल्म्स में अक्सर ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। लेकिन महबूब खान के करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था 1957 की मदर इंडिया। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इंडियन सिनेमा के इतिहास के एक मोन्यूमेंटल चैप्टर बन गई। नरगिस ने राधा का अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर निभाया। राधा के कैरेक्टर के माध्यम से एक माँ की स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की कहानी सामने आई। मदर इंडिया में एक औरत की कहानी एक महिला की कहानी के साथ साथ भारत के रूरल सोसाइटी, पॉवर्टी, डेब्ट, फैमिली वैल्यूज और मॉरल स्ट्रगल का भी पावरफुल पोर्ट्रेयल था। फिल्म ने इंडियन ऑडियंस के दिल को छू लिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन सिनेमा की एक मजबूत पहचान बनाई।

0: वैसे सबसे खास बात ये थी कि मदर इंडिया एकेडमी अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन पाने वाली पहली फिल्म बनी। ये इंडियन सिनेमा के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। फिल्म ने फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड्स जीते और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी सम्मान प्राप्त किया। महबूब खान की फिल्म मेकिंग में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा। उनके कई फिल्म्स में नौशाद जैसे लेजेंडरी कंपोजर के साथ कोलैबोरेशन हुआ। उनके सिनेमा में सॉन्ग्स कहानी का इमोशनल एक्सटेंशन बन जाते थे। मदर इंडिया के गीत हो या अंदाज के रोमांटिक मेलोडीज, म्यूजिक ने उनकी फिल्म्स की पॉपुलैरिटी और इमोशनल इम्पैक्ट को और गहरा बनाया। महबूब खान सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक प्रोड्यूसर और इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे। उन्होंने महबूब प्रोडक्शंस के जरिए अपना बैनर एस्टैब्लिश किया और 1954 में बांद्रा मुंबई में महबूब स्टूडियोज की फाउंडेशन रखी। महबूब स्टूडियोज बाद में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन गया।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

उनकी लीगेसी सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने कई आर्टिस्ट्स और न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटीज दी और इंडियन सिनेमा में नए नाम नए टैलेंट के लिए दरवाजे भी खोले। इसी वजह से उनका नाम सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर के रूप में नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में भी याद किया जाता है।

इंडियन गवर्नमेंट ने उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए 1963 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये उनके सिनेमैटिक कंट्रीब्यूशन का एक इम्पोर्टेंट नेशनल रिकॉग्निशन था। उनकी आखिरी डायरेक्टेड फिल्म्स में सॉन ऑफ इंडिया शामिल थी जो 1962 में रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मदर इंडिया जैसी सक्सेस तो पा नहीं सकी, लेकिन इसका पैट्रियोटिक सॉन्ग नन्हा मुन्हा राही हूँ आज भी याद किया जाता है। 28 मई 1964 को महबूब खान का निधन हो गया। उनकी उम्र सिर्फ 56 साल की थी, लेकिन उनका सिनेमैटिक सफर और उनकी लिगेसी उसके बाद भी जिंदा है। प्रणाम, शुभ रात्रि।